सौ.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी के एफएम प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। आज दिन शनिवार, आषाढ़ मास की छठी तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 27 जून सन 2026 है। प्रातः के 5:55 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

में राम, क्षण क्षण में श्याम। हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान। तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम पधारो प्रभु।

नमस्कार श्रोताओं, एक नई सुबह, नई किरण और नई आशाओं के साथ आप सभी को सुमंगलम सुप्रभात। घड़ी की सुइयां बता रही हैं 6:01 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो। मैं हूं आपकी मित्र तरुश्री, आपके समक्ष उपस्थित हूं लेकर भक्ति और आध्यात्मिकता से सुगंधित आपका पसंदीदा कार्यक्रम पुष्पांजलि। और इस यात्रा का श्री गणेश करते हैं प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश के चरणों में वंदना के साथ।

प्रार्थना आत्मा की शक्ति है जो हर दर्द को सहने और हर चुनौती का सामना करने का साहस देती है। ये वो पुल है जो हमें निराशा से आशा की ओर ले जाता है। हर सच्ची प्रार्थना हमारे जीवन में चमत्कार की शुरुआत कर सकती है। आइए इस भजन के माध्यम से हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें।

श्री राम का व्यक्तित्व सत्य की अडग शक्ति और त्याग का महासागर है। उनका दिव्य रूप केवल नेत्रों को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी प्रकाशित करता है। उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में भक्ति का भाव अर्पित करते हैं। आइए सुनते हैं ये मधुर भजन।

संकट मोचन महाबली हनुमान, जो स्वयं भक्ति और सेवा की पराकाष्ठा हैं, उनकी दृष्टि मात्र से भय का नाश होता है और उनके स्मरण मात्र से मन में आत्मबल का संचार होता है। आज इस पावन समय में हम उन्हीं पवन पुत्र के चरणों में अपनी श्रद्धा और प्रार्थना अर्पित करते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो और इस पर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं पुष्पांजलि मेरे यानी तरुश्री के साथ। न्याय के अधिपति और कर्मों के फलदाता शनि देव को साष्टांग नमन। वे न केवल दुखों के निवारक हैं बल्कि अनुशासित जीवन और धैर्य के प्रतीक भी हैं। शनि देव की शरण में जाने का अर्थ है अपने कर्मों के प्रति सचेत होना और जीवन के कठिन समय में भी अडिग रहना। आइए उन्हें शांत और न्यायप्रिय देव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनका ध्यान और वंदन करें।

नमस्कार, सुबह के 7 बज रहे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। अयोध्या में राम मंदिर दान मामले में कथित अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार किया था। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित जांच दल SIT की सिफारिश के बाद ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज कराई थी। श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान प्रकरण में कथित अनियमितता के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या हम सबकी आस्था का प्रतीक है और आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि SIT की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं के शिलान्यास के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। श्री योगी गौतम बुद्ध नगर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा वे नोएडा के नवीन कार्यालय भवन का लोकार्पण करेंगे और MSME दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री मेरठ मंडल के लोक निर्माण विभाग के पुराने कार्यों की समीक्षा करेंगे और नए कार्यों का कार्ययोजन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का भी विचार विमर्श किया जाएगा। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र में हुई, जब एक खड़ी कार के पीछे से तेज रफ्तार SUV ने टक्कर मार दी। कार में मौजूद परिवार हरियाणा का रहने वाला था और धार्मिक यात्रा पर हरिद्वार जा रहा था। घायलों को जिला अस्पताल सहारनपुर में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ ही बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 9 बजे प्रसारित किया जाएगा, तब तक सुनते रहिए FM रेनबो।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सिरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: सात हमारा हरदम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग
3: FM रेनबो के संग।
5: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
6: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदा बहार गीत
5: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

सुरों की खुशबू हर दिल को छू जाती है, सुरों की खुशबू हर दिल को छू जाती है, पुरानी धुने फिर यादें ताजा कर जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, 7:05 का वक्त और यही पुरानी यादों को ताजा करने के लिए हम लेकर आ गए हैं प्रोग्राम क्या सदाबहार गीत। जी हाँ, वही सदाबहार गीत जिसका आप 7 से इंतजार करते हैं, क्योंकि बड़े ही खूबसूरत से नगमे आपको सुनने को मिलते हैं। तो शुरुआत तो हो गई।

दोस्तों, पुरानी यादों की सबसे खास बात क्या कि ये जब भी हमें सुनने को मिलती है ना, हम हर बार उस समय में ऐसे पीछे पहुंच जाते हैं जैसे बस एक टाइम मशीन में बैठे और सर से वहां पहुंच गए, है ना। ऐसा ही होता होगा आपके साथ भी, मेरे साथ भी होता है, क्योंकि ये जो गाने हैं जब हमारे कान पर पड़ते हैं तो चाहे जितनी बार आप सुनिए ये उतनी बार गुनगुनाने का मन करता है। तो ऐसे ही गानों की और लिस्ट मेरे पास तैयार है, बस देरी है, एक एक करके सुनते जाइए। मैं भी सुन रही हूँ, आप भी इंजॉय कीजिए।

तलाश एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती। कभी हम मंजिल ढूंढते हैं, कभी खुद को ढूंढते हैं, तो कभी वो चेहरा जो भीड़ में भी दिल को अलग ही सुनाई देता है ना? उस तड़प को, उस शिद्दत को और उस पुरानी यादों के हसीन धुएं को जो आज एक सुर देने जा रहा है फिर से। जो अभी आप गाना सुनेंगे ना, ये गाना नहीं, एक एहसास है जो बरसों से फिजाओं में घूम रहा है और आपको याद दिला रहा है किसकी।

दोस्तों आप सुन रहे हैं खूबसूरत प्रोग्राम सदाबहार गीत मेरे यानी तरुषी के साथ। 7:32 हो चुके हैं और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी हम खुद को दुनिया की भीड़ में खो देते हैं, पर तभी कोई हाथ थाम लेता है और सब कुछ ठहर सा जाता है। अगला जो गीत मैं आपको सुनाऊंगी वो उन्हीं गर्माहट, उन हाथों की गर्माहट, उसका एहसास आपको दिलाएगा जो मुश्किलें आसान बना देता है, क्योंकि अगर वो साथ है तो हम जमाने से भी नहीं डरते। बस ऐसा ही कुछ ये गाना आपको बता रहा है।

दोस्तों, कुछ मेल मुझ तक पहुंची हैं और बड़ी ही प्यारी सी मेल है। हर बार की तरह मुझे भी इंतज़ार रहता है आप लोगों की मेल्स का। पता चलता है कि आप हमारा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। तो सुधांशु जी का मेल आया है और ये भगवतीपुर पोस्ट महोना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब से मेल कर रहे हैं और लिखते हैं कि पुष्पांजलि बहुत अच्छा लगा और भजन बहुत अच्छे बजाए। कार्यक्रम सदाबहार गीत बहुत अच्छा लग रहा है, गाने अच्छे अच्छे बज रहे हैं और हमारी आवाज़ बहुत पसंद आ रही है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार भरे मेल के लिए। शकील अहमद जी ने मेल किया है, बड़ी ही तारीफ भरी मेल भेजी है आपने भाई, हम तो बहुत खुश हो गए। क्या बताऊँ, अपनी खुशी नहीं मतलब संभाल रही है। और जो आपको अच्छा लग रहा है ये सदाबहार गीत

प्रोग्राम, मैं सच में बहुत खुश हूँ कि जो गाने मैं चुनती हूँ वो आपको पसंद आते हैं, क्योंकि ये गाने हैं ही ऐसे नायाब जो आप ना पसंद कर ही नहीं सकते। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, है ना, पसंद तो आने ही आने हैं। राम राज जी भी मेल कर रहे हैं और लिखा है इन्होंने, ये ज़िला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से मेल कर रहे हैं और इन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, इन्होंने प्यार भरा नमस्कार और ढेर सारा आशीर्वाद दिया है मुझे, थैंक यू सो मच। जगदीश जी ने भी मेल कर दिया है और इन्होंने क्या कहना चाहा ये मैं नहीं समझ पाई, गुड मॉर्निंग उन्होंने भेजा है और आपको भी बहुत ही प्यारा सा गुड मॉर्निंग आज के लिए। और फिलहाल जगदीश जी कुछ और लिख के भेज दिया करिए, हमें आपकी मेल समझ में नहीं आती क्योंकि आप एक ही चीज़ गुड मॉर्निंग बस इतना, कुछ और भी लिख के भेज दीजिए और एक ही मेल को आप कई बार भेज रहे हाँ मैंने ये देखा अभी, आपने एक ही मेल को कई बार भेजी है, एक ही बार भेज दीजिए, हम आपकी मेल रिसीव कर लेंगे, हम आपका नाम पढ़ देंगे। बस इसी प्यार के लिए ही तो हम वेट करते हैं कि आप हमारा प्रोग्राम इन्जॉय कीजिए, हमें जो ये कहते हैं ना, ये जो गाने हैं, ये जो सुर हैं, ये जो नगमे हैं, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, हम सब के लिए हैं और यही तो इन्जॉय करते हैं हम, आप और हम दोनों मिलकर एक खूबसूरत सा गाना आपके लिए।

0: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: सात रंग का इंद्रधनुष है,
2: सात सुरों की सरगम है,
0: सात जन्म है सात समंदर,
1: साथ हमारा हरदम है,
0: जिंदगी के सतरंगी रंग
2: FM रेनबो के संग।

दोस्तों चलिए कुछ अपडेट्स दे देते हैं आपको कि कार्यक्रम हेल्थ एंड फिटनेस आप सुनेंगे प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 से 1 बजे, जिसके प्रायोजक होंगे चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक। इसके अलावा और भी कार्यक्रम आप सुनेंगे अब की बार जब आप संडे को, आप उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी हम समय समय पर देते रहेंगे। 7:45 का समय हो रहा है, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत मेरे यानी तरुश्री के साथ। और अगर आप अपनी बातें मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें मेल भेज सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके मेल्स का। प्रोग्राम सुनते रहिए सदाबहार गीत, ओनली ऑन क्या FM Rainbow।

दोस्तों 7:52 का वक्त हो रहा है और कुछ लोगों के और मेल्स हम तक पहुंच गए हैं, तो उनको भी शामिल कर लेते हैं। रिंकी पिंकी जो है ये हमें जगदीशपुर शिवगढ़ ज़िला रायबरेली से मेल कर रही हैं। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, और यहाँ पर तो अच्छा लगा कि आपने मेल किया। और बाकी पुष्पांजलि सदाबहार नगमे आपको अच्छा लग रहा है, और यही प्रयास रहेगा कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता रहे, हमारे जो गीत हैं वो आपको पसंद आए। और लिखा है इन्होंने कि हमारे दोस्त भी आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, पूनम दीदी कानपुर से, गुंजन तिवारी, समा प्रवीण, सुरभि सिंह, वकील अहमद, फैज़ भाई, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, महक अंसारी, ममता दीदी, सुषमा दीदी, अनु पांडे, सभी लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। आपने जो मेल करी मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा कि आपने ये मेल करी मुझे। और मुनेश कुमार जी हमें भेज रहे हैं, सुबह हुई धूप खिली, चिड़िया गाए तराने, आपकी आवाज़ से दिन की शुरुआत हुई,

हो जाए सुहाने, वाह क्या बात है। लिखते हैं सदाबहार गीत, लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन गाने, एक से बढ़कर एक सिलेक्शन, और प्रस्तुति भी सुनकर जैसे पुराने गाने फिर से जी उठते हैं। ओहो थैंक यू सो मच इस तारीफ के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लिखते हैं सुबह सुबह ऐसे मधुर गीत सुनकर पूरा दिन खुशनुमा बीतता है। ये आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि ये मेरे साथ भी होता है। अच्छे गाने, अच्छा म्यूज़िक, अच्छी वाइब्स जब आती है ना, तो सच में पूरा दिन ऐसे ही जाता है गुनगुनाते हुए खुशी के साथ। और लिखते हैं कि आप ऐसे ही श्रोताओं का मन बहलाती रहिए, सुनते रहेंगे, फरमाइश करते रहेंगे। बिल्कुल आप फरमाइश करिए, और आपकी फरमाइश पूरी भी होती है हर बार। राधेश्याम जी हमें कासगंज से मेल कर रहे हैं, मास्टर राधेश्याम शाकिया। गुड मॉर्निंग तरुश्री, तरुश्री जी, और आप सब, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए मेरी आवाज़ भी आपको बता रही है कि मैं कितनी खुश हूँ, आपका मेल पढ़ के भी मैं खुश हो गई। लिखते हैं कि प्रोग्राम सॉन्ग सिलेक्शन बहुत ही लाजवाब है, नाइस प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच आपके इस मेल के लिए। और आपको ये बता दूँ कि ये जो प्रोग्राम है ना, ये जो सदाबहार नगमे हैं, ये कहते हैं ना दिल की जो बात है वो लफ्ज़ों में अगर हम कहते हैं तो अधूरी लगती है, लेकिन ये जो पुराने नगमे हैं इनको जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी दिल की बात आप तक पहुंच रही है। और ये जो एहसास है ये शब्दों में बयां करना इनको मुश्किल होता है, इसीलिए ये जो सुरीले गाने हैं, जो सुरीले नगमे हैं, ये हमें एहसास दिलाते हैं कि आप और हम एक साथ हैं, और इन्हीं साथ को बना रहे, ये साथ और ऐसे ही चलता रहे। इसके साथ ही हम ये कार्यक्रम को वाइंड अप भी करेंगे, क्योंकि 7:55 हो गए हैं। और अभी आपको बता दें कि इस प्रोग्राम के बाद यानी 8 से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और उसके बाद मैं फिर से लौटूंगी एक खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर, गुड मॉर्निंग लखनऊ अंजू जी के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM रेनबो है जो ये धड़कन लखनऊ की।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है
2: जिंदगी के
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
5: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक

0: निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
2: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
3: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना के फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
4: Today is the first step in that journey, and the first step is sometimes the hardest step.

0: but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म

0: अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
2: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
3: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता

0: था, मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ 12 अरब डॉलर का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत।
1: सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
2: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
1: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात,
2: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ,
1: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल,
0: सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल,
1: अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार,
2: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान। द कम्प्लीट ब्रेकफास्ट शो,
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: अहमियत तेरी लफ्जों में बयां हो ही नहीं सकती, अहमियत तेरी लफ्जों में बयां हो नहीं सकती, फुर्सत मिले कभी तो हमारी आंखें पढ़ लेना।
4: वाह क्या बात है, लेकिन ये जरा बताइए हमें, ये रेडियो पे जो हमें मिलते हैं उनका क्या करें, हम आंखें कैसे पढ़ेंगे?
3: महसूस करिए, कल्पना करिए।
4: कल्पना, और ये जो चश्मा चढ़ा रखा है उसका क्या करेंगे?
3: इसको चश्मे के सामने से भी दिखाई पड़ता है ना, आर पार दिखता है, आर
4: बिल्कुल
3: पार।
4: बिल्कुल, ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए।
3: सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ दिल से होता है, और अगर हम दिल से किसी को महसूस करते हैं तो वो हमारे आसपास ही नजर आता है।
4: तो आप सुन रहे हैं सभी श्रोतागण, वो ध्यान रखिए कि आपको आंखें महसूस करनी है,
3: आवाज महसूस करेंगे ना, तो आवाज के जरिए हम दिल में उतरेंगे और उसके बाद फिर हमारा चेहरा भी उनके सामने आ जाएगा।
4: अरे वाह क्या बात है, मतलब ये सच में बड़ी गहरी बात हो गई कि आपने शुरुआत करी आंखों से और फिर लफ्जों को होते हुए आप दिल में उतर गई। वाह वाह वाह क्या बात है।
3: और हम वो हैं जो आवाज के जरिए ही लोगों के दिलों में घर करते हैं, दिलों में उतरते हैं और दिलों में बस जाते हैं, और इसीलिए हम हर रोज आपसे रूबरू होते हैं सुबह 6 से रात 12 बजे तक, हम यानी 100.7 FM रेनबो, जिसे आप कहते हैं धड़कन लखनऊ की। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का।
4: जी हाँ दोस्तों, 8:17 का वक्त, और देखिए 18 मिनट हो गए, और ये जो दो जोड़ी आई है आज, अंजू और तरुश्री की, तो ये आज आपको एंटरटेन करने वाली है गुड मॉर्निंग लखनऊ में।
3: जी हाँ, तो गुड मॉर्निंग लखनऊ का ये सफर यकीनन खूबसूरत होगा जब आप हमारे साथ होंगे। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत। स्टे पॉजिटिव विद आज का मॉर्निंग मंत्र।
1: जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रहे हैं आप। और जब हम दिन की शुरुआत करते हैं ना तरुश्री, तो ये जो उगता हुआ सूरज है, ये रोज यही मैसेज हमारे लिए लेकर आता है कि अंधेरों का सफर कभी भी स्टेबल नहीं होता, स्थायी नहीं होता। और जो अपने हौसलों पर भरोसा रखते हैं ना, उनकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी खुद ब खुद बन जाते हैं। और इसीलिए आपका हौसला बढ़ाने के लिए हम हर रोज लेकर आते हैं पॉजिटिव सा मॉर्निंग मंत्र।
2: जी हाँ दोस्तों, तो आज का मॉर्निंग मंत्र ये कहता है कि गलतियां इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। तो मुस्कुराइए, क्योंकि आज का दिन जो है वो बीते हुए कल से बेहतर होने वाला है। तो कोशिशें जारी रखिए, क्योंकि एक बार आप तो कामयाब होंगे ही होंगे ना। हर बार कोशिश नाकामयाब नहीं होती।
1: बिल्कुल, और आपकी कोशिश को हम और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए, आपके साथ आपको मोटिवेट करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं हम, यानी 100.7 FM रेनबो स्टे ट्यून्ड।

जी 8:28 मिनट का वक्त हो गया है और अब मुझे पता है कि हमारे श्रोताओं ने वॉल्यूम बढ़ा दी होगी क्योंकि जो परंपरा अनुसार ये वाला जो टाइम है ये होता है हमारा आज का मुद्दा अनाउंस करने का। चलिए मुद्दे की बात हम करेंगे आपसे, हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आज के मुद्दे पर आपकी क्या राय है और वो हम आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन उसके पहले ये बताना चाहते हैं कि आज बहुत ही

0: इंटरनेशनल डे है, और अगर कैलेंडर की बात की जाए तो भाई 27 जून है आज. और जब 27 तारीख की बात होती है तो बहुत सारे स्पेशल चीज़ें अच्छे दिन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ हमको एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है आज की डेट में जो स्पेशल डे है, वो ये है कि मेहनत, संघर्ष और नवाचार, इनोवेशन और सपनों को सच करने का के लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा देता है आज का दिन.
1: जी, और ये किस कॉन्टेक्स्ट में है ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आज पूरी दुनिया मना रही है वर्ल्ड MSME डे. तो MSME से जो आप सुनते हैं या समझते हैं उसको ये कहते हैं कि सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम दिवस. तो ये आप अगर बोलो इसको छोटी सी आसान भाषा में, तो ये कि वो नुक्कड़ वाली दुकान की ताज़ा ब्रेड ना, या फिर आपके घर के पास वाला बुटीक, या फिर जहाँ पार्लर जाती हैं है ना, वो भी एक एक MSME है, या फिर कोई भी एक नया ऑनलाइन बिजनेस किन्हीं लोगों ने मिलकर शुरू किया. तो ये सब जो छोटे लघु उद्योग हैं या मध्यम उद्योग हैं, इनको मनाने का आज दिन है.
0: बिल्कुल, एक छोटी सी सिलाई मशीन हो, छोटी सी चाय की दुकान हो, या ऑनलाइन स्टार्टअप हो आपका एक छोटा सा. जब हम बात करते हैं इन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की, उद्यमों की, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें यानी MSME को पहचान देने के लिए आज का ये दिन मनाया जाता है. और ये दिन हमें याद दिलाता है तरु कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की मजबूत नींव अक्सर छोटे कारोबार, छोटे उद्योग और बड़े सपने देखने वाले लोगों ने ही रखी है.
1: बिल्कुल सही कहा आपने अंजू. और आपको पता है कि ये जो MSMEs होते हैं ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं और लाखों लोगों को रोजगार देते हैं. और आपको बताएं कि ये आज का जो जमाना है वो एंटरप्रेन्योर से भरा हुआ है. वो चाहे हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर हो या फिर जो हमारे जेंजीज हैं, उन्होंने मिलकर कुछ ठाना और बना दिया. और आप अगर देखिए तो आपको कई सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे आज के टाइम पर जिन्होंने एक बहुत ही छोटे स्तर से अपनी शुरुआत करी और आज कहां से कहां पहुंच गए.
0: बिल्कुल, और शायद इसीलिए उन्हें जब बात की जाती है उन करोड़ों छोटे उद्यमियों, कारीगरों, दुकानदारों, महिला उद्यमियों, ग्रामीण उद्योगों और या स्टार्टअप्स की, तो उन्हें सम्मान देना. और जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, और इसीलिए आज का ये दिन संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2017 में बनाने की शुरुआत की थी. और भारत जैसे कि लोग जो देश हैं उसमें करोड़ों लोगों को रोजगार देने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये छोटे छोटे उद्योग.
1: जी, तो आज का ये दिन हम स्पेशली डेडिकेट करते हैं उन सभी उद्योगपतियों को छोटे स्तर पर जिन्होंने शुरुआत की या अभी भी वो एक लघु उद्योग के मालिक हैं, मगर उन्होंने उनके उस हौसले ने कई सारे लोगों को रोजगार दे रखा.
0: बिल्कुल, और वो इसी तरह सपोर्ट करते हैं समाज को, देश की अर्थव्यवस्था को और अपने आप को भी, अपने परिवार को, और खूब आगे जाएं, ऐसी हम शुभकामनाएं देते हैं आज के दिन की. बहुत बहुत शुभकामनाएं. और इसी से हम जोड़ते हैं आज का हमारा मुद्दा.
2: गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा.
1: हाँ जी, तो ये जो आज का मुद्दा है वो यही कि ये जो शुरुआत होती है, हम हमेशा सोचते हैं कि हमें बड़े काम करने हैं, बड़े सपने बुनने हैं और एक बड़ी ही सक्सेस पानी है, लेकिन उसकी शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से होती है.
0: बिल्कुल, आपने भी अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिसने बहुत ही छोटे स्तर से शुरुआत करके आज अपनी अलग पहचान बना ली है, या कोई छोटा सा बिजनेस किया और आज देखिए कितनी बड़ी कंपनी के मालिक हो गए हैं. क्या आप किसी ऐसे स्थानीय कलाकार, कारीगर या छोटे दुकानदार को सपोर्ट करते हैं? हमें आप लिखिए, क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो ये कि क्या सभी, जो भी बड़ी सफलता होती ना, उसकी शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है. किसी भी बड़ी सफलता की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है. आप अपनी राय, अपने अनुभव हमें मेल कर सकते हैं.
1: जी हाँ, हमारी मेल आईडी है fmakashwanilakhnow@gmail.com, और इस मेल आईडी पर अपने विचार भेजिए और हम जरूर शामिल करेंगे.
0: आपके ईमेल्स का इंतजार और बढ़िया बढ़िया म्यूजिक का साथ सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ अंजू और तरुषी के साथ.

0: जी दोस्तों 8:37 का वक्त हो गया है. गुड मॉर्निंग लखनऊ चल रहा है 100.7 एफएम रेनबो पर. और अब हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही खास व्यक्तित्व के बारे में. दोस्तों कुछ रचनाएं केवल शब्द नहीं होती, वो पूरे राष्ट्र की आत्मा बन जाती हैं. और ऐसी ही एक अमर रचना है वंदे मातरम, जिसे हम बहुत ही गर्व के साथ बोलते हैं. और इसके अमर रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनकी आज है जयंती, उन्हें हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं.
1: जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन जन्म हुआ था भारत के उस महान सपूत उपन्यासकार और कवि का, जिनके लिखे गीतों को पूरे देश ने सवारा, कितने सारे दीवाने उन पर उस गीत पर मर मिटे.
0: 27 जून 1838 को बंगाल के नौहाटी में जन्मे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आधुनिक भारतीय साहित्य के अग्रणी उपन्यासकार, महान चिंतक और राष्ट्रवादी लेखक थे. और ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय सिविल सेवा में डिप्टी मजिस्ट्रेट भी रहे, लेकिन उनकी कलम हमेशा मातृभूमि के सम्मान और जन जागरण के लिए चलती रही. उनका प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है. और इसी उपन्यास में पहली बार वंदे मातरम गीत प्रकाशित हुआ था.
1: जी हाँ दोस्तों, और बंगाली साहित्य के भी बारे में अगर बात करें तो

0: वो काफ़ी ज़्यादा उनकी लेखनी बहुत मशहूर रही हैं. उनके गद्य और उपन्यासों की शुरुआत में उसे आधुनिक और आम लोगों से जोड़ने के लायक बनाया. उन्होंने बंग दर्शन नाम की भी एक साहित्य पत्रिका शुरुआत की थी जिसके नए लेखकों को मंच दिया गया था.
1: और अगर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के पूरे जीवन को हम अगर समराइज करें ना तरुषि, तो उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में आत्मगौरव, राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक अस्मिता का संदेश दिया. उनकी लेखनी ने भारतीयों के मन में अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम सम्मान की भावना को और अधिक प्रबल किया. और हम जब 150 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं वंदे मातरम के, तो ऐसे में आज उनकी जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं.
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वंदे मातरम ये केवल दो शब्द नहीं बल्कि भारत माता के प्रति हमारी श्रद्धा, सम्मान और समर्पण का प्रतीक है.
1: बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनकी जयंती पर FM रेनबो की ओर से शत शत नमन.

0: इतने गौरव के साथ हम ऐसे गीत गाते हैं ना, और एकदम गूजबम्स होते हैं ना.
1: बिल्कुल, आज भी कोई भी ऐसा जो देशभक्ति का गाना है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बज रहा हो और आपने उसको महसूस ना किया.
0: बिल्कुल, और हम अंदर तक महसूस करते हैं, हम कहीं पर भी हों, ये आवाज़ें हमारी, ये ट्यून्स हमारे गानों में पड़ती हैं ना, तो अपने आप ही एक फीलिंग ही चेंज हो जाती है. बिल्कुल
1: बिल्कुल, और खासकर वंदे मातरम, ये जब भी हमारे जुबान पर आता है, जब भी हमारे कानों में पड़ता है, या जब भी हमें एहसास होता है, ये हर बार रिएक्शन करता है, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है.
0: बिल्कुल,
1: ना?
0: बिल्कुल,
1: हमारा माइंड वाले प्रोसेस कितनी देर में करे, कितनी जल्दी करे, मगर हमारी बॉडी तुरंत प्रोसेस कर लेती है.
0: बिल्कुल, और ऐसा होना भी चाहिए. देशभक्ति का जज्बा, अपने मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता का जज्बा हमेशा सर्वोपरि रहना चाहिए. चलिए वापस आते हैं प्रोग्राम में, और FM रेनबो आपके लिए हमेशा कुछ खास

0: प्रोग्राम्स लेकर आता है। आप जानते हैं आज है वीकेंड, सैटरडे है आज और कल है संडे, तो कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स आपके लिए होंगे, उसके बारे में अपडेट कर देते हैं आपको।
1: जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया इससे पहले भी कि हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम आता है हर रविवार को, आप सुनते हैं इसे 12 बजे से 1 बजे के बीच, और हर बार एक स्पेशलिस्ट हम बुलाते हैं, एक एक्सपर्ट आते हैं हमारे स्टूडियो, और आपकी ये लाइव प्रोग्राम होता है, फ़ोन इन कार्यक्रम है, और आपकी जो भी प्रश्न है उसका उत्तर आपको मिलता है। तो इस बार हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल जी, MBBS MG मेडिसिन KGMU लखनऊ से।
0: तो सुनना ना भूलिएगा ये प्रोग्राम कल दोपहर 12 से 1 के बीच।
1: और इस बार का जो टॉपिक है वो है लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिज्म, इससे जुड़ी जो मुख्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा होने वाली है। तो आप अपना फोन रेडी रखिएगा, 12 से 1 के बीच में आपका कॉल आप कर सकते हैं, और नंबर आपको पता है 0522 38 852
0: 25 भी है 45 भी।
1: अच्छा
0: तो ये मुझे लगता है कई दिनों से फोन इन प्रोग्राम नहीं किया था रुशी ने।
1: नहीं मैंने लास्ट टाइम जब किया था तो ये बिल्कुल चल रहा था।
0: तो ये कई बार हम ये सारी नंबर आकाशवाणी FM स्टूडियोज के ही हैं, लेकिन चेंजेस होते रहते और हमेशा आपको अलर्ट होकर उस प्रोग्राम में उस वक्त जो नंबर्स स्टूडियो में होंगे वो अनाउंस किए जाते हैं, वो ध्यान से सुनना होगा। अदरवाइज आपको रेगुलर नंबर्स तो आपको याद ही हैं। तो हेल्थ एंड फिटनेस होगा 12 से 1 के बीच, लेकिन उससे पहले 10 बजे आप सुनेंगे कल रविवार 28 जून को पदचिन्ह आकाशवाणी के। आपको पता है कि महीने में एक बार पदचिन्ह आकाशवाणी के आप तक पहुंचता है रविवार को, और इसमें किसी ऐसी शख्सियत से बात की जाती है, वार्ता की जाती है जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने एक बहुत बड़ा समय दिया और देखा, एक युग देखा आकाशवाणी का। तो कल हमारे मेहमान होंगे श्री सुशील रॉबर्ट बैनर्जी, पूर्व उप महानिदेशक आकाशवाणी, और आपसे बातचीत करेंगी सुमोना पांडे जी। तो सुनना ना भूलिएगा ये कार्यक्रम 10 बजे से 11 बजे के बीच FM रेनबो पर, और इसे आप DTH पर भी सुन सकते हैं, न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं, साथ ही साथ आप ऑनलाइन लाइव रेडियो के जरिए कहीं पे भी सुन सकते हैं। गूगल पर जस्ट टाइप कीजिए 100.7 और जुड़ जाइए हमारे साथ जहां पर अभी इस वक्त आप जुड़े हैं, और गाना बहुत बढ़िया वाला आ रहा है।
1: अभी सब इंजॉय करेंगे हम लोग स्टूडियो में इंजॉय करेंगे
0: भी। यस

0: 100.7 FM रेनबो ट्यून किया है आपने। मखड़ा मखड़ा मक्खन मत खाइएगा, बाकी मक्खन जिसको कहना चाहते हो तो कह दीजिए। मतलब लिमिटेड है। देखो नाश्ता जब होता है ना तो बड़े सारे लोग, एक तो पराठा ऊपर से उस पर बटर,
1: देखिए आपको नहीं पसंद है वो मैं समझ रही हूँ, आप
0: पसंद बहुत है, पसंद बहुत है,
1: हेल्थ कॉन्शियस है, ठीक है, मगर ये बड़ी तादाद है हमारे श्रोताओं में, उनमें मैं भी शामिल हूँ।
0: और अब देखिए जब अब मतलब जो हमारे लिसनर्स है ना वो भी कम नहीं है, जब मेल्स भेजते हैं ना तो ऐसी ऐसी चीजें भेज देते हैं। अब जैसे ये देखिए तिरंगे की फोटो तक तो अच्छा था, ये बहुत देशभक्ति का जज्बा जागा हुआ था हमारे अंदर पहले से ही। उसके बाद फिर उसके नीचे देखिए तरुषी है ना, देखा आपने, चाय बिल्कुल डल रही है, बिल्कुल ताजी ताजी गर्मा गर्म, फिर समोसे के साथ हरी मिर्ची रखी हुई है। मतलब क्या कहा जाए, ये जो मतलब चीजें हैं ये मत भेजा करिए भाई, हम लोग प्रोग्राम करने आते हैं, हम लोगों को डिस्टर्ब मत किया करिए।
1: ये लेकिन
0: और ये भेजा मालूम अमीनाबाद से।
1: हाँ,
0: ये अब पुराने लखनऊ की अगर बात कर ली जाए, अमीनाबाद है, चौक है, तो ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं ना, मक्खन मलाई से लेके, अब क्या बताऊं यार तरुषी, मतलब यहाँ से निकल के वहीं चलते हम लोग।
1: देखिए अगर ये हो पाएगा तो बिल्कुल हम लोग करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि जहां पर अगर मैं इनवाइट करूंगी अंजन जी को कि चलिए खाने चलते हैं, वो तुरंत उनका अंदर का जो कॉन्शियसनेस है वो तुरंत जाग जाता है, हेल्थ कॉन्शियस अंजू जिंदा हो जाती है।
0: नहीं अंजू, रुक जाओ, स्टॉप, नहीं जाना है। देखिए भाई बढ़ता हुआ वजन और वो कहते हैं ना बढ़ता हुआ वेट और निकलता हुआ पेट, दोनों नुकसानदायक है, तो उसे कंट्रोल करके रखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें देखिए इसीलिए तो, और कल वाला जो प्रोग्राम है ना हेल्थ एंड फिटनेस का, उसमें ये टॉपिक ही मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो आप कितना भी कोशिश कर लेंगे कि तो आपका वजन नियंत्रित नहीं।
1: और मैं सच बताऊं कि किसी किसी का मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग होता है कि वो कुछ भी खा लेते हैं,
0: खाते भी तेरे सारा दिन,
1: ऐसा लगता है कि कहां जाता है, कहां हवा में जाता है, कहां से आते हैं।
0: काश ऐसा ही हम लोग भी होते, हम लोग हवा भी खा लेते तो भूल जाते,
1: ऐसा लगता है बिल्कुल हवा भी तुरंत हवा लगती है हम लोग को।
0: चलिए ईमेल्स पे आते हैं, और ये वाला मेल जो समोसे और चाय के साथ भेजा है वो पिंकी वारी ने भेजा है, और गुड मॉर्निंग भेजा है, सुबह से सुन रही है शो, बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुगंध माटी की प्रोग्राम का इंतजार है, बिल्कुल आप इंतजार करिए 10 बजे से वो प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा। और आज जो गुड मॉर्निंग लखनऊ में हमने टॉपिक दिया है, जिन श्रोताओं ने अभी अभी हमें ट्यून किया है उनके लिए भी हम बता दें कि किसी भी बड़ी सफलता के लिए शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है, और MSME डे मना रहे हैं इसलिए ये शुरुआत हमने इस टॉपिक पर आज आपसे बात करनी चाहिए। और पिंकी बारी जी लिखकर भेज रही हैं कि लघु उद्योग छोटा बिजनेस जरूर होता है मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस होता है, इससे लोगों को रोजगार मिलता है, साथ ही उनकी इनकम बढ़ती है, हमारे देश का कोई भी तरक्की कर सकता है, तरक्की की तरफ ले जा सकता है, और हमें इससे बढ़ावा देना चाहिए, इसलिए मेरा सपोर्ट हमेशा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर ही रहता है और मैं मोस्टली वही यूज करती हूँ। बहुत अच्छा करती हैं आप, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए
1: जी। अब आगे बढ़ते हैं, और सुधांशु जी का मेल आया है और लिखते हैं

0: किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहला कदम छोटा ही होता है। जब हम छोटी शुरुआत करते हैं तो हमारे ऊपर एकदम से बहुत बड़ा दबाव नहीं आता है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हम पहली बुनियादी सीखते हैं, उसके बाद हम अपनी डिग्रियां हासिल करते हैं। इसी तरह से व्यापार या उद्योग भी, दुनिया में बड़े बड़े साम्राज्य शुरू होते हैं लेकिन वो शुरुआत एक छोटे से आइडिया या छोटी सी दुकान से ही होती है। तो छोटी शुरुआत करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसमें नुकसान का जोखिम कम होता है। अगर हम इससे अपनी गलतियाँ अगर हमसे होती तो हम उनसे सीखते हैं और खुद को सुधार करते हैं। इसी तरह से ये जो है पूरी लगन से कोई भी शुरुआत करें, पूरी लगन से करनी चाहिए। बड़ी सफलता असल में छोटे सही फैसलों के लगातार मेहनत से ही का ही परिणाम है।
1: बिल्कुल, बहुत सही बातें आपने लिखकर भेजी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, शुरुआत की बात की तो शुरुआत में जो मेल आए थे प्रोग्राम में वो भी हम
0: स्किप हो गए,
1: उसकी तरफ भी हम देख रुख कर लेते हैं। वारिस अली जी का भी मेल आया था, ना हम सफर और ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। बहुत सही बात आपने कही है,
0: गहरी गहरी लाइंस भेजते हैं।
1: अरे बहुत बहुत, और इन्होंने पुष्पांजलि और सदाभार गीत प्रोग्राम की बहुत तारीफ की है। थैंक यू सो मच तरुश्री की तरफ से।
0: हाँ,
1: क्यों
0: बिल्कुल।
1: और इसके बाद शुरुआत में ही नीलू जी का भी मेल आ गया था। इन्होंने कहा हम दीवाने, मतलब क्या कहने की बात है। इन्होंने कहा कि कोई बात कहने की कोई बात नहीं, और हम लोग लिसनर्स के दिल में नहीं, दिल में घर नहीं बल्कि दिल पर राज करते हैं। सुपरहिट जोड़ी, बहुत सारी तारीफें आपने लिखकर भेज दी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
0: घनश्याम सिंह जी लिखते हैं कि गलतियां हमें आगे और हमें बेहतर बनाती हैं, तो हमें हमेशा अपनी गलतियों से कुछ सीखना चाहिए।
1: बिल्कुल, और आज का मॉर्निंग मंत्रा भी कुछ ऐसे ही था। मोनू जी क्या लिखते हैं?
0: मोनू जी लिखती हैं कि अंजू बहन जी के साथ तरुश्री जी आपको सादर प्यार भरा नमस्कार।
1: बाप रे, नमस्कार,
0: धन्यवाद।
1: और आर्येंद्र सिंह जी का भी मेल आया है, और इन्होंने भी सुप्रभात भेजा है। कहते हैं कि आप दोनों ने तो आते ही माहौल को खुशनुमा बना दिया और अपनी बातों को आंखों से नहीं कानों के दिलों में उतार दिया, कानों से दिल में उतार दिया। आप लोगों की जुगलबंदी पर कुछ पंक्तियां जहन में आ गई, और लिखते हैं कि हम हवा का वो झोंका नहीं जो यूं ही गुजर जाएंगे, हम तो तूफान है, जब तक रहेंगे हलचल करेंगे और बाद जाने के इंद्र अपने निशान छोड़ जाएंगे। बहुत एनर्जेटिक होता है ये प्रोग्राम, बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी फ्रेंड्स। कहते हैं कि मेहनत हर रंग हर जगह रंग लाती है, बस ईमानदारी से अपने लक्ष्य को जरूर पालेंगे, क्योंकि छोटी छोटी शुरुआत ही आज एक दिन बड़ी बनती है। मैंने देखा है कि शहर में एक व्यक्ति का नाम इन्होंने लिखा है, उन्होंने पान की दुकान से शुरुआत की थी और अपनी मेहनत के बल पर 8 विविध क्षेत्रों की दुकानों को संचालित कर रहे हैं और पूरा परिवार इस काम में लगा दिया है उन्होंने। बिल्कुल, बहुत अच्छा करते हैं। और ऐसे लोगों के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, नेक्स्ट जो जनरेशन होती है ना, उनको भी कहीं और बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होती, फैमिली बिजनेस को ही रन करते हैं और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं। आर्येंद्र सिंह जी, बहुत ही खूबसूरत मेल आपका, लखीमपुर खीरी से आप हमें मेल कर रहे हैं, थैंक यू सो मच
0: जी। और मोनू सेठ जी ने भी फिर से एक मेल भेजी है और लिखते हैं कि बारिश की छोटी छोटी बूंदे ही हमें मिलकर अंत में बहती हुई नदियां बन जाती हैं। ठीक उसी तरह रोज किए गए छोटे काम लंबे समय तक बड़े बदलाव लाते हैं। तो ये विचार बिल्कुल सत्य व्यवहारिक है, और लिखते हैं कि जीवन की बड़ी उपलब्धि वास्तव में छोटे छोटे कदमों का ही संकलन है। बड़ी ही गहरी गहरी बातें उन्होंने लिख के भेजी हैं। फिलहाल एमएसएमई के विषय में अगर आप लिखकर हमें थोड़ा भेज दें तो हम आपकी मेल और शामिल कर लें उस विचार पर।
1: बिल्कुल, तो आज के मुद्दे पर आपकी ईमेल्स और भी बहुत कुछ है हमारे पास जो आप तक पहुंचेगा जरूर 9 बजे से 10 बजे के बीच, समाचार पत्रों की सुर्खियों के, न्यूज बुलेटिन के बाद। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो, चल रहा है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।

नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। अयोध्या में राम मंदिर दान में कथित अनियमितता मामले में हुई कार्रवाई को आज सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापा है। दैनिक जागरण ने लिखा है, चढ़ावा चोरी के 8 आरोपित गए जेल, 80 लाख रुपए व $1,000 बरामद। उपशीर्षक है, चंपत राय व डॉक्टर अनिल के इस्तीफे की चर्चाओं का को ट्रस्ट अध्यक्ष ने कहा निराधार। अमर उजाला ने खबर पर शीर्षक दिया, चंपत राय व अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपी गए जेल। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, आउटसोर्सिंग कर्मचारी निकला चढ़ावा चोरी का मास्टरमाइंड, एसआईटी रिपोर्ट में खुलासा, सीसीटीवी में चोरी करते दिखे आरोपी। अमृत विचार ने इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को शीर्षक बनाते हुए लिखा है, बख्शे नहीं जाएंगे आस्था से खिलवाड़ करने वाले। इलाहाबाद हाईकोर्ट के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को टालने और ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर नाराजगी जताई है। ये खबर भी आज अधिकतर समाचार पत्रों की हेडलाइन बनी है। हिन्दुस्तान ने लिखा, अध्यादेश लाकर नहीं बढ़ा सकते प्रधानों का कार्यकाल हाईकोर्ट। दैनिक जागरण ने खबर पर शीर्षक दिया है, प्रधानों को प्रशासक बनाना असंवैधानिक, चुनाव की योजना बताए सरकार कोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों के नाम पहली बार किए गए सार्वजनिक, इस खबर ने भी आज अखबारों के पहले पन्ने पर जगह बनाई है। हिंदुस्तान ने लिखा, सिंदूर में शहीद 6 सैनिकों के नाम सार्वजनिक किए गए। अमर उजाला लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 6 जवान हुए थे बलिदान, पहली बार सामने आए नाम, राष्ट्रीय स्मारक पर अंकित किए गए बलिदान सैनिकों के नाम। अलीगंज अग्निकांड से जुड़ी खबरें भी आज कई समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छापी हैं। अमर उजाला ने लिखा है, अवैध बिल्डिंग के मददगार एलडीए के पूर्व वीसी भी दोषी। हिंदुस्तान लिखता है, अग्निकांड के जिम्मेदार 30 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय, एसआईटी की भौतिक जांच पूरी, बयान दर्ज किए गए। नवभारत टाइम्स ने नीट यूजी से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर छापते हुए लिखा है, नीट यूजी एक सवाल हटा, सबको मिलेंगे 4 बोनस अंक। 10वीं मुहर्रम को जुलूस के दौरान बख्शी का तालाब इलाके में छज्जा गिरने से 2 बच्चों की मौत की खबर भी आज कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। स्वतंत्र भारत ने भीषण गर्मी के बीच मॉनसून आने के संकेत से जुड़ी खबर भी सुर्खी दी है। यूपी में आज से झमाझम के आसार। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक सुनते रहिए FM रेनबो।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सुरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: साथ हमारा हरदम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग
3: FM रेनबो के संग।

0: जिंदगी के सतरंगी रंग एफएम रेनबो के संग कितना अच्छा लगता है ना सुनने में,
1: बहुत बहुत सुंदर लगता है।
0: अच्छा महसूस करने में भी।
1: हाँ सच में। और ये सतरंगी बातें जो हम लोग करते हैं ना, और सतरंगी अतरंगी बातें ही हम लोग की चलती रहती हैं।
0: बिल्कुल। और अभी थोड़े दिन पहले मुझे हाल ही में एक महिला मिली थी और उन्होंने बताया कि उनका जो छोटा सा बच्चा है 3 साल का, वो कहते मम्मा लगाओ ना एफएम रेनबो सात सुरों की, मतलब गा रहा था बच्चा।
1: तो
0: वो कैसे गा रहा था, वैसे मैं तो नहीं गा सकती, लेकिन मैंने तुरंत बोला कि मुझे वो आवाज़ चाहिए, आप रिकॉर्ड करके मुझे भेजिएगा।
1: अब यही चीज़ें जो है ना, वो हमारे जो आसपास के लोग हैं वही बताते हैं कि हमें एफएम रेनबो कितना प्रिय है।
0: और जब इस तरह की बातें हम लोगों को सुनने को मिलती हैं इस पार इस जगह पर बैठकर, जब हमें ये पता चलता है कि आप लोग एफएम रेनबो से कितना प्यार करते हैं, तो यकीन मानिए हमें बहुत अच्छा लगता है, इतना फूल के कुप्पा हो जाते हैं।
1: बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मैं जिस पार्लर में जाती हूँ वहाँ पर रेनबो ही चलता है। और जब पहली बार गई तो उन्होंने वही ट्यून, अपना रेनबो ट्यून था, और जब मैंने सुना अरे ये तो एफएम रेनबो है, तो उन्होंने कहा अरे हम तो यही सुनते हैं। वो सुन के इतना अच्छा लगता है। आप किसी दुकान पर जाइए और वहाँ पर एफएम रेनबो चल रहा है और आप कहें अरे ये तो एफएम रेनबो ट्यून है, हाँ हम यही सुनते हैं।
0: और जब लखनऊ से बाहर और तमाम अलग अलग राज्यों से यूपी के बाहर भी लोग हमें सुन रहे हैं अब तो न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं लगातार, हर प्रोग्राम में आपके ईमेल्स मिलते हैं, फोन कॉल्स मिलते हैं, तो बस इसी तरह अपना प्यार रेनबो को देते रहिए। आज रेनबो का बर्थडे तो नहीं है ना, हम लोग इसी बात कर रहे हैं, 20 अगस्त में आने में अभी टाइम है। तो फिलहाल गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकेंड हाफ में फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजू और मेरे साथ है तरुश्री। 9:05 का वक्त हुआ है, 10 बजे तक ये सफर चलता रहेगा यूं ही शानदार तरीके से। सुनते रहिए एफएम रेनबो।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत।
1: गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
2: दिस डे इन हिस्ट्री।
3: हाँ जी, 9:12 का वक्त, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ। और अब चलिए बात कर लेते हैं कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में किन किन कारणों से दर्ज है।
4: बिल्कुल, तो हम बात कर रहे हैं एमएसएमई दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम दिवस। इसकी शुरुआत हुई थी संयुक्त राष्ट्र की ओर से 2017 में आज के दिन। और एक और बहुत खास दिन है तनुश्री, अंतर्राष्ट्रीय बधिर और दृष्टिहीनता दिवस, इंटरनेशनल हेलन केलर डे। हेलन केलर जी के जन्मदिवस के रूप में 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगता अधिकारों और समावेश के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इस ओर काम किया था। तो आज उन्हें उनकी जयंती पर नमन करते हैं। और इस दिन के लिए हम सभी दिव्यांगजनों से बस इतना कहना चाहेंगे कि आप बहुत स्पेशल हैं।
3: जी बिल्कुल। और आज का दिन एक और कारण की वजह से इतिहास में दर्ज है, वो इसलिए क्योंकि आज दुनिया का पहला एटीएम, भाई एटीएम ना होता तो पता नहीं क्या होता, पहला एटीएम दुनिया का आज से शुरू हुआ था। तो क्योंकि पैसे की किल्लतों के कारण ये बड़ी परेशानी हो रही थी, और सच में ये हमारी परेशानी दूर करने वाला ये एटीएम आज के दिन से शुरुआत हुई। और इसकी शुरुआत जो थी वो लंदन के बॉकलेज बैंक में लगाया गया था। इससे पहले आपको पता ही है कि लोगों को अपनी ही गाढ़ी कमाई को निकालने के लिए बैंक में लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। अच्छा आप बताइए, आपको एटीएम का फुल फॉर्म पता है?
4: हाँ बता दीजिए, अब हमारा टेस्ट ना लीजिए।
3: बिल्कुल, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता है, एटीएम का मतलब नहीं पता, लेकिन एटीएम का इस्तेमाल भरखूब होता है।
4: ऑटोमेटेड टेली मशीन, और जो आपकी इमरजेंसी में हमेशा आपके साथ रहती है। और अब तो बहुत सारी संख्या में हर जगह आपको अलग अलग बैंक्स के एटीएम्स मिल जाते हैं। और पहले ये होता था कि जिस बैंक का आपका अकाउंट है उसी बैंक में आप पैसे निकाल सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अब तो किसी भी बैंक के एटीएम से आप अकाउंट किसी भी बैंक का हो आप कर सकते हैं काम अपना पूरा।
3: जी।
4: और अब आगे बढ़ते हैं। तो 1954 में दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र मॉस्को सोवियत संघ के निकट ओबनेंस में 27 जून को ही शुरू किया गया था।
3: जी, तो ये हिस्ट्री की मुख्य बातें थी, आज के दिन की मुख्य इतिहास की बातें थी। और इसके अलावा जो
4: इसके अलावा आज के दिन जिन लोगों को हमने खोया है उन्हें भी याद करना बहुत ज़रूरी है। और उनमें से बहुत बड़ा नाम है, 1839 में निधन हुआ जिनका, वो महाराजा रणजीत सिंह। पंजाब का शेर कहा जाता था उन्हें, और उन्होंने अनेक रियासतों को संगठित कर एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। और उनकी प्रशासनिक क्षमता, धार्मिक सहिष्णुता और

0: निश्चिता आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। तो आज उनके पुण्यतिथि पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
1: और अगर पुण्यतिथि की बात करें तो फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ, साल 2008 में आज ही के दिन भारत के पहले फील्ड मार्शल और 1971 के युद्ध के महानायक माने जाने वाले सैम बहादुर ने आज अंतिम सांस ली थी। उनकी बहादुरी और कड़क अंदाज की कहानियां आज भी भारतीय सेना के जवानों में जोश भर देती हैं।
0: बिल्कुल, और उन पर आधारित एक मूवी तो आपने देखी ही होगी। तो नमन करते हैं हम उनकी बहादुरी को, और ऐसे अमर सपूत हमेशा अमर रहेंगे जो भारत माँ के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देकर गए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं हमारे आसपास जो हमें लगातार प्रेरित करती हैं। ऐसे लोगों की शख्सियत, उनकी आप बायोग्राफी पढ़िए, वो हमेशा आपको मोटिवेट करेगी। और आज का जो दिन है ना, उससे जुड़े लोग भी हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। छोटी सी दुकान लगाकर एक बड़ा सपना संजोकर कहीं पर किसी भी चौराहे के किनारे आपको लोग मिल जाते हैं, या फिर एक छोटा सा बिजनेस अपना ऑनलाइन भी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही मुद्दे पर आज MSME डे के तौर पर की वजह से हमने जो मुद्दा लिया है कि बड़े सपने अक्सर बड़ी सफलता या बड़े सपने छोटी को पूरा करने की जो रास्ता है ना, वो छोटी शुरुआत यानी छोटे कदम से होता है। और इस पर आपकी राय लगातार हमें मिल रही है
1: जी। तो एक दो मेल शामिल कर दें, फिर हम म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं।
0: ओके, बिल्कुल।
1: तो आकाश कुमार जी का मेल आया था, ये इन्होंने फिलहाल तो इस मुद्दे पर उनको समझ नहीं आया वो बोल रहे हैं, तो हम फिर से अभी मेरे ख्याल से इतनी बार ये मुद्दा दोहरा दिया गया है कि
0: आधे घंटे पहले मेल आया था तो अब तक तो समझ में आ गया होगा।
1: बिल्कुल, चलिए तो आपके मेल का इंतजार रहेगा। महेंद्र दीपन जी का मेल आया है,
0: और ये क्या लिखते हैं
1: इन्होंने, ये हमें गांव रोड जिला नौगढ़ राजस्थान से हमें सुन रहे हैं, और लेकिन इन्होंने मेरे ख्याल से आज के उस पर विषय पे बड़ी ही रंगात्मक चित्र उन्होंने भेजा है, उसको हम शामिल करते हैं। लिखते हैं कि बड़े सपनों को पूरा करने की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से ही होती है। तो ये जो जिस पर अच्छा उदाहरण में मैं खुद हूँ, जब मैंने साल 2013 में अपने काम की शुरुआत की थी तब मुझे इस फील्ड का कोई नॉलेज या अनुभव नहीं था। शुरुआत में मुश्किलें भी आई लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और छोटे छोटे कदम बढ़ाता गया, सीखता गया, और आज मेहनत और लगातार प्रयास की बदौलत अपने फील्ड में कैसा भी हूँ बड़े से बड़ा काम भी पूरी महारत के साथ करता हूँ।
0: क्या बात है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही छोटी शुरुआतों से ही तो बड़े सपने हासिल होते हैं। तो और नेक्स्ट मेल है विजय जी का, महोबिया, लिखते हैं शानदार गीतों की पेशकश को सैल्यूट है दी, और देखिए ये फरमाइशी गीतों का तो प्रोग्राम नहीं है लेकिन आपका मेल हमने शामिल किया। विजय महोबिया जी, कविता महोबिया और पेंटर बाबू जी, आप लोग हमें सुन रहे हैं रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ
1: जी। और रमेश चौहान जी का मेल आया है, ये भी हमें कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से हमसे जुड़े हुए हैं, और आप ये प्रोग्राम हमारे साथ सुन रहे हैं। साथ ही साथ लिखते हैं कि मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान बेबी, गर्वी बेबी, बॉय हिमांश, तो ये सब मिलकर प्रोग्राम सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, आपके मेल का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और घमोइया हरदोई से अरुण कुमार कुशवाहा जी ने भी गुड मॉर्निंग नमस्कार भेजा है, और लिखते हैं कि आप दोनों के प्रोग्राम में आ जाने से रौनक आ जाती है। देखिए रौनक और खुशी तो नाम हमें आंचल ने दे दिए थे, और बहुत अच्छा लगा उनका भी मेल, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुद्दे पर ये कहना चाहते हैं कि दोस्तों को कुछ मदद करके छोटा सा जनरल स्टोर का कारोबार कराया था, आज उसके पास 3 और युवक इस स्टोर में काम कर रहे हैं, और वो जब भी मिलता है मुझे धन्यवाद देता है। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, है ना।
1: बिल्कुल, और आज का दिन ही है ये याद दिलाने के लिए कि ये जो सपोर्ट है ये इन MSME जो उद्यमियां हैं, ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये सपोर्ट जारी रखिए और हमारा प्रोग्राम सुनते रहिए।

0: बीट्स बहुत एनर्जेटिक है ना, तो आप जाहिर सी बात है थिरक रहे होंगे बड़े सारे लोग अतरुषि की तरह बैठे बैठे और कुछ लोग तो रोड पर भी नागिन डांस करते हैं, पता तुम्हें?
1: और मैं उनके बारे में नहीं जानती, लेकिन अपना जानती हूं कि मुझे बाइक पर अच्छा लगा।
0: बाइक पर होते हैं और ऐसा नागिन डांस करके चलते हैं कि क्या बताऊं। मतलब कल तो मैंने देखा एक बंदे को, खैर अब उनके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, उनके लिए अगर कुछ कहना है तो कहेंगे हमारे ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विकास सिंह सर, जो हर रोज ट्रैफिक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं और इस वक्त भी हमारे साथ फोन लाइन पर है। गुड मॉर्निंग सर।
2: वेरी गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज मैम लखनऊ में वर्तमान में यातायात सामान्य गति से गतिमान है, कहीं भी अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है। चूंकि शाम के समय में पीक आवर्स में थोड़ा सा हमारा ट्रैफिक लोड रहता है, जो हमारे पीक आवर्स के ट्रैफिक का जो पॉइंट है वो अगर हम लखनऊ अयोध्या मार्ग की बात करें तो कमता चिन्हट मटियारी और विजयपुर अंडरपास जो हमारा शहीद पथ पर पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ अयोध्या मार्ग पर हमारा बारह बिरवा अवध चौराहा और स्कूटर इंडिया के पास थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है, अथेली बाग और हमारा ये लखनऊ रायबरेली मार्ग पर। तो अभी अभी तो फिलहाल कोई यातायात दबाव नहीं है और शाम के समय में भी हम यहाँ पर अतिरिक्त फोर्स लगाकर सुगम यातायात का संचालन कराते हैं। जी मैम, जैसा कि अभी आपने बताया कि कुछ लोग जो है रोड पर चलते हुए जो है अनियंत्रित तरीके से अपने वाहनों को चलाते हैं, जिससे उनके जान को खतरा होता है और साथ ही दूसरा व्यक्ति जो इनोसेंट व्यक्ति रोड पर चल रहा है उसके भी जान को खतरा होता है। तो ऐसे लोगों के लिए लगातार हम प्रवर्तन की कार्रवाई करा रहे हैं और मैम आपको आपके माध्यम से अवगत कराना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो प्रकरण हमें संज्ञानित होता है उनका भी त्वरित गति से चालान किया जाता है और ऐसे वाहन चालकों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की रिपोर्ट आरटीओ को लगातार भेजी जा रही है। तो मेरा यही अनुरोध है कि आप जो है अपने साथ साथ दूसरों के भी जान की फिक्र करें और जब भी रोड पर चले यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और इंजॉय के साथ सुनते रहें 100.7 एफएम रेनबो धड़कन लखनऊ की।
0: क्या बात है, क्योंकि यही चैनल है जो आपको लगातार जागरूक करता है, सतर्क करता है ना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।
2: धन्यवाद।
0: तो हमारे साथ है टीएसआई विकास सिंह सर और उन्होंने जो कहा तो उसकी तरफ आप सबने जरूर ध्यान दिया होगा आई एम श्योर, क्योंकि ये जो नागिन डांस करने वाले हैं ना, ये पता नहीं कब कब फिर जो है पकड़ लिए जाए और उसके बाद आप पर कार्रवाई हो जाए, ये आपको भी नहीं पता चलेगा, जब मैसेज आएगा ना चालान का तब मालूम पड़ेगा। तो ध्यान रखिए अपना, ट्रैफिक रूल्स को लगातार फॉलो करते रहिए और सुनते रहिए एफएम रेनबो। One more.

0: बहुत सारी शुभकामनाएं विश यू ऑल अ हैप्पी हैप्पी हैप्पी बर्थडे जिनका आज है जन्मदिन उन्हें पूरे एफएम रेनबो की ओर से बेस्ट विशेस बहुत सारा प्यार आशीर्वाद सब कुछ
1: जी हाँ और आज जिनकी एनिवर्सरी है जो अपना स्पेशल दिन मना रहे हैं उनको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आज
0: और आपको बता दें कि उनको डबल मुबारकबाद दे देते हैं और आपको जल्दी से बताना चाहेंगे कि आप अपना बर्थडे किसके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं वैसे जिन जिन का बर्थडे है ना देखिए हमने जैसे ही गाना गाया विश किया उनके फेस पे स्माइल आ गई
1: स्माइल
0: सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है कि एफएम रेनबो उन्हें विश कर रहा है ना और बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए स्वस्थ रहिए जबरदस्त रहिए मस्त रहिए आजीवन है ना और सुनते रहिए
1: जी और साथ ही आपको बता दें कि आज आप जिनके साथ अपना बर्थडे शेयर करते हैं उनमें से एक महान हस्ती हैं भारत की उड़न परी और पायोली एक्सप्रेस के नाम से मशहूर पीटी उषा
0: और पीटी उषा जी के पूरे नाम की अगर बात करें तो उनका पूरा नाम है पिलावल कंजी थक्के परम्बिल उषा और केरल के छोटे से गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है उन्होंने कौन नहीं जानता उन्हें
1: बिल्कुल सही कहा और आज ये जो लेजेंड है जिनको कहते हैं ना भारतीय खेल के इतिहास की एक ऐसी जीती जागती किदवंती यानी लेजेंड है वो जिन्होंने भारतीय महिलाओं को ट्रैक पर दौड़ना सिखाया जब वे दौड़ती थी तो पूरा देश अपनी टीवी स्क्रीन से चिपक जाता था
0: और आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर जिन लोगों को नहीं पता उनको बताना भी चाहेंगे कि 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में वो मात्र एक सेकंड के 100वें हिस्से के अंतर से एक पदक से चूक गई थी लेकिन पूरे भारत का दिल जीत लिया था और उनकी तो

0: पर्सनालिटी ही ऐसी है ना दारुश्री, कि जब उनको वो सामने आती हैं स्क्रीन पर, हमने जब जब उन्हें देखा है, एक अलग तरह का ऑरा है, एक अलग तरह का मोटिवेशन मिलता है उन्हें देखकर।
1: जी बिल्कुल, और उनको बोला जाता था एशियाई खेलों की गोल्डन गर्ल, है ना,
0: क्योंकि उन्होंने बहुत सारे स्वर्ण पदक जीते हैं और बाद में उन्होंने उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स की स्थापना करके एक अलग पीढ़ी को, नई पीढ़ियों को, खिलाड़ियों को तैयार करने का जो बीड़ा उठाया उस पर वो लगातार काम कर रही हैं, और हमेशा उनका उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। और ये ज़रूर उनकी ज़िंदगी सिखाती कि सफलता सिर्फ मेडल्स से नहीं मापी जाती, कभी कभी जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, वो इंसान को अमर बना देता है।
1: बिल्कुल, और एक और हस्ती हैं जिनका आज जन्मदिन हम मना रहे हैं, या कह सकते हैं जयंती मना रहे हैं।
0: इनकी जयंती क्या, इनको हमेशा मतलब वो लिविंग लेजेंड ही रहेंगे हमारे लिए, आज भले वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब जब म्यूजिक की बात होती है, बॉलीवुड म्यूजिक की बात होती है, तो पंचम दा की म्यूजिक को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, उनके गानों के बिना तो हमारा कोई भी प्रोग्राम पूरा होता ही नहीं है।
1: बिल्कुल, और जब भी हम पुराने गीतों की बात करते हैं तो और आरडी बर्मन यानी राहुल देव बर्मन का नाम ना आए, ऐसा तो ये कि ना म्यूजिक शो इनकम्प्लीट है।
0: बिल्कुल, संगीत के जादूगर आरडी बर्मन, जिन्हें पूरी दुनिया प्यार से पंचम दा के नाम से जानती है, आज ही के दिन 27 जून 1939 को कोलकाता में जन्म हुआ था उनका।
1: जी हाँ, और संगीत की दुनिया के वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा को पूरे ढर्रे से निकालकर, एक पुराने ढर्रे से निकालकर एक सीधे मॉडर्न एरा में लाकर खड़ा कर दिया था।
0: बिल्कुल, जो वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे या फोक म्यूजिक और साथ ही साथ क्लासिकल म्यूजिक,
1: और बड़ी क्रिएटिव थे। ऐसा नहीं था कि कोई इंस्ट्रूमेंट उनके पास अगर है या नहीं है, उसका हर तरह का जुगाड़ उनके पास था।
0: बिल्कुल,
1: एक नई नई चीजें, वो कहो उठा के कंघी से कुछ ना कुछ बजा दें, या कुछ और भी उनके पास जो चीजें रखी हुई है, कुछ मौजूद ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, उससे वो धुन निकाला करते थे।
0: अब देखिए, चुरा लिया है तुमने, जब आप गाने की शुरुआत करते हैं तो ग्लास, कांच के ग्लास पे वो ट्यून निकलती है, बहुत सारे ऐसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए जो मतलब यादगार बन गए और आज भी उनको फॉलो करते हैं नए युग के संगीतकार, गीतकार और गायक कलाकार, हमेशा उन्हें अपने दिल में रखते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं, क्योंकि आरडी बर्मन ने इतना कुछ दिया है इंडियन म्यूजिक को कि हम शायद कभी ये नहीं कह पाएंगे कि वो हमारे बीच नहीं है। दम मारो दम, चुरा लिया है तुमने, महबूबा, ओ मेरे दिल के चैन, ये शाम मस्तानी, तेरे बिना जिंदगी रहना बीती जाए, कुछ तो लोग कहेंगे हमें तुमसे प्यार गिन, कितना मतलब कितने गाने गिनवाऊं।
1: और सच में, और एक गीत आपने बोला ना महबूबा महबूबा, उसकी तो बैकग्राउंड साउंड है ना, उन्होंने उसके लिए खाली जो बोतलें होती है ना उसमें फूंक मार कर आवाज निकाली थी।
0: बिल्कुल,
1: तो मतलब इसको कहते हैं क्रिएटिव माइंड।
0: और अपनी आवाज भी, जब उन्होंने जिन जिन गीतों में अपनी आवाज दी है, में जिस तरह से वो चेंज लाते थे, बिल्कुल जिस तरह का ट्रांजिशन उन्होंने दिखाया, मुझे लगता है कि इंडियन बॉलीवुड म्यूजिक में ऐसा कोई और संगीतकार हुआ ही नहीं है, न कभी होगा। आरडी बर्मन ने किशोर कुमार, आशा भोसले, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी जैसे महान गायकों में उनकी धुनों ने जादू पैदा किया। बस पंचम दा ने ये साबित किया है कि संगीत की कोई सीमा नहीं है, अगर सोच नहीं हो तो हर धुन अमर हो सकती है। तो आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक म्यूजिकल नमन करते हैं।

0: जी, आर डी बर्मन साहब की आवाज हमेशा हमारे दिलों में रहेगी. आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है तो ये गाना आपको सुनवाया. लगातार एफएम रेनबो पर आप प्रोग्राम्स सुनते रहेंगे, प्रोग्राम में गाने उनके सुनते ही रहेंगे, हमेशा सुनते हैं. और अब वापस आते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में आज के मुद्दे पर.
1: जी हाँ दोस्तों, आज के मुद्दे पर और काफ़ी सारी मेल्स और आ गई हैं, तो आगे बढ़ते हैं, मेल शामिल करते हैं. कुलदीप मौर्या जी ने मेल भेजा है और इन्होंने बस इतना लिख के भेजा है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है. ये हमें लखीमपुर खीरी से मेल भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू सो मच. और दिलीप राजभाई का मेल आया है, रिंकी पिंकी हैं ये गांव जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर रायबरेली से, और इन्होंने प्यार भरा नमस्कार भेजा है. हम लोगों को प्रोग्राम की तारीफ की है, सुबह 6 बजे से सुन रही हैं, मुद्दे से नहीं जुड़ पाए हैं, काम में व्यस्त हैं. अच्छा, इन्होंने मेल लगभग 42 मिनट पहले भेजा था और इन्होंने कहा है कि सोमवार को हमारे घर आना, इन्होंने सबको इन्वाइट किया, इनके भाई का तिलकोत्सव है, तो बहुत सारी बेस्ट आपकी पूरी फैमिली को.
1: और जगमोहन मिश्रा जी का मेल आया है, उन्होंने मुद्दे पर, उन्हें एक पुराना वाक्या याद आया और लिखते हैं कि उन दिनों हम बिहार में पावर प्रोजेक्ट पर थे, गर्मी में मुझे लू लग गई थी, काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी, दवाई कम लेता हूँ इसलिए नेचुरोपैथी पर था. तभी हमारे मित्र एक सत्तू का पैकेट लाए और खुद ही उन्होंने उसको बनाया और उसमें उन्होंने पीने में थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन पहली बार जीवन में पी रहा था तो मुझे उनको पिलाया गया ज़बरदस्ती और सच में वो फिर स्वस्थ हो गए. फिर धीरे धीरे उन्होंने उस सत्तू का ऐसा स्वाद लगा जो वो रेगुलर उसको पीने लगे, पता लगाया तो वो एक सत्तू बहुत ही छोटे उद्योग पर बनाया करते थे और जब ये लखनऊ आए तो फिर उन्होंने सत्तू का ये जो कॉन्टैक्ट उन्होंने किया और अचानक से पता चला, फिर उसके रेट भी धीरे धीरे बढ़ते चले गए. यानी कि एक छोटा सा उनको एक स्वाद, एक कहते हैं ना कि एक जो प्योरिटी होती है, छोटे से उद्योग की जो प्योरिटी होती है वो आपको टेस्ट करने को मिली और उसके बाद धीरे धीरे ये जब उद्योग बड़ा होता गया तो उसके फिर रेट भी बढ़ते गए. तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि इसी तरह के छोटे उद्योग हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आज उन्होंने यही बताया कि आज वो मुजफ्फरपुर बिहार का एक फेमस ब्रांड है.
0: क्या
1: तो
0: बात है?
1: यही है ना कि ये सफलता की कहानी उन्होंने हम
0: उन्होंने कहा कि वो ऐसा फ्लेवर उन्हें आज तक नहीं मिला. ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है. और हम भी तरुश्री जब लेते हैं, हम अचार पापड़ की ही बात कर लें, जब अगर जो बिजी लोग होते हैं आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, उन्हें खुद बनाने का टाइम नहीं मिलता तो वो ऐसे छोटे लघु उद्योगों पर ही निर्भर रहते हैं. बहुत सारी गृहणियां, बहुत सारी महिलाएं जब अपने घरों से ये काम शुरू करती हैं तो न सिर्फ उन्हें वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं बल्कि ऐसे बहुत सारे लोगों की जरूरतें भी पूरी होती हैं जिनके पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं होता.
1: और सच बताऊं, ये जो पैक्ड फूड आते हैं या फिर जैसा अगर आप कंपैरेटिवली आप देखें जो घरों से महिलाएं उद्योग करती हैं इस तरह के, मैं पापड़ मंगाती हूँ और वो सिंधी पापड़ है लेकिन वो इतने टेस्टी, मैंने आज तक किसी ब्रांडेड पापड़ में वो टेस्ट नहीं मुझे मिला जो उनके हाथों का स्वाद है. वो अभी भी ऐसा
0: है, देखो घर और फैक्ट्री में अंतर होता है ना,
1: बिल्कुल,
0: हैंडमेड और मशीन मेड में भी अंतर होता है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो ये जो प्योरिटी है, ये जो टेस्ट है, ये आपको ये लघु उद्योगों में ही मिलेगा.
0: बिल्कुल. और ऐसे ही कुछ बात लिखी है कृष्ण कुमार जी ने, गोमती नगर लखनऊ से इन्होंने मेल किया है. इन्होंने कहा कि आप दोनों ने सुबह को असीम बना दिया, थैंक यू सो मच.

0: एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए उनके उत्पाद को उपयोग में लाना चाहिए, परंतु उनको गुणवत्ता एवं व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। व्यापार में व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, हम अगर किसी लघु उद्योग को प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उनसे उम्मीद भी यही करते हैं कि वो हमेशा वो क्वालिटी मेंटेन करके रखेंगे और जो व्यवहार है वो भी हमेशा उनका अच्छा ही रहेगा लोगों के साथ। नेक्स्ट मेल किसका है?
1: प्रवीण जी मेल कर रहे हैं, लिखते हैं कि हमारा जब जन्म होता है तो हम बच्चे होते हैं, वैसे ही एमएसएमई होती है, छोटी शुरुआत भले ही होती है लेकिन आगे चलकर वो एक बड़ी कामयाबी दिलाती है। जैसे इन्होंने एक बताया कि कोई भी एक एजुकेशन अगर हम क्लासेस की शुरुआत करते हैं तो एक छोटे से कमरे में होती है, लेकिन कल को वो एक बड़ा संस्थान बन जाती है और आगे चल के उसकी फ्रेंचाइजी और भी जगह पर फैलती है और हम इसी तरह से छोटे छोटे कदम उठाकर ही बड़े सपनों को पूरा कर पाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, रजनीश पासवान जी ने कहा मुद्दे के बारे में जानकारी नहीं। भाई थोड़ा ध्यान से सुना करिए, आधे घंटे पहले आपने मेल किया है तो हम लोग तब से मुद्दे पर बात कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आपने लिखा है कि उम्मीद है आपसे ही ऐसे ही हमें इन्फोटेनमेंट का बूस्टर डोज उपलब्ध करवाती रहेंगी। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने हमें मेल किया है सीतापुर रामपुर से, थैंक यू
1: जी। अगला मेल आया है मुनेश कुमार राज जी का, मुद्दे पर ये कहना है, चाहते हैं कि आज का मुद्दा हम सुन नहीं पाए।
0: नेटवर्क
1: की दिक्कत की वजह से शायद थोड़ा रेडियो ऑन करके आपके विचार जानने का मन था, अगर हो सके तो फिर से मुद्दा दोहरा दीजिए। देखिए हम तो लगातार मुद्दा दोहरा रहे हैं, अब आप फिर से मेल भेज दीजिए तो हम आपका मेल शामिल कर लेंगे।
0: और तेज बहादुर यादव जी ने लिखा है कि जब ये मुद्दा उठाया आप दोनों ने तो अब बता दूं अपने बारे में ही कि मेरी यहाँ गुरुग्राम में हरियाणा में एक छोटा सा टी स्टॉल है और भी बहुत सारी चीज़ें रखता हूँ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पेटीज, और ये शुरुआत 2020 में की थी। आज मेरे बहुत से रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं जो हमारे ही पास आते हैं, हमारी चाय की तो बहुत तारीफ़ करते हैं। बस ऐसे ही चल रही है ज़िंदगी, ऐसे ही चलती नहीं रहेगी, बहुत आगे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, ये हमारी शुभकामना है। बस ऐसे ही मेहनत आप करते रहिए, कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा, यही हम सबसे कहेंगे। थैंक यू सो मच।
1: अगला मेल मनीष गुप्ता जी का है और लिखते हैं कि मुद्दे पर ये कहते हैं कि हम छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं और हमारी प्लानिंग ठीक होती है तो हमारी लगन लगी रहती है तो उस काम में हम ज़रूर सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि मैंने भी बिज़नेस अपना स्टार्ट किया था 2010 में, बहुत छोटे स्तर पर किया था, जिन चीज़ों पर मुझे इंटरेस्ट था मैंने उसी पर काम किया और आज वो काफ़ी बड़े स्तर पर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मेल के लिए और हम कामना करते हैं कि इसी तरह से आप सफलता पाते रहें।
0: बिल्कुल, और एक बढ़िया सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो मौसम की अपडेट भी आप तक पहुंचानी और भी कुछ खास है हमारे पास आपके लिए, तो सुनते रहिए FM Rainbow।

0: हाँ जी, उड़े दिल बेफिक्रे उड़ते ही रहेंगे, हम लोग वैसे भी उड़ते ही रहते हैं दिन भर. और सच बताएं तो मौसम का हाल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमने न्यूज़ में पढ़ा था कि कुछ आसार लग रहे हैं कि मानसून आने वाला है. लेकिन इसके लिए विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद दानिश जी, वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक. गुड मॉर्निंग सर.
1: जी गुड मॉर्निंग
0: सर. तो बताइए ज़रा आज का क्या मौसम का हिसाब रहने वाला है?
1: जी मौसम की बात करें तो आज ऐसा कि थोड़ा गर्म गर्मी का सबब रहेगा, दिन में अच्छी धूप खिली रहेगी.
0: जी
1: तो आज और कल दो दिन थोड़ा तपिश वाली दिन रहेंगे. उसके बाद जैसे कल शाम से थोड़ा सा जैसे कि मानसूनल फ्लो धीरे धीरे बढ़ेगा. कुल मिला के कहे तो परसों से थोड़ा मौसम में तापमान में धीरे धीरे गिरावट आएगी बादलों की आवाज़ के साथ, और उसके बाद बारिश का सिलसिला बना रहेगा. तो कुल मिला के परसों से मौसम में तब्दीली आएगी
0: जी.
1: और अगले 4-5 दिन तक इस तरीके से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.
0: तो सर ये इस बार का आपका क्या अनुमान है सर, कैसा रहने वाला है मॉनसून?
1: देखिए अगर हम ओवरऑल मानसून की बात करें तो जैसा कि इल नीनो प्रशांत महासागर में सक्रिय है, तो कहीं ना कहीं इस बार मानसून अपने सामान से कम रहेगा. तो जिस वजह से अभी थोड़ी देरी से भी आया है, और कुल मिला के कहे तो इस बार थोड़ा हमको बचाव रखने की आवश्यकता है.
0: जी
1: क्योंकि तो मानसून थोड़ा सामान से कम आएगा, लेकिन बीच बीच में वर्षा होती रहेगी.
0: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई.
1: ओके धन्यवाद.
0: तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ है वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी, और इन्होंने जैसा कि बताया कि आज थोड़ी सी तपिश तो बनी रहेगी, कल तक बनी रहेगी, और कल शाम से कुछ मौसम के आसार अच्छे होने वाले हैं, उम्मीद तो यही कर रहे हैं. लेकिन फिलहाल आज का, अगर आज की बात करें तो आज तो गर्मी ही गर्मी है.
2: कोई बात नहीं, हम लोग दिल का मौसम अच्छा रखने की कवायद में जुटे रहेंगे, और आई एम श्योर दिल का मौसम बहुत बढ़िया होगा. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक बढ़िया से गाने के साथ.
3: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी.
4: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा.
5: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा.
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी.
3: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी.
4: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा.
7: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो.

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: जी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ का ये आखिरी कट होगा क्योंकि 9:52 हो गए हैं दोस्तों। और आपकी ईमेल्स जरा शामिल करना जरूरी है, मतलब पूरा जरा नहीं, सारे के सारे, है ना?
5: बिल्कुल।
4: और अभी तक तो हम पढ़ चुके थे मेल मनीष गुप्ता जी तक, और उसके बाद वकील अहमद जी का मेल आया। उन्होंने शायद कुछ सुनने में गलती कर दी या पिछला कोई मेल भेज दिया है, क्योंकि आज का मुद्दा आपने बचपन पर जो कुछ भी लिखकर भेजा है वो नहीं है। आज हम MSME पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट मेल किसका?
5: राम मोहन गुप्ता जी का, और इन्होंने लाइंस बड़ी प्यारी लिख के भेजी हैं। लिखते हैं, लक्ष्य हो कैसा भी, छोटा या फिर बड़ा, निरंतर प्रयास और जुड़ाव फलते सदा। छोटे छोटे लक्ष्य ही बड़े लक्ष्य पथ बढ़ते भेज सकते हैं जिन्हें अथक साथ चल के। छोटे मध्यम बड़े लक्ष्य को देखें सपने, पहुंचाते मंजिल तक भेद लक्ष्य को अपने। सोच सकारात्मक और आत्मविश्वास बल, हर स्वप्न होते साकार, आज नहीं तो कल।
4: बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सा आपका मेल, हमेशा की तरह कविता काव्यात्मक रूप में आपने भेजे अपने विचार, थैंक यू सो मच। सिमरन स्वरांजलि का तो नाम ही काव्यात्मक है।
5: हाँ, सच में।
4: और इन्होंने हमें गुड मॉर्निंग भेजा है। हम लोग बिल्कुल अच्छे हैं सिमरन, आई होप आप भी अच्छी होंगी। लिखती हैं कि अचानक हम कोई बड़ा मकाम हासिल नहीं कर सकते, शुरुआत हमें जीरो से ही करनी होती है और हम धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंच पाते हैं। इसलिए बस सोचिए मत, कुछ बड़ा करना है तो कहीं से छोटी सी शुरुआत करनी चाहिए, बड़ा मकाम अपने आप मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव सी बात आपकी तरफ से, थैंक यू सो मच। मुनेश कुमार जी का मेल तो आई थिंक आप शामिल कर चुके हैं।
5: हाँ, नहीं, अभी इन्होंने मुद्दे पर लिखी है इस बार। अच्छा। बात, और लिखते हैं, छोटी थी दुकान, छोटी से अब बड़ी हो गई, इससे बड़ी करके चक्कर में हमारी खटिया घड़ी हो गई। लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा कि लालच में इंसान कभी कभी इतना आगे निकल जाता है कि वो फिर संभाल नहीं पाता। संतोष सबसे बड़ा धन है, लेकिन आज की बात तो ये यहाँ पर नहीं लागू होती ना। हम तो बात कर रहे हैं सपोर्ट की और MSME जो उद्योग है उनको सपोर्ट करने की, तो उस पर हमें बात करनी थी।
4: बिल्कुल, और जब दुकान बड़ी करते हैं तो खटिया खड़ी होती है क्योंकि मेहनत बढ़ जाती है।
5: मेहनत बढ़ जाती है, बिल्कुल।
4: कई बार कई रातों की नींद त्याग करके आपको लगातार लगे रहना पड़ता है और तभी आप एक ऊंचा मकाम हासिल करते हैं।
5: बिल्कुल,
4: बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के।

0: भी हासिल नहीं होता। दुर्गा कृष्णा जी ने भी हमें मेल किया है, हम दोनों को प्यार भरा राधे कृष्ण भेजा है। आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर बड़ी सफलता की पहली सीढ़ी एक छोटी शुरुआत होती है और वंदे मातरम के अमूल्य रचयिता स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जयंती पर उन्होंने नमन भी भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं एडीओ अवध नरेश जी की पुण्यतिथि पर भी इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है और इन्होंने एक कपल है उनको शुभकामनाएं दी है एनिवर्सरी की, डॉक्टर कल्पना सिंह जी और अपर्ण सिंह जी, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया दुर्गा जी, आपका मेल हमें मिला और नेक्स्ट मेल किसका है?
1: नेक्स्ट मेल ब्रजेश सिंह जी ने हमें भेजा है कैसरगंज बहराइच से। मुद्दे पर कहते हैं कि हमारे एक दोस्त को फास्ट फूड का काम आता था और उसके पास पैसे नहीं थे अपना बिजनेस करने का, फिर हमने उनकी हेल्प की और हाँ बैटरी ऑटो से अपना स्टील का ठेला बनवा लिया और खरीद उनको लगभग कुछ ऐसा ही कुछ रकम आई, लेकिन जब भी हमको मिलते हैं या जाते हैं तो वो बहुत ही हमें मानते हैं और बहुत खुशी से अपनी बातें शेयर करते हैं कि सफलता तो इसका श्रेय आपको मिलता है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे ही हमें अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और तरुषी बहुत सारी चीज़ें अब ऑनलाइन है, सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आजकल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने छोटे छोटे पेजेस बना रहे हैं, उस पर वो रील्स और वीडियोज़ डाल रहे हैं, एड रन कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। जब हम ऑनलाइन चीज़ें करते हैं तो हमेशा किसी बड़े प्लेटफॉर्म या बड़े ब्रांड की तरफ नहीं, आप सर्च करिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए कि जो छोटे स्तर से जिन्होंने शुरुआत की है उनको भी ज़रूर सपोर्ट करिए। और आज के दिन की फिर से शुभकामनाएं, और इसी के साथ प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ को वाइंड अप करते हैं।
1: बिल्कुल, मैं तो आपसे टाटा बाय बोलती हूँ, लेकिन अगले प्रोग्राम में दैया दैया करने के लिए अंजु जी बिल्कुल रेडी
0: जी और हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट और भी होंगे, तो सुगंध माटी की में बस ऐसे ही रंग जमने वाला है।
1: हाँ तो बस बने रहिए हमारे साथ,
0: बैठे रहो यहीं पे, मत जाओ,
1: सुनते रहिए एफएम रेनबो,
0: देखो भागने की तैयारी में। चलिए मिलते हैं सुगंध माटी के प्रोग्राम में, तो आपके साथ लगातार एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी रहेगा एफएम रेनबो पर। स्टे ट्यून्ड।

नमस्कार, सुबह के 10 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनावों में देरी और प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने वाले आदेश पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव सम्पन्न हो जाने चाहिए। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज से अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल वशिष्ठ कुंड वार्ड में नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन करेंगी, साथ ही अवध विश्वविद्यालय के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गौतमबुद्ध नगर में 2479 करोड़ रुपए की लागत वाली 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, साथ ही यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के 4th संस्करण की कर्टन रेजर सेरेमनी में भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ODOP और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना समेत अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को टूल किट, सब्सिडी चेक और सहायता राशि का वितरण करेंगे। अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन BR अंबेडकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय भाटी को 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने बताया कि दिग्विजय भाटी के विरुद्ध कई मामलों में मुकदमे दर्ज हैं, जिनके आधार पर पुलिस ने जिलाधिकारी को संबंधित अधिनियम के तहत एक रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट पर विचार करने के बाद जिलाधिकारी ने ये आदेश जारी किया है। जौनपुर के प्रगतिशील किसान सूर्यभान यादव को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी डॉ. सीमा सिंह राणा ने बताया कि सूर्यभान यादव ने 1 हेक्टेयर भूमि में आम की 140 प्रजातियों का मॉडल बाग विकसित किया है। इस बाग से प्रतिवर्ष लगभग 200 क्विंटल आम का उत्पादन होता है, जिससे उन्हें करीब 4 लाख रुपए वार्षिक का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी 3, 4 और 5 जुलाई को लखनऊ में आयोजित होने वाले आम महोत्सव में श्री यादव को यह सम्मान दिया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो, जिस पर अगला प्रोग्राम है सुगंध माटी की।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है
4: भाई। अब मैच का क्या होगा,
3: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
5: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं,
6: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
5: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
6: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
7: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
8: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा, NACC द्वारा जनहित में जारी। 100.7
9: राम राम भैया, प्रणाम श्रोता पंचन का अंजू शुक्ला की ओर से। 10 बजकर हो गया है स्टूडियो की घड़ी में मिनट 4 और आज है शनिचर यानी शनिवार और हम लेके आए गए कार्यक्रम सुगंध माटी की। तो भैया गर्मी इस पड़ती है कि बहाता है कुल पसीना पसीना, तो ऐसी गर्मी में न भूलत जाया पानी पीना। और हमरे सबके साथ अब यह कार्यक्रम में आए गए हैं आकाशवाणी में आवाजों की दुनिया के नगीना, अब जिनके रहा थे आप सबके इंतजार वहाँ हमारे सबके प्यारी बड़की जिजी नीना। राम राम जिजी।
10: राम राम अंजू बहनी, कैसी हो ये पहले बताओ कि नेक हो इतनी गर्मी।

0: पड़ रहा है
1: अब जी जी कहा बताई स्टूडियो में बैठी है एसी कूलर सब चलता है तो नीचे हो गए आप बताओ बाहर का हाल
0: बच्ची
1: है?
0: तुम स्टूडियो में बैठी हो हम थोड़ी स्टूडियो से आयरन हम तो आयरन बाहर से घाम इतना की पूछा हो ना सूरज है वही लगा कि कपाले का बिल्कुल गर्माए दे हैं और रही जब कपाल गर्म हो जाए तो वजह की गुस्सा उस्सा आता है अंजू और हमारे हाथ पर रही सुरैया कहा से सुगंध माटी के है तो हम सुरैया और अपन जो माटी के गिलास है एक माटी कला मेला लगा रहा तो वहीं से लिया रहा है तो यही मैं पानी यानी भर के लाए हैं जो सवेरे सवेरे ड्यूटी पे आते हैं इन सब काम पिलाई बे
1: यही ले तो आपके कही तुम बड़की जिद्दी
0: हमका बहुत बताओ ये तुम कहा पहन के आई हो पॉलिएस्टर उलिएस्टर ना पहनने का चाहिए जाने हो बहुत घमा
1: अरे नहीं जी जी पॉलिएस्टर नहीं काटन आटे
0: ये काटन सूती हां तो नीचे पतलून पहनने हुई जींस स्विच ना चले
1: जी जी राय देती हूं अरे आज जब ना सब पोल खोल दे बू
0: अरे सुनो सुनो ढीला ढीला कपड़ा लत्ता पहना करो ढीला ढीला तो देखा किमा तो मौसम आ जाओ इस कुर्ता है और नीचे देखो घाघरा पहने
1: ए जी जी ढील ढील कपड़ा तो हम पहन रही लेकिन कबो कबो आज है शनिचर आज छुट्टी उट्टी रही हम कहे केहू हो ना तो चला यही पहन लिए चली चली लेकिन एक देखा गौनई ओनई तो बहुत बढ़िया इंतजाम करके आई यही ऐसी ऐसी गौनई सुनोबे कि जो ना है जो गर्मी है आपके थोड़ी शीतलता पाए
0: शीतलता पाए तो जल्दी से इसको गौनई बजाओ कि इंद्रदेव प्रसन्न हो जाए हमारी आवाज ब्रह्मांड तक जाए और झमाझम वर्षा होए बच्ची
1: कोशिश तो ये है देखो
0: चलो चलो सुनाओ

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: देखा भैया बहनी, धरती पर पहली बारिश के बूंद पड़े के इंतजार तो सबे करता है, और जब धरती पे बारिश के पहली बूंद पड़े थे जौन सोंधी सोंधी खुशबू वहां का आवा थे ना जी जी, बहुत निक लागत है।
3: अंजू जाने हम जो माटी के गिलास है और जो हम ये सब खरीद के लाए हैं, घड़ा घर में रखा है और ये जो सुराही हम ले के चले हैं ना, हमका ये सब बहुत निक लागत है। बचपना थे देखो जब गिलास से पानी पिया था तो की इतनी अच्छी सुगंध होती, इतनी अच्छी सुगंध होती की मन करा था सुगंध रहो सुगंध रहो, पानी से अच्छा तू की सुगंध लागती।
2: हाँ, स्वाद सुगंध और सेहत तीनों चीज।
3: सेहत और प्लास्टिक के देखो हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं, चाहे कितना अच्छा पानी हो कौनो ब्रांड के हो, हम ब्रांड वांड पे नहीं जाते हैं, बच्ची सेहत से बढ़के कोई ब्रांड वांड नहीं
2: होता। सही कहे हो जी जी, सही कहे हो। और जौनी तरह गर्मी पड़ती है भाई, हाल बेहाल है मने इनका, तो ये कहा भैया की पानी उनी पियत रह जा, नींबू पानी पिया, छाछ दही पिया, माठा पिया और जो है सिकंजी बनावा, आम पना बनावा, बेले शरबत बनावा।
3: अरे बच्ची और शरबत खसखस के शरबत, गुलाब की पंखुड़ी के शरबत, और अगर खाए पिए के बहुत इच्छा हो तो बनाए ले बड़ा फुरौरी, उप तैरत थी पतला पतली छाछ मा बेसन की जो पकौड़ी वो डूबत थी ना, जो फूल फूल के कुप्पा हो जाती है, कितनी नीक लगा थी। उम्मा मसालों सारे डाल के खाओ नीके तनीके, बिल्कुल मन मस्तिष्क चौन संतुलित हो जाते। छाछ मा बनायो बच्ची, बहुत गाढ़ी दही ना करे, अच्छा
2: तरह बात कर बोलू तो प्रोग्राम छोड़ के चली जावे।
3: अरे हम कहा बताए, अरे हम तुम्हारे लिए खाए के लिए लाए हन, पता है कहा है
2: जी जी।
3: वो घुइया का पत्ता होता है, वो के पतौड़ा बना था बहुत है नीक, सुबह सुबह सिलबट्टा पे पीसे उरद की दाल, रात में भिगोए दिया रहा और सुबह उठ के तड़की सवेरे 4 बजे से, तो हमरे मन से तो बोले का कर रही हम, कन अंजुआ आए कुछ लात वात है नहीं ना, कहा थी हम तो सुबह सुबह चले रहे ना, कुछ आयो तो लई के आयो, ऐसे खा लिया था ये तो स्टूडियो में नाम बैठे दे।
2: अरे नहीं जी जी, आपका प्रेम आटे हम जानित नहीं के का इतना मयात हो सबका। हां
3: रिक्वेस्ट भी बनाए के लाए हैं, रिक्वेस्ट जनती हम ना,
2: रिक्वेस्ट आजकल की बिटिहनी अरे नहीं जानती ना।
3: अरे ये तो हम सिलबट्टा पीस रहे हैं कि हमार बिटेवा देखा है कि महतारी कैसे पीस रही सिलबट्टा पे उरद की दाल।
2: हाँ जी जी, हम सिलबट्टा धरी, लेकिन आजकल तो जो ना इतना आलस, इतना आलस की सबसे ज्यादा कहा था कि टेम नहीं है, कौन निकालेगा, कौन धोएगा, कौन पीसेगा। अरे दैया टेम के बात छोड़ा, तू इतनी मेहनत और जो स्वाद आवत है सिलबट्टा चटनी में, वो जो ना मिक्सी में कहां है मिक्सी।
3: एक बात जान ले अंजू, ये सिलबट्टा जब तुम मतलब सिलपौनी करती हो ना शादी ब्याह में, तभी तुम जा रही हो शादी ब्याह में अभी, तो सिलपौनी होती ये सब यही वदे पुरानी परंपरा रखी जात रही कि जौने सर्वाइकल वर्वाइकल होत रहा ना, ये गर्दन वर्दन में हर फिराए रही वन फिराए रही ये सब बिल्कुल चला जाये, धीमे धीमे छोट छोट आदत डालो, थोड़ी थोड़ी चटनी पीसाओ, थोड़ी थोड़ी दाल पीसाओ।

0: कहीं बनाओ तो थोड़ा थोड़ा पीसो तो जिससे तुम्हारी आदत पड़ जाए, और जो हम लोग हट्टे कट्टे हुए गए ना
1: मशीन सारा काम तो मशीन से होते फटाफट है।
0: आई
1: तो
0: बच्ची गर्मी बहुत हो रही, मशीन का काम इस्तेमाल करो, जैसे ये जो कूलर है, ये जो एसी है, ये सब मशीने तो है, गर्मा थी धधक धधक के जो लावा निकाला थी गर्म। और सड़क पे आओ तो बच्ची चार व्हीलर चलत है जी के, देखो वही के पास से मार मनाई आए के जो रोड रेस लगा था ना कि पूछा ना सबसे आगे निकले की जो है हॉर्न वारन बजाए की और जो धुआं छोड़ा थी
1: तो खड़ा रहा है तब ऑन की एसी चलत रहा है।
0: हाँ तो सबका बहुत ठंडाए का है, बच्ची रोक रोक के चलाए हो, तरह तरह के किस्सा सुने जा रहे हैं है ना।
1: बहुत
0: तो बहुत उपकरण जो है सुविधा मतलब बताओ इस्तेमाल करो, लेकिन यूं नहीं कि के बगैर बिल्कुल लग मतलब
1: बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखो और तनी तनी देर पे उसका बंद करो, सब चेक करत रहो। हाँ हाँ और सुनत रहा सुगंध माटी की, देखा बढ़िया गौ नहीं आती है।

0: सुनील जी, बिना एसी कूलर फ्रिज मिक्सी का काम है नहीं चलता है।
1: बताओ बहनी, कोई बात हुई कि एसी कूलर फ्रिज और जितने मतलब उपकरण हैं जो सुविधाजनक हैं सब कुछ चलाए का है और इक्का केबल पे चलाए का, ये बताओ कोनो बात होती है? ले तो अगिया बगिया लागत ही शॉर्ट सर्किट होता है।
0: सही कहो जी,
1: देखो गर्मी पहले भी पड़त रही, गर्मी पड़ी और कहा जा रहा की अब की तो देखो अलनीनो और सुपर अलनीनो की हो क्या शंका है। वैसे तो मैंने देखो इंतजार कर रहा की 30 तारीख तक देखो मानसून आए जाए, लेकिन अंजू याद करो कि पहले देखो कि कितने 3-4-6 बार आई बरखा बूंदी और आंधी तूफान आ रहा है कि 4-6 दिन मई जून के महीना ऐसा बीतत रहा है कि मनाई का खूब अच्छा लगत रहा है। लेकिन अब की मनाई तरस गया, सुबह सोए के उठे तड़के से सवेरे जब उठा था तो सूर्य देव मार अपन किरण जौन है फैलाए के उग्र रूप धारण कर

0: के धरती का आइस चीना था आइस चीना था एक एक मनाई का कि का करे हो हाल ही धरती के यही वजह आजकल नाराज है वो ये समय बादल के बीच में लुका छिपी नहीं खेल रहे वो कह रहे जरा अपन पहले झाऊं से जाओ झाऊं से जाओ धूप में ठीकते
1: घूर घूर के देखा था उनका सबका सवेरन से है और देखा देखा 27 तारीख हो गए जून के जी जून का महीना पूरा बीते वाला है बीत गवा जून नहीं नजर आवा मानसून
0: हाँ मानसून कैसे नजर आई बच्ची जब हम लोग सब मिलके प्रकृति के हिसाब से ना चलब तो मानसून ऐसे ही हमसे आग मिचौली खेली और जब प्रकृति के ऊपर मनई निर्भर रहा थे तो फिर कहा ऐसा पाजी पना कर रहे थे बच्ची
1: सही बात यार लेकिन अब जब समझावा तो कहा थे मनई की जो है गर्मी है हाल बेहाल है कैसे बिना एसी कूलर के काम नहीं चलते
0: और एक बात
1: कूलर तो तब ठीक है एसी खतरनाक है
0: एसी खतरनाक मनई एकदम जैसे लगा था कि अपन शरीर के पीछे एसी लगाए क्योंकि बस नहीं चलता है नहीं तो लगा है कि बिल्कुल चले बताओ ऐसे कौन होता है हम लोग तो देखो पेड़ की छाव में भी रह के खूब मजा मारेन है ना सिकड़ी खेलन खूब चौखंटा खेलन और
1: मौका मिल जाते तब हम सब जो है मौका नहीं छोड़
0: अच्छा तुम चलो चल के तुम लंगड़ी टांग खेलते
1: और अरे बहुत मजबूत है जी अच्छा ये बतावा ये जो ये सब खेल चक्री पीसा ये करा उस पे मतलब शरीर मजबूत रहत रहा है हमका जो ना है मिली हमारी एठी चाची है बहन
0: अच्छा
1: दो दिन पहले हाँ जानी की जो ना है आपकी हम बताए रहे बुध का आए रहे तो हम कहे रहे भाई हम सनिच्चर का उबे सुगंध माटी की में तो हमसे पूछी कि आपकी क्या आवत है तोरे साथे तो हम बताए हमारी जिज्जी आवत यहाँ तो जानती है तोरे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न भेज दी
0: कहा
1: अरे उनके दूठी पतोहिया आई है अब छुटके बेटवक बियाहवा करी है हाले में और जो उन्हें बड़की पतोहिया तो रही गांव देहात के लेकिन बड़ी सुघड़ है और जा तो मेहमान नवाजी करते बढ़िया बढ़िया बनाए खवावत है और छोटकी पतोहिया जो उन्हें आएगा कारपोरेट वाली मतलब नौकरी चाकरी वाली है अब जो उन्हें बड़ी बेपदम पड़िया बड़ा सुंदर मकान सकान सब बनाए हैं पंडित जी और जो उन्हें चाची कही कि जब हमसे पूछी कि अब तो पहले तो बहुत बढ़िया घर चल रहा है केटी पतोह रही बहुत ध्यान देत रही छुटकई आई तो दोनों जनी में प्रसन्नताप हो लांग और कहा थी कि जो उन्हें वो छुटकई कहा थे कि हम काम नहीं करेंगे मैं तो कमाती हूँ और जो है मैं नौकरी करूँ ऑफिस का काम करूँ कि घर का काम करूँ मेरे पास इतना वक्त नहीं है तो मैं काम वाम तो नहीं करूँगी अब बड़की जनी जो करत रही और कहा थी कि ले भैया जब छुटकी नहीं करती है तो हम तो ही जेठान तो हमू ना करवे अब बेचारी चाची मोड़ पकड़ के बैठी यहाँ कहीं की बतावा जिस पूछू कौन उपाय हो तो बताओ मैं का करी
0: अरे अंजू बहनी देखो उपाय का है घर परिवार ऐसे थोड़ी चलत है कि हम ही हन हम ऊ हन घर परिवार तो एक दूसरे के स्नेह से नेह नाता से चलत है अब देखो हम लोग भी हन तो का हम लोग उनके घर परिवार में सब जो मेहरिया है तो का नौकरी पैसा है का लेकिन जब हम लोग कमनो जगह जात है ना तो ऐसा नहीं कि दिखातन कि हम फलनवा जगह काम करत है हमका सब है जो उन्हें लाइक करत है शेयर करत है और फेसबुक पर हमका जो उन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखत है तब हम जाए के बिल्कुल एक साधारण मेहरिया की तना सबके बीच में बैठा थन कौनो दरी बिछाए के बैठा है जमीन पे तो वहीं बैठ जा थन कौनो खटिया पे बैठा है तो वहीं बैठ जा थन और जौन माए मैं है ना ये सब कुछ नहीं ना तो जौन मेहरिया ये नौकरी वोकरी कर रहे वो ये जान ले कि घर परिवार प्रेम मोहब्बत से चलत है नौकरी के चोला गेट के बाहर गेट के अंदर उतार के तब गेट के बाहर आओ तब घर परिवार चलत है नीके तनीके और नहीं तो फिर जौन टंटा होत है जो युद्ध होत है महाभारत होती तो उका जौन है हंसी के हसारत एक शब्द है वही होत है
1: बिल्कुल सही कहे हो जो घरे में सब
0: जो ये प्रोग्राम सुन रही हूँ ध्यान पूर्वक सुन ले मेहरिया नौकरी आप लोग करती हो यही वजह कि आज के समय में बिटेवन का बढ़ाए के लिए सरकार तरह तरह की योजना कर रही तरह तरह के काम कर रही कि कोनो तरीके लड़का लड़की में भेद न कीन जाए छोट परिवार हो एक मतलब कहा जाए कि बराबरी के हिस्सा बराबरी के दर्जा लेकिन कोई मतलब नहीं ना कि हम मनई जौन हम मेहरिया हैं भारत की वो अपन कर्तव्य भूल जाए सही कहा कि नहीं
1: बिल्कुल,
0: कहा
1: बिल्कुल सही कहा
0: सब आना की एक बात कि सबका प्रेम मोहब्बत से रहकर चाहिए और जो नौकरी करती है उनका भी जब आ जाए तो वो घर के काम में हाथ बटाए और जो पहले से आई है बहुरिया जौन तुम्हारी रिश्तेदार की पतुया जो हाँ पहले से आई हाँ है हाँ जो सेवा भाव से सबकी सेवा कर तो उका भी प्रेम से कब कोनो गिफ्ट लाए दे उपहार लाए दे है ना कोई पैर और गोड़ नहीं मलवात है लेकिन कभी कभी गोड़ के ऊपर हाथ रख ले हाल चाल पूछ लो जज्जी पूरा दिन तो लगी रहे और कैसी हो तो देखो ये प्रेम से मनाई के दिल जीता जाते
1: बिल्कुल आपसी तालमेल बहुत जरूरी
0: यही ने कहा जाता है कि जो मन से तू है उसके दिल कैसे जीता जाते खिलाए खिलाए के बहरिया लोग जीतती है खिलाए खिलाए के ऐसा की बिल्कुल तोंद वो निकलवा देती है कंगन वंगन लूट लेती है
1: मतलब दिल का रास्ता जब ना पेट से निकल के जाते पहुंचते हैं हाँ,
0: तो ये घर की गाड़ी है और जिनके घर परिवार है सब प्रेम पूर्वक रहो यही हमारी मंगल कामना।

0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत
1: मिल गवा उत्तर।
0: हाँ भैया इतना सुंदर उत्तर, अब ना समझ पाई है तो कब होना समझ पाई है, कब जाने रहा।
1: और हम तुमका बताए कि अंजू बहनी हमरे तो घर परिवार में बहुत कम लोग जाना था जहाँ हम जाते कि हम नौकरी करते हैं, हमरे आचार विचार व्यवहार ऐसा है कि हम जहाँ जाते हैं वही रल मिल जाते हैं।
0: बिल्कुल ऐसा हो इनके चाहिए।
1: बिल्कुल
0: चला बहुत सुंदर के एक ठीक कलसा गुठाई गीत सुनाओ थे, एक बात हो कलसा गुठाई हो तो का
1: अच्छा
0: सुना सुना।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जी देखा कितनी सुंदर गाँव नहीं रही ना, कलसा गुठाई कितनी सुंदर रस्म। और भैया भौजाई के पूरे परिवार का आशीर्वाद देती हैं, बहिनी अरे बुआ हरे सब करती हैं। बिना परिवार के बिना सबके कैसे मजा आए भाई, कैसे हो ये सब?
3: अंजू बहनी हम आपको बताई कि देखो ये कहा जाता है ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पावत है। वैसे घर परिवार की गाड़ी होती तब निके तनिके चलती, जब घर परिवार एक साथ मिलजुल के रहत है। और ये जो टेबल जिनके ब्याह हो जाते हैं ना, कभा कभा होती है तो उनके आदर सत्कार करे का चाहिए और दिल से करे का चाहिए। ये ना ही कि कब जाइए कब जाइए, मन में बहुत महसूस के उनके आदर कर रही हो, पिलाए खिलाए रही हो, लेकिन अगर आदर ना करियो तुम्हो कोई की बिटेवा हो कोई की बहिया हो और जाइयो तो तुम्हारी भौजाई ऐसे करे तो का लगी, कोई के दिल पे का गुजरी है बताओ।
2: और
3: ये बात देखा है कभो कभो ऐसा भी होता है कि अम्मा जो घर की बड़ी बुजुर्ग होती हैं, जो महतारी होती है, उनके भी बड़ी भूमिका होती, अपन बिटेवा के आके तो इंतजार कर रही थी लेकिन यहूं नहीं सोचा थी कि बहुरिया जो है वो कभी कुछ दिन के लिए उके पीहर भेज दे। बात है कि नहीं ना?
2: बिल्कुल सही कहो, तो कहूं के बिटिया ही भाई।
3: ताली देखो दोनों हाथ से ताली बजा थी, एक हाथ से ताली नहीं बजाती। देखो इस सब
2: यूं कहती जो ना दोनों तरफ है भाई, ये कहती हम सब एक कार्यक्रम करते सुगंध माटी की, हम ही अंजू शुक्ला हमारे साथ यहाँ नीना सोनकर जी है 100.7 FM रेनबो पर, और वह कहती हमारे श्रोता पंचे जो भर भर के प्यार
3: लुटावत है सुगंध माटी में। नीना जी का और अंजू दीदी का बहुत बड़ा प्यार नमस्कार ग्राम पोस्ट ललुआ लखीमपुर खीरी से विजयपाल यादव उनकी मेहरिया, लेकिन बहुत नीक लाग रहा आज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और जल्दी में लेकिन जल्दी लेकिन ईमेल और कौन गलती हो जाए तो हमका माफ करो। कुलदीप गुप्ता जी का भी पढ़ दे कार्यक्रम के आगाज बहुत सुंदर भा प्लास्टिक से दूरी बनाए के लिए सुंदर जानकारी मिली, हम बाहर निकलते हैं साथ ही मिट्टी के बर्तन में पानी भर के साथ ले जा सकते हैं, बारिश के आगमन से जुड़ा हुआ लोकगीत सुन के गाँव नहीं मन बहुत अति प्रसन्न हुई गा और आज हम टाइम निकलिए आपका मैसेज भेज दे। उधौली कहाँ? उधौली बाराबंकी उत्तर प्रदेश से कुलदीप गुप्ता भैया जो आए रहे
2: धन्यवाद भैया
3: स्थापना दिवस में। नियमित श्रोता है, यन से हटिए तो वन मेल करी है, वन से हटिए तो पीसी पे मेल करी है।
2: विविध भारती FM रेनबो सब जगह यही सब है।
3: शैलेश कुमार है, लेकिन गर्मी बहुत है जिज्जी, हमारी माँ जी चली गई अपनी बहन के वन ब्याह माँ, आज हमारे पिताजी भी कहीं न पापा की आज खाना आप बना लो तो हमका गर्मी लाग रहे, पापा हमारे कटहल की सब्जी रोटी चावल बनाई नीना जिज्जी अंजू जिज्जी आपो खाए ले हो। और गर्मी बहुत लग रही है, आइस लग रहा, नीना जिज्जी स्विमिंग पूल में पड़ा रही, बस बताओ भैया कि गर्मी उतारे के कौनो कारण है, मतलब एसी के लिए रोकागा कूलर के लिए रोकागा
2: पूल
3: में। अब देखो यही के साथ एक छोटी सी जानकारी, जो घर परिवार में जैसे मनाई सब बिजी हो जाती है मेरिया वेरिया घर के मनाई वनाई, तो क्या करते हैं छोटे छोटे लड़का बच्चा अपनी टोली टीम बनाए के जाते हैं नगीचे जहाँ तालाब होए पोखर होए वहां अपन गर्मी मिटाए के लिए चले जाते हो। देखो कभी कभी खुशी के समय जो है मातम माँ बदल जाते हैं, वन जाए के पता चला कि कोई मिल नहीं रहा, चप्पल किनारे पड़ी है, फिर ढूंढाइए शुरू होती, पता चला तुम नदियों में बही गए। तो ये सब भी देखा हो जाए रहे हो अगर शादी ब्याह मत इके विशेष ध्यान रखा हो, लड़का बच्चन का अपनी आंखें तले रखे हो।
2: बिल्कुल। और देखा मनु भैया कहा था जी राम राम करे और नानी की तरफ से भी प्रणाम, माटी सुगंध और दादी नानी का रिश्ता भारतीय संस्कृति में बचपन संस्कार प्रेम का सबसे खूबसूरत प्रतीक है, दादी नानी के हाथों की बनी सौंधी रोटी मिट्टी घड़े का ठंडा पानी माटी के चूल्हे पर पके खाने में जो प्रेम और सुगंध होती है वो आधुनिक मशीनों या होटलों में नहीं, और प्रोग्राम इतना सबका भावत है कि कुछ श्रोता अलार्म लगा बैठा कि कहूं भुलाए ना जाए, अलार्म याद दिलाए देते कि गाँव में इस समय खेती बाड़ी काम चालू हुआ है तो बारिश हो जाए खेती लागत शुरू हो जाए। सही
3: लेकिन देखो ये वकील अहमद जी हैं लिखे गुड मॉर्निंग सुगंध माटी कार्यक्रम बहुत नीक लग रहा, अच्छा चल रहा, गौ नहीं अच्छी बज रही इस समय सुबह से लगत है जैसे दोपहर हुई गई, धूप बहुत तेज ही इस समय का गर्मी बहुत हुई रही, मतलब हमारे मन गर्मी बहुत हुई रही। वकील अहमद मसूरी कटरा हथूरी जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी साजिया अंसारी शमा परवीन पिंकी रिंकी महक अंसारी गुलफशा सिद्दीकी अहमद नवाब, अरे भैया रिंकी पिंकी बहनी नमस्कार।

0: नमस्कार, कहे से कि बड़ा गुस्साए जाती हो कि हमरे पसंद के गीत बजाए दो। मोइनुद्दीन अंसारी भी है, गुड मॉर्निंग लिखी ने, मैम हाउ आर यू, और आई एम उमरा अंसारी, और हजवा अंसारी श्रीनगर लखीमपुर खीरी से मेल कर रहे हैं। नीक लागत है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक कुमार भैया लिखे हैं, अशोक राज राम राम प्रतार रायपुर ओदारा मितौली लखीमपुर खीरी से, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, बलिस्टर चाचा अजय राज प्रदीप राज आशीष राज अंजू राज सब सुनता है इनके साथ है।
0: और ये देखो पिंकी बारी है, ये लेकिन राम राम और नदिया जंगल खेत खलिहान ये सब धरती की पहचान, प्रकृति के रखिया ध्यान तब खुशहाल रही संसार, आम तरबूज खरबूजा खावा दहिया के ठंडक पहुंचावा, दही छाछ और नींबू पानी ये सब हाउन अमृत समान, ये सब हवा अमृत समान बच्ची, ये लेकिन है बासी तलत चीज ना खावा, ताजा भोजन रोज अपनावा, हर घड़ी पानी पीत रहिया, अपन सेहत के ध्यान रखे भैया। बिल्कुल सही सही निके निके लिखे हो,
1: बहुत सुंदर। नीचे वीडियो
0: भेजी ना जाने का, वीडियो में रसगुल्ला तोड़ तोड़ दिखा रहे
1: रसगुल्ला कुल्फी लस्सी बनती
0: है। आशा पांडे जी है लेकिन बहुत नीक कार्यक्रम लग रहा और गाना बहुत अच्छा चल रहा है, स्पेशली कैसा कलसा मतलब गुठाई गुठाई ये सब बहुत देखो पुरानी पुरानी परंपरा ही, जब हम अपने पंचन का जोड़ा था ना ये सब याद दिला था तो उनका भी देखो अपन चीजें जो उन्हें स्मृति में जो आए उनकी याद आए लगत थी, ऐसा लगत है कि जैसे कल की बात हो कि हमरे वन भी ऐसे होत रहा हमरे वन भी ऐसे होत
1: रहा है ना, तो
0: यही प्रेम मोहब्बत से घर की गाड़ी चले वधे ये सुगंध माटी के कार्यक्रम होते। और अंजू बहनी हम आपका बताई कि जब बचपन थे हम दिवाली वाली के मेला में जाते रहे तो वो जो चकिया चूल्हा रहा माटी के हम तो लगत रहा कि मां पकवान बन रहा। फिर थोड़े बड़े बहन तो जो बड़ी बड़ी हमारे घर में बहनिया लोग रही तो बहनी लोग का करते रहे गुड्डा गुड़िया के ब्याह करत रहे और बड़े से परात माँ खूब नुकती बुंदिया खूब बनत रही खस्ता कचौड़ी है और भुंजिया उंजिया खूब बनात रही गलका वलका खूब नीके तनीके, तो लगत रहा कि आज गुड्डा गुड़िया के ब्याह है। बाद में समझ में आवा कि परंपरा इसलिए रखी जाती कि बिटेवा लोग भंसी रूप से हुई जाए तैयार, यही सब होत है,
1: यही सब होत सहुर सिखाए दीन जाए। हाँ। देखा जब उन गवनोई सिखाओ तही सुनाओ तही ना यूं कुछ यही तरह कहा गया है, नैहरे से सहुर सीख के आओ।
0: हाँ। का बात ही
1: चला सुना सुना

0: भैया सुगंध माटी के कार्यक्रम चलता है और देखा कितनी सुंदर बात कही दे है, नैहरे से सुखा सीख के आवा सहूर चिरई। चाहे जितना कमा धमा, चाहे जितने बड़ी डिग्री हासिल कर लिया, लेकिन अगर रोटी नहीं बनावे आवा तो भैया सब मेहनत बेकार, सारी डिग्री बेकार
1: सब। बिल्कुल अंजू बहनी जाने, यही हम गुड्डा गुड़िया की जो बात करे है, जो कचौड़ी उचौड़ी बनाई जात रही वो सब हम लोग मिल के हमारी बहनी लोग बना तो रही, हम देखत रहे कि खूब बनाइन चुनाइन, तो इसे आदत पड़त रही कि रोटी उटी अब मतलब बेलना मनाई का आ जाए बिटेवन का, मतलब अपन जाए ससुरे तो अपन नाम न धराए, है ना।
0: कब लेकिन अब तो जिजी बेटवन का भी बहुत जरूरी हो गया,
1: बेटवन के भी जरूरी होगा, लेकिन ये बात जान लो कि बेटेवा जौन है वो घर परिवार वही संभलती है, काहे की बात है लड़का लड़की के बराबरी के सबकी बात होती, सबका सब कुछ आय का चाहिए, घर में अगर कोई बुजुर्ग भी है उनका भी आय का चाहिए कि वक्त जरूरत मतलब ऐसा भी कभी कभी होता है कि अकेले पड़ गए, बाहर के खाए से तो अच्छा है कि खिचड़ी तहरी कुछ बनाए के खाए लेन, नहीं तो मोट मोट रोटी चटनी बनाए लेन, गोद लीन उम्मत से दो चम्मच डाल दी देसी घी, कितना अच्छा निक लगा
0: है ना। नहीं तो जो ना मोबाइल उठावा थे खट से टिक टिक टिक टिक ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, बाहर का खाना पीना ऊपर से मौसम में गर्मी में तो बिल्कुल नहीं कि जो ना बासी तेबासी कैसे आवा है, कैसे बनावा जाता है, अपनी सेहत का स्वास्थ्य का ध्यान रखे, कुल इन्फेक्शन फैला है। हाँ तो यही लिए घर ताजा ताजा जे अब मम्मी और दीदी अगर मान चली गई तो जो ना जो बैठा है साहब ज्यादा कुछ नहीं बना पाते, ऐसा नहीं हो एक चाहिए उनको चाहिए।
1: और ये देखो सब लिख रहे हैं सब मेल की सुगंध माटी की बहुत सराहनीय लागत है, हम सबका भावत है, सब जने बड़ी ध्यान से सुना था, वैसे भी हमारे ससुरे माँ भी सब जने सुने लगे हैं परिवार में, रातों में बादल आई साए लगत रहा की बाढ़ आए जाई, लेकिन सुबह सूर्य देव ही हर तरफ जलवा बिखेरन है। आंचल सेठ खालिसपुर रायबरेली से लिखे हैं।
0: और देखा सोनू परवाना भी लिखे हैं माटी खुशबू प्रोग्राम में, आप सभी राम राम, आज ही प्रोग्राम सुने खातिर छोटे लाल शुक्ला जी भी सुने आए हैं, इनके नाम ई खातिर लिख दे हैं क्योंकि मेल नहीं कर पावा था। अरे भैया शुक्लू जी सीख लिया मेल उल करे हैं, राम राम आपका, और कहा थे कॉल लग नहीं पावा था तो आज आपका प्रोग्राम बहुत ध्यान से सुना था, जो उन गाना आप बजावा था उनके साथ साथ गुनगुनावत आ और बहुत ध्यान से सुनता है, बहुत बहुत बढ़िया, बस यही तरह सुनता।
1: और देखो ये ग्राम बमना तहसील सफीपुर उन्नाव से लिखे हैं, जिला उन्नाव से, कि चंडीगढ़ से कार्यक्रम सुन रहे और बहुत अच्छा लग रहा, झूम रहे हैं, नीक लग रहा, सबकी बोली बहुत अच्छी लग रही, गौनाई नीक नीक बाज रही, और यह चंडीगढ़ में भी ऐसा मजा दे रही कि जैसे हम अपनी अवधि मतलब क्षेत्र में बैठे हैं सीतापुर में लखनऊ में।
0: क्या बात, रोशनी रावत आई है, बस इसी तरह सुनता। तेज बहादुर यादव भैया जानती है, इन्हू रायबरेली का है और गुरुग्राम में जो ना काम धाम करे थे अपन, हुआ से सुनता है राम राम कहे हैं आपो को हमका, कहा था बहुत बेहतरीन शुरुआत भय कार्यक्रम के, बहुत नीक लगा था पहला गीत और नीना जिजी के बहुत बहुत स्वागत करे थे हम।
1: अच्छा भैया,
0: और कहा थे कि हमहू आए रहे अगले हफ्ता रायबरेली, हमरे अपने मेहरारू और लड़का बच्चा का लावे और हमका मिक्सी कूलर और फ्रिज मंगवाए तो पिया, एसी लगवाए तो पिया, एकदम नाचे वाले गीत गवनाई सुनवाए रही, बहुत झमाझम गीतन के बारिश कह रही है दोनों जनी।
1: और देखो ये है गांव भानपुर हरुआ जिला लखीमपुर खीरी से मुनेश कुमार राज, नीना दीदी अंजू बहिनी दोनों का नमस्कार, कार्यक्रम बादशाह पुरानी याद भोर भय रेडियो बजा, दीदी बहनी की बोली आई पुरानी याद ताजी भाई आंखिया भर ही आई, अलगय धरव सिलबट्टा अलगय धरव बिलना, दीदी जिज्जी की मीठी बाणी से मन का जाय चहकना, चूल्हा चौका छोड़ सखी सब कान लगाई, जब बोली दी बहनी सारी दुनिया ठहर जाई, बचपन की उगली सुमरन करती बुढ़िया, दो बहनी की बोली बानी लगे जैसे ससुरिया।
0: क्या बात, क्या बात, अच्छा सब जने कवि वही हो गए हैं, सब खेला
1: जुग जुग जियो दीदी जी, जुग जुग जियो बहनी जी, आपकी बोली में बसी है मिट्टी की महकार, यही बहुत पुरानी यादन का ताजा कर दियो आज आप, ऐसे ही देहात की खुशबू हम तक पहुंचात रहो, और दोनों बहनी का राम राम, आपके भाई मुनेश कुमार राज।
0: राम राम भैया जियो भैया, यही तरह सुनत रहो। और देखा वारिस अली खान भैया भी लिख दे हैं प्यार भरा सलाम, और कहा थे आप दोनों सुगंध माटी की शो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप दोनों जब भी शो करते हैं कोई ना कोई संदेश जरूर होता है, यानी आम के आम गुठलियों के दाम,
1: आम से हमको याद आवा, देखो आम जो है ओम प्रकाश कहीं क्या जिज्जी आपका
0: लाए नहीं
1: लावा नहीं, और मालूम का कहे सब झुलस गए, जिज्जी पानी नहीं बरसा तो आम जौन है वो झुलस गए, और जो कुछ गुच्छा गुच्छा बाउर लगी रहे वो गरमाए के बिल्कुल झुलस गए सूख गए, ऐसा प्रकृति के तांडव इस समय हम लोग देख रहे हैं कि भैया आम के तो अब नामा रहेगा है, जो कुछ है उका भी जब खाए के पहले जौन है खूब नीके तनीके धो जो बाजार में है, और उका थोड़ी देर नमक के पानी में गरम डाल दे जो पेस्टिसाइड वाइड होते है कार्बाइड में पकावा जाता है वो सब निकालना भी बहुत जरूरी होता है, कहे से वो भी

0: के अंदर ही जाते हैं।
1: ओकरे बाद फिर एकदम ठंडा करके खाओ भैया, गरम गरम बिल्कुल ना खाओ,
0: ठंडा करके। ठंडा भाई देखो खसखस के पास रख दे, मतलब खसखस के जो होती ना, देखे हुई खसखस कैसा होता है, जड़ी की तरीका होता है, और उसका जो है पानी से भिगो के भिजो के वही के ऊपर आम धर दे और ढक दे, उससे वो जो होता है माटी के वो जो तस्तरी टाइप की होता है वही ढक्कन ढकना टाइप के भी आते। अब तो तरह तरह के माटी कला मेला में देखो सब बर्तन मिला था माटी के, तो वही से धर दे ऊके ऊपर पानी छिड़कत रहो और आइस ठंडा हो जाते, आइस ठंडा हो जाते, लगाते फ्रीज से निकाल निकाल खाए रहे।
1: बहुत बढ़िया। और देखा गवनई अच्छी लागती है, सोहर सुन के मन प्रसन्न हो गए। ब्रजेश सिंह दीपू भैया इटा हुआ कैसरगंज बहराइच से मेल करे हैं, और संजू देवी भी मेल करती हैं ग्राम पहाड़पुर से, और भिटौरा जिला सीतापुर से अंजू जी, नीना जी दोनों का राम राम करे हैं। दोनों बिल्कुल नी कही बच्ची हम सब हैं। बहनी बहुत नी कही
0: पलिया कला लखीमपुर खीरी से जसप्रीत विश्वकर्मा जी लिखी ने कार्यक्रम, बहुत नीक लग रहा चल रहा, बड़ा नीक लग रहा, अच्छा भैया राम राम, बहुत अच्छा। रामराज जी लिखी ने रायबरेली ग्राम पहाड़ीपुर से, इनके साथ राजू भानु रामचरण पप्पू पासी मनीष नीरज मधु मीनू ननकई, सबसे पहले हमारी तरफ से दोनों बहनीन का प्यार भरा नमस्कार, शुभ आशीर्वाद पहुंचे, सुगंध माटी के कार्यक्रम बहुत नीक लग रहा, हम सब लोग रोज सुनतन, धन्यवाद रामराज जी आप भेजो आओ मेल।
1: तो भैया यही तरह सुनत रहा, जुड़ा रहा हमसे सबसे,
0: अपन कंप्यूटर पे पढ़ाओ, ये बेनित कुमारों के मेल है।
1: अबे देखा पढ़ी थी लेकिन पहले गाना ही सुनाई,
0: सुना सुना सुना।

0: जौन रंग पसंद हो वही रंग ले आया भैया, लेकिन लाया जरूर।
1: और वैसे भी देखो अगर आहत है जो मतलब घर परिवार में जब मने आहत है घर बाहर से, तो अपन मेरिया के लिए खुश करे के लिए कोनो गिफ्ट विफ्ट तो बनता है।
0: और का चूड़ी कंगन कुछ तो,
1: और का चूड़ी ले आओ, कुकी खाए की जैसे गोलगप्पा अपा मने खाता है। लेकिन देखो हम गोलगप्पा का प्रमोट नहीं कर रहे हैं, काहे से कि गर्मी बहुत है और जितना हो सके बच्ची देखो घर के ही खाना पीना खाए, और नहीं तो ये जान लो कि कब आपके पेटों चल

0: सकत है, कभी आपको कुछ हो सकत है, और जरा जरा तनी तनी देर में पानी जरूर घड़ा से लुड़का लुड़का के पिए। अगर पानी ना पियो तो कहा जाता है शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, जो मेरिया लोग खाना ना बनाती है मार धार की तनी के पसीना इस बात है, ऐसा लगता है कि ऊपर से मनाई गरम गरम पानी से नहवा रहा है नहीं। तो ये सब बातन के ध्यान रख के कहा है। और देखो अंजू बहनी कि कुल्फी फालूदा के भी मौसम है, और केसर की कुल्फी फालूदा है ना, रबड़ी फालूदा मौसमी जो शरबत है वह पिए के समय है, और सत्तू के शरबत भी मनाई पी के स्वस्थ रह सकते हैं। आम के पन्ना के बारे में तो हम लोग कई बार बतावा है कि गर्मी के मौसम में आम के पन्ना पिए का है। ठंडाई ठंडाई बहुत निक लगा थी, ठंडाई तो तरह तरह की मनाई घर में बना सकते है, और खसखस के शरबत ये भी एक शरबत होते है, सबका मालूम है कैसे बनाए का है ठीक है। और गुलाब की पंखुड़ियन के शरबत, ये सब ऐसी चीजें है ना जो शरीर ठंडा रखा थी। सौंफ के शरबत बहुत ही अच्छा बहुत निक लगा था, और जाने ठंडा ठंडा पेट में जब जाता है ना ठंडा ठंडा कूल कूल पेट आपका कर दे।
1: सही बात है ना। और जी जानते हैं यही तरह ठंडा ठंडा ईमेल ढेर का आया था, कैसे हो गया है 10:51 और इतनी तेजी से समय समाप्त हो जाता है जी पता है नहीं लागत। अब देखो विनीत कुमार भैया के मेल आप पढ़े वाली रहो, कहा लिखे हैं?
0: अच्छा, विनीत कुमार अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से लिखे ने, सुगंध माटी की प्रस्तुत कर वाली बहनी लोगन का राम राम प्रणाम। छोट भाई विनीत कुमार आप लोगों का शस्त्र प्रणाम कर रहा, और सुपर हिट स्वीट मीठी मीठी बोली बहुत नीक लग रही प्रोग्राम, बहुत नीक लग रहा हम सब दोस्त जौन है और सुन रहे आप आपके कार्यक्रम, और हमारे दोस्तों सुन रहे हैं। और एक नीचे लिखे ना है आजाद सिमरी से ओमकार सीतापुर से सुरभि, और यहीं से समा परवीन, और परवीन अंसारी सीतापुर से, सीमा रावत राजपुरम से, संतोष मौर्य हरदोई से, वीरपाल पट्टी अतरौली से, ममता हरदोई से, रिंकी पिंकी रायपुरली से, मोहिनी हरदोई से।
1: भैया इतना सबके नाम लिख दे है, वाह
0: अरे भैया
1: हाँ समय भागता है। पवन कुमार भैया सिधौली सीतापुर से सुनता है प्रोग्राम के, तारीफ लिखे हैं बहुत मजा आता है नहु का। और विपिन कुमार मौर्य भैया भी पसीना में सरा बोर है, और देखा फोटो भेजे हैं आम के खेते में, देखा
0: आम के खेत
1: आम बगिया में,
0: और ये देखो मोनू सीट जी
1: बगिया में,
0: हाँ ऐसा लगा था प्रोग्राम एकदम झलझल हुआ चलत बा, अरे लगत रहा झलझल हुआ तो भैया ठीक है झलझल हुआ
1: मजा लेते
0: हैं मजा लेते हैं, मतलब झकास इनका मतलब रहा।
1: सुशील यादव जौन शब्द बोला था कि अलग है डिक्शनरी बन जाए,
0: डिक्शनरी बन जाए। सुशील यादव करनैलगंज गोंडा से लिख रहे हैं कार्यक्रम बहुत है बहुत नीक लग रहा, आप लोग उनके प्रेम जो मेल है बहुत नीक लग रहा है। ये कौन है? मिसेस गीता सेठ FM दीवानी, और दोनों दीदिया जी का प्रणाम, राम राम कैसन हो आप? उम्मीद आप उम्मीद बानी बहुत नीक होए है, मतलब बानी बहुत नीक बरसे जब पहली फुहार, मई के माटी की सुगंध, दुनिया के सारे सुखद फीके के सम्मुख बंद, पहली बारिश की फुहार पड़ते साथी जो सोंदी खुशबू माटी से आती, वो प्रकृति की सबसे बड़ा है उपहार, इके आगे दुनिया भर के सुखो अश्वर भी के पड़ जात हैं।
1: अच्छा जी अभी देखा एक फोटो भेजे रहे भैया मौर्या भैया है, हाँ। किसान हरे जौन हमारे किसान भाई यहाँ ये सब खेत में चाहे जौन मौसम होए इतनी मेहनत करें तो ये सब मेहनत ना करें तो जो है हमारे सबके थारी में अन्न न पहुंचे है?
0: ये जाने हो अंजू बहनी इनका कहा जाता है अन्नदाता, मेहरिया और जो घर के परिवार के सब सदस्य मिलके काम करत है ना, इनका सत सत प्रणाम करो, इनकी वजह से हम लोग खाए पिए के लिए जो तना तना के स्पेशल फूड आइटम,
1: हाँ, और देखा किसान के लड़कियां बच्चा भी उनके पूरे परिवार का प्रणाम हम।

0: बुझा ले।
1: हाँ भैया, तो गर्व के साथ कहा हम लड़कियां ही किसान के हैं, बहुत लड़कियां बच्चे आजकल के शर्मात हैं।
2: शर्मात है। देखो अंजू बहनी, हम आपको बताए दे कि जो कुछ काम कर रहे हो ना, उसका गर्व महसूस करे का है। आजकल देखो स्टार्टअप के जमाना है, ऐसे ऐसे मनाई देखा है कि
1: लघु उद्योग दिवस।
2: हाँ, और देखो मनाई जो उन्हें खेत खलिहान में काम करके कमाए रहा, अपन देखो गैया वैया पाल ली से घर घर जो उन्हें दूध दे रहा, दही दे रहा, छच्छा छाछ है, मट्ठा है, ये सब चीजों की सप्लाई कर रहा, घी दे रहा, तो बिल्कुल प्योर, बिल्कुल एकदम कोई मिलावट नहीं। तो ये जो छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं ना, यही स्टार्टअप कहलाते हैं। और मैंने देखो धीरे धीरे कोई चीज जमा थी, अब ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल आए के जम से बैठे कौन चीज शुरू करे और कौन फसल लगाए उके बीजा डालो तुरंत पेड़ बन गया, नहीं। समय से आते फल, समय से पेड़ होते बड़ा। और देखो सुगंध माटी में एमन नवाब लिखी ने संडीला से कि हम सुन रहे हैं दिल बनाई नहीं मोजी, और कहीं नीक लग रहा कार्यक्रम, और सब श्रोता पंजन का कहो कि जो उन मेल भेजी ने अंजू कि सबका धन्यवाद। और यह बताया दी पंचन का कि जो ने नहीं सुने हो कि अंजू बहनी बहुत मतलब कहा जाए कि मेहनत मेहनत मेहनत कशी है, तो मेहनत कर करके निकाली है, और एक एक गौनाई पे हम लोग जो ने रिसर्च करा था लेकिन अंजू निकाली से, और ऐसा तुक्ष ऐसी तरकीब हो गई कि बतकही जो ने गौनाई से मिल मिल गई।
1: अरे यही का तो कहा थे एक्सपीरियंस जो हमारे जिज्जिक लगे तो जिज्जी आपका बबू बतावा।
2: अब जब देखो हम तो पहले ही बात करे कि अब हम परसों जाब वेद भारती पे और वन करब कार्यक्रम, और अब देव भैया नीना सोनकर बहनी का
1: और अंजू बहनी की इजाजत, लेकिन हम अगले कार्यक्रम आई यहीं पे और नीना जीजी का पठाई आई है, तब तक ये दोनों ही आखिरी आज के कार्यक्रम के आप सब
2: रिवाज खा लिए। अच्छा
1: हाँ हाँ, अभी चलते खाए खाए
2: सभी का नमस्कार। राम राम भैया,
1: राम राम, प्रणाम।

0: कहा था ही मान जा, हम आओ बना बता देते।
1: नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा से पहले जारी वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने तथा हिंद महासागर क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वहां के भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि ये यात्रा भारत सेशल्स संबंधों को मजबूती देगी, हिंद महासागर में समुद्री सहयोग बढ़ाएगी और सुरक्षित, शांतिपूर्ण तथा समृद्ध क्षेत्र के साझा लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की परिकल्पना को साकार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से पार्टी सभी कार्यकर्ताओं में उनके मूल्यों और आदर्शों को समाहित करने का प्रयास कर रही है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार भी उन्हीं आदर्शों पर अमल करते हुए ऐसी नीतियों को लागू कर रही है जिनका लाभ अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति तक पहुंच सके। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास की साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत रोजगार जी रामजी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल रात से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मॉनसून प्रवेश करेगा। इसके बाद 30 जून से 3-4 दिनों तक प्रदेश भर में गरज चमक के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसी के साथ ये बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो, जिस पर अगला प्रोग्राम है संदेश आपके गीत हमारे।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: सात रंग का इंद्रधनुष है,
4: सात सुरों की सरगम है,
5: सात जन्म है सात समंदर,
3: साथ हमारा हरदम है,
5: जिंदगी के सतरंगी रंग
4: FM रेनबो के संग।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम वंस अगेन टू 100.7 एफएम रेनबो. 11:04 हो गए हैं. मैं हूँ आरजे अंजू शुक्ला आपके साथ और प्रोग्राम लेकर आई हूँ आप सभी का अपना संदेश, आपके गीत हमारे, जिस प्रोग्राम में आप हमें ईमेल करते हैं और हमें डायरेक्ट फोन कॉल्स भी करते हैं. सबसे पहले हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए, 0522 22 38 845 या फिर 0522 22 38 852 और fmakashwani@gmail.com. ये है हमारी ईमेल आईडी जिस पर आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे और अपना एक प्यारा सा मैसेज जो जनहित में हो, समाज के हित में हो, जो अवेयरनेस से जुड़ा हुआ हो, तो आप हमें लिखकर भेजिए अपने नाम पते के साथ. फोन पर कोई है, इनसे बात करते हैं. हेलो.

0: हाँ बहन जी नमस्ते।
1: जी नमस्ते, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: श्री प्रकाश तिवारी उन्नाव से बोल रहे हैं बहन जी।
1: जी कैसे हैं तिवारी जी?
0: हम बिल्कुल ठीक है बहन जी, नियमित सोचता है, वो 57 नंबर मिला रहे तो मिलते नहीं कर।
1: जी हमने नंबर जो बताया ना वही नंबर मिलाइए। ठीक है, आपने कौन सा नंबर मिलाया है?
0: हमने 52 मिला दिया है आज।
1: अच्छा देखिए, अभी हम नंबर्स कंफर्म करके फिर से बता देंगे। अच्छा ये जब बात होती है फोन नंबर्स की, तो आप लोगों को सारे फोन नंबर्स रटे हुए हैं यहाँ के?
0: वो एफएम का नंबर है।
1: जी जी एफएम में ही आप इस समय आप एफएम में ही बात कर रहे हैं। अच्छा ये जो मतलब लिसनिंग है, आप एफएम ज्यादा सुनते हैं या बाकी और चैनल्स, प्राइमरी चैनल या?
0: एफएम भी सुनते हैं और दूध भारती भी सुनते हैं।
1: जी जी बहुत अच्छी बात है,
0: पास यही काम ही है भाई जी।
1: चलिए बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना है आकाशवाणी, और ऐसे ही बनाए रखिए। क्या कहना चाहते हैं आज तिवारी जी हमारे बाकी लिसनर से?
0: बहन जी हनुमान जी का कोई भक्ति वाला जी लक्का के आप देखिए,
1: ये काम जो है इस समय विविध भारती पे आप कर सकते हैं, प्राइमरी चैनल पे चल रहे होंगे ऐसे फरमाइशी गीतों के प्रोग्राम। ये जो एफएम पर इस समय का जो प्रोग्राम है उसमें हमारे श्रोता गीत की फरमाइश नहीं देते हैं, आपको कोई एक अच्छा सा मैसेज जो बाकी श्रोताओं के लिए जनहित में हो वो आप बता सकते हैं, आप बताएं।
0: अरे बहन जी अच्छा मैसेज ये है कि आप धूप में ना चले, पानी खूब पिए, और मतलब बाइक वगैरह चला रहे हो तो हेलमेट गिरा के चले, या कोई एक्सीडेंट रास्ते में हो गया उसको अस्पताल पहुंचाए बहन जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है, थैंक यू सो मच आपके इस प्यारे से मैसेज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये थे श्री प्रकाश तिवारी जी उन्नाव से, आप भी हमें मेल कर सकते हैं और या फोन कर सकते हैं। फिलहाल एक गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय करते हैं और उसके बाद आप सबकी बारी, और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। 11:30 पे सुनेंगे आप स्टम्प्ड और उसके बाद भी प्रोग्राम जारी रहेगा, लेकिन अभी तो हम हैं, सुनते रहिए।

बागी टू से ही था ये खूबसूरत सा ट्रैक. और अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम पर. देखिए गानों जो है लगातार चलते रहेंगे क्योंकि ये आपका म्यूजिक

0: बागी टू से ही था ये खूबसूरत सा ट्रैक. और अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम पर. देखिए गानों जो है लगातार चलते रहेंगे क्योंकि ये आपका म्यूजिकल दोस्त है एफएम रेनबो. बढ़िया बढ़िया गाने, हर तरह के गाने आपको यहाँ पर सुनने को मिलते हैं और इसीलिए हर हफ्ते हम लेकर आते हैं प्रोग्राम. हफ्ते में दो बार सुगंध माटी के लोकगीतों पर आधारित, और उसके अलावा गज़लों का प्रोग्राम आप शाम को सुनते हैं आप शार, पुराने फिल्मी गाते गाने सुबह सदाबहार गीत में, और इसके साथ साथ प्रोग्राम रजनीगंधा में रात 10 से 12. तो बहुत कुछ मिक्स करके हर रंग आपके लिए हम लेकर आते हैं मनोरंजन का, साथ ही साथ जागरूकता का, अवेयरनेस का. और यहाँ पर बात करते हैं अगर अवेयरनेस की, तो हमारे श्रोता बहुत अवेयर हैं. जो नियमित श्रोता हैं और जो भी एफएम रेनबो से जुड़े हैं, वो जब अवेयर होकर अपनी बात, किसी भी अवेयरनेस से जुड़ी कोई बात जन जागरूकता के उद्देश्य से इस प्रोग्राम के जरिए बाकी श्रोताओं तक पहुँचाते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है. तो बस एक छोटा सा मैसेज और एक छोटी सी बात, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लिसनर्स को हम मौका दे सकें. फिलहाल फोन पर कोई है, आइए इनसे बात करते हैं. हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: जी वालेकुम सलाम, कहाँ से बात कर रही हैं, अपना नाम बताएं.
1: साहिबा अंसारी, महरागंज लखीमपुर खीरी से बोल
0: रही. जी साहिबा, क्या मैसेज देना चाहती हैं आज?
1: मैं मैसेज हम ये देना चाहती हूँ, जैसे कि हम आज मुहर्रम की 11 तारीख है, मैम बहुत सी जगहों पर त्योहार मनाए जा रहे हैं
0: जी,
1: तो मैम जो होते हैं पत्ता ले रहे गिलास होते हैं, वो इधर उधर ना फेंके, भेदभाव ना करें त्योहार में.
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, वैसे भी पर्यावरण का तो ध्यान रखना ही चाहिए, और प्लास्टिक के ग्लास वगैरह भी, और ये सब चीज़ें हमें यूज़ ही नहीं करनी चाहिए. और कहीं पर भी हम अगर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी प्रयोग करते हैं खाने पीने की चीज़ें, तो कभी भी इधर उधर ना फेंके. देखिए डस्टबिन हर जगह होना चाहिए. जी बताएं.
1: हेलो मैम, आपको अचार मिला वकील भाई
0: वहाँ से? अरे वकील भाई पता नहीं कहाँ खुदे खा गए लग रहा.
1: हमारे वहाँ आए थे अचार लेके, हमारा घर ही नहीं इनको देने मिला.
0: अरे तो चलिए अब की बार अच्छे से उनको अता पता सिखाइएगा.
1: नहीं, आपने बुकिंग दिया था और हमें अचार मिलने वाला था, बाकी उनको घर नहीं ढूंढने मिला.
0: मतलब ना आपको मिला ना मुझे मिला, कुल मिला के, है ना?
1: मिला, सही बात.
0: वकील भाई बड़े, मतलब अब क्या ही कहें उनके लिए, सुन रहे होंगे तो जरा ध्यान से सुन लीजिए. हम लोग इंतजार कर रहे हैं अभी भी, ठीक है?
1: इंतजार कर रहे हैं उनके.
0: चलिए चलिए ठीक है, देख उम्मीद करेंगे कि मिल जाए. थैंक यू सो मच साहिबा हमसे बात करने के लिए. और इस तरफ अगर रुख करें तो हमारे बहुत सारे लिस्टर्स ईमेल कर रहे हैं हमें लगातार, आइए उनको भी हम शामिल करते हैं. वारिस जी का मेल आया है और इन्होंने संदेश आपके गीत हमारे शो प्यारे कर शो पेश करने वाली अंजू को खान परिवार का प्यार भरा सलाम. आप सबको भी बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार. कहते हैं कि लोगों ने तालीम तो हासिल कर ली मगर अफसोस इंसान बनने में नाकाम रहे. सही बात कही आपने. और अगर हम बात करें इंसानियत की ना वारिस जी, तो मुझे लगता है कि ये जो सबक है इंसानियत का पाठ, बहुत कम जगहों पर पढ़ाया जाता है और इसकी शुरुआत घर से ही होनी चाहिए. कहा भी जाता है ना कि घर एक बच्चे का, एक छोटे बच्चे का की प्रथम पाठशाला होती है, पहला स्कूल होता है घर. परिवार और उसके पेरेंट्स उसके पहले टीचर्स होते हैं, या घर में जो भी बड़े उस बच्चे के साथ रहते हैं, नवजात शिशु के साथ. तो वहीं से अगर घर से ही इंसानियत के सबक, इंसानियत का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा ना, तो आई एम श्योर बच्चा जब घर से बाहर निकलेगा तो एक अच्छा इंसान ज़रूर बनेगा. और आज के प्रोग्राम में इनका जो मैसेज है वो ये कि दो बातों की गिनती करना छोड़ दीजिए, खुद का दुख और दूसरे का सुख, ज़िंदगी आसान हो जाएगी. बड़ा ही प्यारा सा मैसेज, लेकिन बहुत ही गहराई बात इसमें छुपी हुई है. अगर इस पर ध्यान दें लोग तो वाकई में हर जगह सुख होगा. रामराज जी का भी मेल आया है और इनके साथ बहुत सारे और भी नाम है. रामराज, राजू, भानु, रामचरण, पप्पू, मनीष, नीरज, मधु, मीनू, ननकई, सबकी तरफ से नमस्कार. और संदेश है कि गर्मी बहुत हो रही है, ज़रूरी है कि पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था ज़रूर करें. अपनी रक्षा तो मनुष्य अपने आप कर लेता है, और निर्जीव बेजुबानों की भी हम सहायता करें, उनका भी ध्यान रखें. थैंक यू सो मच. संजू देवी हमें लिख रहे हैं ग्राम पहाड़पुर पोस्ट भिठौरा जिला सीतापुर से. जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे लिए लिखकर भेजी हैं. गुड मॉर्निंग आपको, और प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया. और इन्होंने लिखा है कि आपके लिए दो लाइन अर्ज़ किया है. निगाहें आपकी पहचान है हमारी, हंसी आपकी मुस्कान है हमारी, खुद को रखना हिफाजत से अंजू मैम, सांसें आपकी जान है हमारी. क्या बात है, इतना प्यार आप लोग देते हैं, बहुत अच्छा लगता है. बस ऐसे ही अपना प्यार और शुभेच्छाएँ बनाए रखिए हमारे साथ. संदेश के तौर पर कहना चाहती हैं कि गर्मी बहुत पड़ रही है, सभी लोग अपना ध्यान रखें और पानी पीते रहें. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया संजू देवी जी, आपका भी मेल हमें मिला अच्छे मैसेज के साथ. मैनुद्दीन जी क्या लिख रहे हैं, खैराबाद सीतापुर से सुन रहे हैं, नमस्कार.

और हमारे खैराबाद में तो मेला धमाकेदार चल रहा है मैम. मैं देख जावा, ये इसका अर्थ मैं क्या समझूं? मैं देख आया हो सकता है, या हो सकता है हमें इनवाइट कर रहे हो देखने के लिए. शुक्रिया. और नेक्स्ट मेल है मुनेश कुमार जी का, और इन्होंने हमेशा की तरह थोड़ा सा लंबा मेल किया है. तो एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, तब इनका मेल मैसेज पढ़ेंगे. और भी बहुत सारे ईमेल्स हैं हमारे सामने दिख रहे हैं जिनके मेल्स हम तक पहुंच चुके हैं. वकील अहमद जी, टिंकू सोनी जी, पिंकू सोनी जी, विजय पाल जी, विनीत कुमार जी, आप सबके ईमेल्स हम तक मिल गए हैं. महेंद्र दीपन जी का भी मेल आ गया है, लेकिन ये कुछ कह रहे हैं, पहले इनकी सुन लेते हैं.

जी भाई, मुलाकात तो अभी बाकी है. अभी 12 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगी और 12 बजे के बाद एक और दोस्त आपके साथ आ जाएंगे. लेकिन इस प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में आज हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है. स्टम्प्ड सुनेंगे आप लगभग 18 मिनट तक 11:30 बजे से, और उसके बाद वापस इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा. और अब हम कुछ और ईमेल्स शामिल करते हैं. और हमारे सामने मेल है वकील अहमद जी का, और वकील अहमद जी ने संदेश दिया कि बच्चों को तालाब में नहाने जाने न दें. कभी कभी बहुत ही दुखद हादसा हो जाता है. बिल्कुल सही कहा आपने. और ऐसे हादसे अगर हमें सिखाते हैं कुछ, बहुत कई बार हम हादसों से सबक नहीं लेते हैं और लापरवाही हमारी जारी रहती है. लेकिन जब कोई दुखद हादसा होता है तो हमें सतर्क होना चाहिए, हमें उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि लापरवाही की वजह से हुआ है ये. तो इस तरह की चीज़ें हमारे घर में हमारे आसपास ना हो, तो ऐसी लापरवाही बिल्कुल ना करें. थैंक यू सो मच. सीतापुर से आप हमें सुन रहे हैं, कटका हथुरी जिला सीतापुर से. गर्मी बहुत है, धूप बहुत तेज है बाहर सच में, तो ध्यान रखें सभी लोग अपना अपना. पिंकू सोनी जी टिकैत नगर बाराबंकी से हमें लिख रहे हैं, सदियों क्या आप, अच्छा शादियों का सीजन. देखिए आप थोड़ा सा या तो हिंदी में मेल कर दीजिए या जो आप रोमन में लिखते हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि स्पेलिंग सही आए. शादियों का सीजन आने वाला है, तो सभी से कहना है कि थाली में व्यर्थ उतना ही लें थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में. अन्न की बर्बादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. थैंक यू सो मच. विजयपाल यादव जी ने भी मेल किया है, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, सुगंध माटी की कार्यक्रम आप में बिल्कुल आप दोनों बहनों ने धूम मचा दी. संदेश के तौर पर कहते हैं कि बाहर लोग जाते हैं तो आम लेकर किनारे बैठकर खाने लगते हैं, धोते भी नहीं है. कैसे लोग होते हैं ये, कहां से आते हैं ऐसे लोग. जी कृपया ऐसा ना किया करें, उन्हें धोकर ही खाएं. परसों हमारे मित्र इंद्रपाल मिश्रा जी महोली गए थे, हमने देखा सड़क किनारे बैठे खा रहे थे, अंत में उन्हें दिक्कत हो ही गई. देखिए कई तरह का इन्फेक्शन होता है, और जब बाहर आप देख ही रहे प्रदूषण का स्तर है कैसा. पहली बात तो आम जो मतलब गरम तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, बड़ी गंभीर परेशानियां भी हो सकती हैं. और वैसे भी आम हो या कोई भी खाने पीने की चीज़ें हो, हमेशा धोकर खाएं उसे, ठीक है. तो विजयपाल यादव जी बहुत अच्छा मैसेज आपका, और कार्यक्रम सुगंध माटी की आपने जो तारीफ लिखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से आपका ईमेल है. विनीत कुमार जी आपका भी मेल मिला. रूमी गौतम ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से हमें मेल कर रही है. गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, पिछला प्रोग्राम सुपर हिट किया. थैंक यू, आप लोगों का मैसेज हम नीना जी तक भी पहुंचा देंगे, बहुत बहुत शुक्रिया. इन्होंने संदेश के तौर पर कहा है कि जैसे हमारे सभी के छोटे बच्चे हैं, उनको पानी या भूख लगे तो आप पी नहीं सकते हैं, तो उनका ध्यान रखें. इतनी गर्मी में पानी ज़रूर पायलट रहे, मतलब पल पल मुझे लगता है कि ये कहना चाहते हैं कि चेंज करते रहें पानी. और जैसे जानवर हैं, बकरी हैं, इन सब जो पशु पक्षियों के लिए आप पानी रखते हैं अपने आसपास ना, उन्हें उनका पानी बीच बीच में बदलना भी ज़रूरी है. बिल्कुल सही कहा आपने. और हम तो रोज़ ये काम करते हैं, दिन में 2-3 बार करते हैं. और आपने घर के लोगों को भी बता रखा है कि अगर हम बिज़ी हैं तो बाकी लोग इस बात का ध्यान रखें. बहुत बहुत शुक्रिया. महेंद्र जी का भी मेल पढ़ते हैं, और इन्होंने हमें ग्राम व पोस्ट नहीं ग्राम इनका है रूण और ज़िला नागौर और राज्य है राजस्थान. आज इस प्रोग्राम में जो इन्होंने मेल किया है ये कह रहे हैं कार्यक्रम सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया. आज जो संदेश देना चाहते हैं उसमें एक बात इन्होंने साझा की है कि मेरे घर पर निर्माण कार्य चल रहा है जिसके लिए मैंने काम ठेके खुद पर दिया है, और ठेकेदार एक छोटा बच्चा काम पर लेकर आया है. मैंने तुरंत उसे काम करने से मना कर दिया. मैंने ठेकेदार को स्पष्ट रूप से समझाया कि अभी इस बच्चे की उम्र काम करने की नहीं है बल्कि स्कूल जाने की और पढ़ने की है. तो ये कहना चाहते हैं कि बाल श्रम न केवल कानूनन अपराध है बल्कि उस मासूम बच्चे के सुधरे भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है. बिल्कुल सही कहा आपने. और इनका मानना है कि छोटे हाथों में ईंट पत्थर नहीं बल्कि कलम होनी चाहिए. और इन्होंने तस्वीर भी भेजी है अपने घर की जो बन रहा है इनका घर. तो बहुत सारी शुभकामनाएं कि एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा घर आपका तैयार हो जल्दी से, और आप उसमें धूमधाम के साथ गृह प्रवेश करें, अपने बच्चों के साथ रहें, शान से रहें और सुकून भरी ज़िंदगी रहे आपकी आने वाले दिनों में. तो ये जो चीज़ें आपने लिखकर भेजी ना कि बच्चों को सबसे बड़ी बात कि आप बच्चों से श्रम करवा रहे हैं, है ना. और ऐसा काम, अरे छोटे बच्चों को अगर कुछ सिखाना चाहते हैं तो मतलब कुछ इस तरह के काम जैसे होता है ना कि कभी कभी हम लोग घर में, मेरे घर में अक्सर ऐसा होता है कोई काम अगर बच्चों से कहो कि पानी ला दो या ये कर दो वो कर दो, थोड़ी सी सफाई में हेल्प कर दो, तो बच्चे क्या कहते हैं पता है आपको, मतलब उनका ये कहना होता है कि अच्छा आप लेबर
मतलब चाइल्ड लेबर अब करवा रहे हो, तो मतलब वो एक तरह का मजाक है, वो ब्लैकमेल करते हैं बच्चे इस तरह के काम करने का मन नहीं होता है तो। लेकिन ये छोटे छोटे काम बच्चों से कराते रहना चाहिए, छोटे बच्चों से घरों में हेल्प लेनी चाहिए। हम लोग अक्सर प्रोग्राम में कहते हैं कि मान लीजिए बड़े घर में नहीं है तो एटलीस्ट अपना काम तो वो खुद कर सके, या घर में अगर कोई मम्मी पापा या कोई बुज़ुर्ग है बीमार पड़ गए या किसी तरह की उनको हेल्प चाहिए तो वो थोड़ी सी हेल्प भी कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, साफ़ सफाई रखना सीखें। अपने कमरे की सफाई तो वो खुद करें, अपनी टेबल स्टडी टेबल की, अपने स्कूल बैग की, इतना तो छोटे बच्चे कर सकते हैं। उनकी उम्र के अकॉर्डिंग उनको छोटे छोटे टास्क देने चाहिए। और समर वेकेशन में तो बहुत सारा काम करवाया होगा मम्मी ने बच्चों से, क्यों कराया है ना, तो बस इस ये सब चीज़ें सिखाने के लिए कराई जाती हैं कि छोटे छोटे काम बच्चे अगर सीखेंगे नहीं तो फिर जब उन पर आएगा तो कैसे करेंगे। एक बहुत ही प्यारा सा नगमा आप तक पहुंचाना चाहती हूं, लेकिन वक्त कम है, मुझे लगता है एक छोटा सा गाना पहुंचा देती हूं वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस गाने को काटने की तो मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी। तो एक छोटा सा गाना सुनवा देती हूं, और या फिर हम मेल ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 11:30 से हमें दिल्ली जाना है स्टम्प्ड के लिए, मतलब हम जाएंगे नहीं, आपको अपने स्टूडियो से ही ले जाएंगे। और फोन लाइंस में मुझे लग रहा है थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास फोन रिसीव नहीं हो रहे हैं अभी, इसलिए हम मेल ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर मैंने अभी गाना बजाया तो वो गाना पूरा जा नहीं पाएगा अब तक। अशोक राज जी का मेल है, रायपुर उदारा मितौली लखीमपुर खीरी से, सॉन्ग्स अच्छे लग रहे हैं। संदेश के तौर पे कहना चाहते हैं कि चिलचिलाती धूप में बेजुबान पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना मानवता का सबसे बड़ा संदेश है, और पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और नींबू पानी नारियल का सेवन करते रहें, नारियल पानी का, है ना। देखिए सभी लोग कह रहे हैं गर्मी बहुत है, और गर्मी से बचने के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो ज़रूर करिए, और एसी वगैरह अगर घर में चल रहा है ना तो उसे ब्रेक दीजिए, थोड़ी देर का ब्रेक ज़रूरी है, बीच बीच में बंद करते रहिए। मनीष गुप्ता जी कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, मनीष गुप्ता आपका प्रोग्राम और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारा संदेश ये है कि जब माता पिता मार्केट की तरफ जाते हैं तो अपने बच्चों को साथ में रखना, कई बार वहाँ ख़रीदारी में करने लगते हैं, बिज़ी हो जाते हैं और बच्चे कई बार गुम हो जाते हैं, इस तरह से परेशानी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए जब भी चलें तो बच्चों को अपने साथ ही रखें, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, आपका ध्यान डाइवर्ट होता है शॉपिंग वगैरह में, ऐसा ना करें, सारा फोकस बच्चों पर रखिए और उसके बाद शॉपिंग तो सेकेंडरी है ना। नीलू शर्मा जी कहती हैं कि आज का GML माटी की सुगंध प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा दीदी, आज का मेरा मैसेज यह है कि सभी वाहन चालक भाई भाइयों के लिए है मैसेज। 22 जून को अपनी दोस्त पीहो के घर गई थी तो कल्याणपुर दलहन क्रॉसिंग पर खड़ी थी, ऑटो शिकंजी में एक पेशेंट, ऑटो रिक्शा लिखना चाहती होंगे मेरे ख्याल में, पेशेंट को लेकर उसकी फैमिली वाले अस्पताल जा रहे थे, ऑटो वाले भैया ने पहले ही उतार दिया और वो पेशेंट चल नहीं पा रहे थे, और मैं खड़े खड़े ये सब देख रही थी। मैंने कहा भैया वो पेशेंट चल नहीं पा रहे हैं, उसको उनको उस पटरी पर उतार दीजिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। भाई देखिए इंसानियत तो यही कहती है कि आप थोड़ी सी मदद कर देते, वहाँ तक पहुँचा देते जहाँ तक उनको जाना है। तो चलिए थैंक यू सो मच नीलू, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम स्टम्प्ड हमारे दिल्ली केंद्र से, और उसके ठीक बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम 100.7 FM रेनबो पर जारी रहेगा। कौन सा संदेश आपके गीत हमारे स्टेट्यून्ड।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, 100.7 एफएम रेनबो ट्यून किया है आपने. मैं हूँ आरजे अंजू शुक्ला. प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे, और बहुत ही खूबसूरत आगाज़ है नितिन मुकेश साहब की गुड मॉर्निंग लखनऊ में. वक्त की कमी की वजह से हम बहुत सारी बातें इनके बारे में नहीं कर पाए थे, तो इन्हें हम बर्थडे विश करते हैं. आज इनका बर्थडे है. लेजेंडरी सिंगर मुकेश जी के सुपुत्र नितिन मुकेश जी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़. 1950 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था, तो उन्हीं की आवाज़ में ये ब्यूटीफुल ट्रैक आपके रेडियो सेट पर, फ्रॉम द फिल्म तेजाब, याद है ना? भूले तो नहीं.

0: 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे, और आज है शनिवार, कल रविवार, स्पेशल प्रोग्राम्स आते हैं आपके पास तक संडे को। तो हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में बता देते हैं, 12 से 1 के बीच में हर रविवार इस प्रोग्राम को आप सुनते हैं। कल का जो विषय है वो लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन से जुड़ी हुई जो समस्याएँ हैं उन पर केंद्रित रहेगा कल का हमारा प्रोग्राम। और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक्सपर्ट के तौर पर हमारे स्टूडियो में होंगे डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल, MBBS MD मेडिसिन KGMU लखनऊ। और आप सब सुनेंगे इस प्रोग्राम को, साथ ही साथ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप प्रश्न भी भेजेंगे, मुझे पता है, fmakashwani@gmail.com ये हमारी मेल आईडी है, इससे भी आप सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे फोन नंबर्स 0522 2238 852 या फिर 0522 2238 845 पर, ये इन नंबर्स के जरिए भी आप अपने प्रश्न डायरेक्ट डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस कल 12 से 1 के बीच में और सुबह 10 से 11 के बीच में एक विशेष मासिक कार्यक्रम पदचिन्ह आकाशवाणी के आप तक पहुंचेगा। और कल इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान होंगे श्री सुशील रॉबर्ट बैनर्जी, पूर्व उप महानिदेशक आकाशवाणी, और आपसे बातचीत करेंगी सुमोना पांडे जी। तो इस प्रोग्राम को भी सुनना ना भूलिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एक गोल्डन एरा देखा है बैनर्जी सर ने, और उनके साथ उनका सानिध्य हम सबको भी मिला है, ये हमारा सौभाग्य है। तो आकाशवाणी के विषय में, उनके सफर के विषय में एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम जरूर सुनिएगा 10 बजे। और अब वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पर। नितिन मुकेश जी की आवाज़ हमारे कानों तक पहुंच रही बैकग्राउंड में, लेकिन प्रोग्राम को वाइंड अप करना है तो कुछ मेल्स जो रह गए थे उन्हें शामिल करते हैं। नजीम रैन जी का भी मेल है दिल्ली से, कहते हैं इंसान अगर खुद को इंसान समझे तभी बेहतर इंसान बन सकता है। क्या बात कह दी, वाह, तो इंसानियत को जिंदा रखे अपने दिलों में। अमन नवाब जी का भी मेल आया है, गुड मॉर्निंग भेजा है इन्होंने, और संडीला से ये हमें सुन रही हैं, और इनका संदेश है कि प्लास्टिक का सही निपटारा और रिसाइकिलिंग, प्लास्टिक हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है लेकिन इसका गलत निपटारा हमारी धरती को बीमार कर रहा है। अपने घर में सूखा कचरा, प्लास्टिक कागज और गीला कचरा यानी सब्जियों के छिलके वगैरह जो होते हैं उन्हें अलग अलग डस्टबिन में रखें, और जब कचरा अलग होगा तो रिसाइकिल, तभी वो रिसाइकिल हो पाएगा। और हमारी एक छोटी सी आदत प्रकृति के लिए बड़ा वरदान बनेगी। प्लास्टिक बैन की बातें तो सब करते हैं लेकिन इसके सही इस्तेमाल और कचरे के निपटारे की बात कोई सीखना नहीं चाहता। इन्होंने कुछ नाम लिखे हैं, वकील अहमद मंसूरी भाई जो, अच्छा, जो आप हमें ईमेल में शामिल करते हैं उसका दिल से शुक्रिया भेजा है इन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया अमन। विजय सिंह दीपू जी का भी मेल आया है, कल देखा एक जानवर पानी पी रहा था, बाहर पानी रखा था, पीने में कम पड़ गए पानी और हमने फिर उसको भर दिया। अच्छा, बस ऐसे किया करिए। और ऐसे में उसने ये बता रहे हैं कि उसने 6 बाल्टी पानी पिया, सोचिए कितना प्यासा रहा होगा वो। तो बहुत अच्छा किया आपने। और बस इसी तरह अपने साथ साथ जो हमारे आसपास जीव जंतु हैं उनका भी हमें इस गर्मी में, इस चिलचिलाती गर्मी में ख्याल रखना है। ब्रजेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनेश कुमार जी का भी मेल है और इन्होंने कहा है कि अच्छा आज आप देखिए, इन्होंने जो बात कही ना, आज तो हमने मतलब फ़ोन लाइन्स नहीं स्वीकार नहीं की हैं चीज़ें, और फ़ोन लाइन्स कुछ डिस्टर्ब हैं इस प्रोग्राम में। मैंने कई बार कोशिश की, मुझे उधर से आवाज़ नहीं आ रही है, जो लोग फ़ोन मिला रहे हैं उनसे बात भी नहीं हो पा रही है, तो फ़ोन कॉल्स हम नहीं शामिल कर पाए हैं। और आपका मेल जल्दी से मैं कट शॉर्ट करती हूँ। आपने लिखा है कि सभी श्रोता भाइयों से निवेदन है कि सिर्फ अपने नाम के साथ ज़्यादा नाम ना लिखें। और आज का संदेश ये है कि कहीं कहीं देखा है कि पुरुष और महिलाएं आपस में फ़ोन पर बात करने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अगर साथ में कोई नन्हा बच्चा है, अरे ध्यान ही नहीं जाता है ना, तो बच्चे का हाथ छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करें, बच्चे ईश्वर का रूप है, उनका ख्याल रखिए, थोड़ी सी लापरवाही बहुत बड़ा हादसा बन सकती है। मुनेश कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका लखीमपुर खीरी से मेल आया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सुनने वालों का। और अब अंजू की ओर से आज बस इतना ही, अगले कुछ घंटे रहेंगी वो आवाज जिसका बहुत इंतजार रहता है आप सबका, मतलब क्या है ये गाना तो मैंने बजा दिया, मनोज कुमार साहब का, नितिन जी का बर्थडे है, लता जी की आवाज़ है, लेकिन ये जो आवाज़ है ये हमारे FM रेनबो की शान है।
1: अंजू जी, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है
0: और डॉन यहाँ FM स्टूडियो में बैठा है।
1: वाह।

0: आप सबके बीच होगा 12 बजे डॉन। लेकिन अभी आप नितिन मुकेश की बात कर रही हैं, मुझे याद आते हैं नितिन मुकेश के बाबा जोरावर चंद माथुर, हमें उनका एहसान मंद होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: पूछे क्यों,
1: उन्हें हम नमन करते हैं।
0: हाँ, उनका एहसान मंद
1: क्यों, क्यों बताइए।
0: उन्होंने मुकेश को जन्म दिया तभी तो नितिन मुकेश हमें मिले।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: सीरीज देखिए आप
1: जी, एक से बढ़कर एक।
0: बिल्कुल, वाकई।
1: तो बस इसी तरह एफएम रेनबो पर भी एक से बढ़कर एक सितारे हैं, जिसमें एक चमकता दमकता सितारा है विजय श्रीवास्तव, जो अब से थोड़ी देर में आपसे रूबरू होंगे। फिलहाल ये गाना आप तक पहुंच रहा है अंजू की ओर से। आज बस इतना ही, टेक केयर, नमस्कार, मुलाकात होगी इसी चैनल पर किसी और दिन जल्दी ही।

नमस्कार, 12 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की परिकल्पना को साकार कर रही है।

कहा, इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से पार्टी सभी कार्यकर्ताओं में उनके मूल्यों और आदर्शों को समाहित करने का प्रयास कर रही है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार भी उन्हीं आदर्शों पर अमल करते हुए ऐसी नीतियों को लागू कर रही है जिनका लाभ अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच सके। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। सुरक्षा बल 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा से पहले गहन गश्ती तलाशी अभियान चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हाई आई शुरू किया है। इसके तहत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। प्रोजेक्ट हॉक आई के अंतर्गत यात्रा मार्ग पर हवाई निगरानी के लिए 5 ड्रोन यूनिट तैयार की गई है। अमरोहा में उपजिलाधिकारी शैलेश कुमार दुबे के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने आगामी मानसून के मद्देनजर गंगा किनारे बसे संवेदनशील गांवों का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और मानसून से पहले सभी आवश्यक इंतजाम पूरे करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि प्रशासन हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने ग्रामीणों से मानसून के दौरान सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत तहसील प्रशासन को सूचित करने की अपील की है। एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राहत शिविरों की स्थिति, नावों की उपलब्धता और राशन दवाइयों के अग्रिम स्टॉक की व्यवस्था समय पर दुरुस्त कर ली जाए। लखनऊ कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में फायर सेफ्टी की सघन चेकिंग जारी है। इसी क्रम में अलीगढ़ नगर निगम ने पूरे शहर में 100 नए फायर हाइड्रेट पॉइंट्स लगाने का फैसला किया है। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रोजेक्ट के तहत सभी हाइड्रेट पॉइंट्स नगर निगम की मुख्य पानी की सप्लाई लाइन से जोड़े जाएंगे। जरूरत पड़ने पर दमकल के वाहन इनसे पाइप जोड़कर सीधे पानी ले सकेंगे, जिससे रिस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो चैनल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
3: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
2: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
3: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
2: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
3: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
2: fmrainbowhelpline@gmail.com।
3: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
6: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
7: हरे का नाम है सबसे पहले, हरे का नाम है सबसे प्यारा, कर लो प्रभु जब हरि के बंदे, संवर जाएगा जीवन सारा।
8: ओम नमः शिवाय।
7: सुंदर प्रभात के अमूल्य क्षण समर्पित करें ईश्वर के चरणों में।
9: वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ।
7: कार्यक्रम पुष्पांजलि में हर सुबह 6 बजे 100.7 FM।

0: रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

107.7 FM रेनबो चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, 12:06 का समय हो चुका है यहाँ पर और आज विजय हाजिर है आपके साथ शनिवार की इस दोपहर 12 बजे, यानी आज फैमिली फन का मौका है। और वैसे भी जो है फैमिली जब होती है साथ तो फन अपने आप ही हो जाता है, लेकिन जब फैमिली फन की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जाहिर सी बात है, गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थी और इन गर्मियों की छुट्टी में आपने अपनी फैमिली के साथ पूरा पूरा फन किया, चाहे वो किचन में हो, चाहे घूमने फिरने में हो, चाहे नाच गाना मस्ती हो, सब कुछ आपने किया। और ये हमें पता भी है, पता इसलिए क्योंकि आप लोगों का जो रिस्पॉन्स आता है उससे पता चल जाता है। लेकिन अभी कहते हैं कि स्कूल खुलने में थोड़ा समय है, बहुत से स्कूल 1 जुलाई को खुल रहे हैं, हालांकि एक आध खुल भी गए हैं और बहुत से 7 जुलाई के बाद खुलने वाले हैं। कहा जाता है कि मानसून भी जो है वो लगभग 30 जून तक आ ही जाएगा और लखनऊ में बारिश हो ही जाएगी, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है, जो ये 2-3 दिन हमारे बचे हैं, जो स्कूल में जो टीचिंग जॉब में है जो महिलाएं या जो पुरुष हैं उनके स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो यानी कि उनके मन में ये बात आने लगी है कि यार अब बस 2-3-4 दिन का समय और बचा है और उसके बाद फिर से वही सुबह उठकर जाना। और बच्चों का भी यही है, ओ माय गॉड, सुबह से फिर वही रूटीन हो जाएगा, होमवर्क करो, क्लास वर्क करो, ये करो, वो करो, दिस एंड दैट, पता नहीं क्या क्या है। तो क्यों ना 3-4 दिन जो है वो कुछ और अच्छा सा करके यादगार बनाया जाए। तो भाई, आप अपनी फैमिली के साथ क्या प्लान कर रहे हैं इन 3-4 दिनों में स्कूल खुलने से पहले? क्या करना चाह रहे हैं आप, किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं, यह आपको मुझे बताना है ईमेल के जरिए, क्योंकि मेरी आपकी कनेक्टिविटी बनेगी तभी मजा आएगा। और मेरी आपकी कनेक्टिविटी के साथ अगर गानों का सिलसिला भी जारी रहेगा तो और भी खूबसूरत हो जाएगा कुछ इस तरह से।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना। टोलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: जी हाँ, 12:14 का समय हो चुका है, फैमिली फन प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पर फैमिली की बात हो रही है यहाँ पर। और मैंने पूछा है आपसे कि फैमिली फन में जो है, जो अब बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं जुलाई में, वैसे भी जो है आपका रूटीन चेंज होने वाला है, और बहुत सी जो है वो फीमेल या मेल टीचर हैं उनका भी रूटीन चेंज होने वाला है, तो ये जो 2-4-5 दिन जो बचे हैं उसमें आपने इन दिनों को फैमिली के साथ फन करने का, यादगार बनाने के लिए क्या कुछ प्लान कर रखा है मुझे बताइए। और अगर नहीं किया तो अभी प्लान कर लीजिए, क्योंकि मौका आज शनिवार का है और आज रविवार का है। खाने पीने की चीज़ों से कर लीजिए, घूमना, वैसे घूमने में तो धूप बहुत ज़्यादा है इस समय, दिन में तो घूमना बेकार है, लेकिन यह है कि शाम को घूम सकते हैं आप। और इसके अलावा अगर किसी हिल स्टेशन आप आए हैं होकर, वहाँ की जो यादें हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं, उनको आप बांट सकते हैं, फैमिली के साथ बैठ के बातें कर सकते हैं। अच्छा, किसी हिल स्टेशन अगर आप गए हैं मुझे इन 2 महीनों में, तो मुझको ज़रूर बताइए कि वहाँ पे आपने क्या देखा और क्या खास आपको लगा, मुझको शेयर कीजिए। फैमिली फन का ये भी एक मुद्दा होता है, ये भी एक पॉइंट है कि जहाँ आप घूम के आए, यादें होती ना, वो यादें भी फैमिली फन का एक बड़ा कारण होती है। और इसी वजह से जो है हम लोग अपने फैमिली के साथ फ़न कर पाते हैं। रिश्ते जो होते हैं ना, वो बहुत मतलब बड़े कीमती होते हैं। और इसी यहाँ पर ब्रजेश सिंह दीपू इटौवा कैसरगंज बहराइच से इनका जो है मेल आ गया है मेरे पास, ब्रजेश सिंह जी का। गुड आफ्टरनून मिमिक्री मैन विजय सर जी, गुड आफ्टरनून सर जी, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मेरी शिकायत है, आई आप कहाँ चले जाते हैं? अरे हाँ, इतनी लंबी छुट्टी लेकर सर, एक दिन बीच में आए थे शाम के कार्यक्रम में, खूबसूरत कार्यक्रम और खूबसूरत गीत सुनाए, उसके बाद फिर चले गए। नहीं सर, मैं आ गया हूँ और अब जो है वो उम्मीद है कि बस बहुत जल्द जो है वो जल्दी आपसे मुलाकात होगी, ये आपकी शिकायत जो है वो दूर हो जाएगी और अब दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा, कान पकड़ता हूँ, बिल्कुल नहीं दूंगा। और बहुत अच्छा लगा आपने प्रोग्राम में मेल किया ब्रजेश सिंह जी। और बस मैंने ये पूछा है कि फैमिली फ़न की बात हो रही है, तो ब्रजेश जी ये भी बताइए कि अगर आप इधर कहीं घूमने गए हैं या मन में ख्याल ही आपके आया कि घूमने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या चीज़ वहाँ की अच्छी लगती है आपको, या 2-4 दिन में आप फैमिली के साथ कुछ फ़न करने वाले हैं, टाइम बिताने वाले हैं, तो उसको भी शेयर कीजिए, हो सकता है मुझे भी मौका मिल जाए अपनी फैमिली को साथ ले जाने का, ठीक है ना। तो चलिए इसी बात पर एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुनवाता हूँ, फिर लौट कर आता हूँ।

बिल्कुल बिल्कुल, दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान दे दूं। फैमिली का कुछ ऐसा ही होता है, फैमिली के जो सदस्य होते हैं हम दिल से आत्मा से इतना जुड़े होते हैं कि उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए जो है घूमने फिरने की बात तो बहुत छोटी सी है। यहाँ पर मेरे पास शैलेश कुमार जी का मेल आया है, कह रहे हैं टाइगर पूर्णिमा की ओर से, विजय सर को नमस्कार, क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार आपको भी सर। शिकायत तो हमारी भी है आपसे कि आप जल्दी जल्दी नहीं आते हो सर, मैं जानता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आपसे भी। क्या करूँ, अपनी फ़ोटो जो है रेडियो पे डाल दूँ कान पकड़े हुए माफ़ी चाहते हुए, और 22 जून को अपने प्रिय दोस्त के घर घूम कर आई हूँ, अच्छा पीहू के घर घूम के आई हैं, और कहीं अगर मुझे बाहर जाना पड़ेगा तो मैं अपनी फैमिली के साथ उत्तराखंड जाने का प्लान ज़रूर बनाऊंगी। अभी उत्तराखंड जो है, वैसे भी नैनीताल पैक हो गया था तो इसलिए जो है बहुत से लोगों ने जो है वो आइडिया ड्रॉप कर दिया, लेकिन ये है कि इनका ये कहना है कि फैमिली के साथ अगर घूमने का मौका मिलेगा तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, उस टाइम को मैं स्पेंड करूंगी और उसे यादगार बनाऊंगी।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: करियर पर है ध्यान,
4: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
3: पॉजिटिव है फैशन,
4: क्रिएटिव है पैशन,
3: टेक्नोलॉजी में रुचि,
4: बने पर्सनालिटी ऊंची,
3: फॉलो करें ट्रेंड्स,
4: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
3: ओनली ऑन यूथ वेव।
4: यूथ की बात यूथ के साथ,
3: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
4: धड़कन लखनऊ की।
5: Keep listening to 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

100.7 FM रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं विजय के साथ आज फैमिली फन, जिसमें बात हो रही है फैमिली के साथ फन की। और ब्रजेश सिंह जी ने मुझे मेल करा है, इटावा कैसरगंज बहराई से। अच्छा, इन्होंने अब जो है टॉपिक पे मेल किया है। सर, मेरा प्लान है नेपाल जाने का, कोशिश में लगा हुआ हूँ। खेत में गन्ने की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस समय सिंचाई बहुत करनी पड़ती है। बात तो सही है, हम अपने बहराइच के महाराजा सुहेल देव चितौरा झील गए थे घूमने, मजा आ गया। अच्छा, क्या खास बात है उस झील में, हमको बताइए। आप लिख के ही बता दीजिए मेल पे, दो लाइन में, ये जरा हमें पता चलेगा, हम कभी गए नहीं। तो महाराजा सुहेल देव चितौरा में क्या ऐसा खास है, और अगर घूमने जाऊंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। अरे जरूर बताइए साहब, क्या बात है। पंकज उदास की आवाज में ना कचरे की धार से शुरुआत कार्यक्रम की, 4 घंटे का भरपूर मनोरंजन से कार्यक्रम भर गया है। मेरी उम्मीद है कि सभी सॉन्ग की तारीफ कैसे करूं, बस एक एक सॉन्ग चुन चुन कर बजा रहे हैं आप, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू ब्रजेश जी। और ये सुहेल देव चितौरा झील की खास बात क्या, मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं किसी किले की या झील की या किसी पुराने मॉन्यूमेंट्स की जानकारी हासिल करने में। इसके अलावा नाजिम रेन जी, गाना बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू नाजिम जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय दिया आपने मुझे। अहमद नवाब जी नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे बड़े दिनों बाद आपसे मुखातिब हुआ हूँ भाई, क्या बात है। संडीला से इन्होंने किया है, हेलो डियर विजय सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ अहमद, बहुत अच्छा हूँ। बहुत दिनों बाद आपको दोपहर में सुन रही हूँ, 12 से 4 तक मैं खूब हंसने वाली हूँ। बिल्कुल, बस मैं आपको 12 से 4 तक हंसा पाऊँ ये खुदा से दुआ कर रहा हूँ। विजय सर आए हैं क्योंकि 90s के बेहतरीन गाने साथ लाए हैं। विजय दीनानाथ सिंह चौहान आए हैं, मेरे दादाजी का कॉलेज खुलने वाला है। अरे अच्छा, मैं तो कहीं घूमने नहीं गई, रोड तक भी नहीं गई, बहुत गर्मी है। हाँ ये बात तो सही है, अगर मुझे कोई घुमाने ले जाए अपने पैसों से तो लखनऊ का कोना कोना घूमना चाहूंगी। अरे आइए आकाशवाणी आपको पूरा कोना कोना घुमाएगा, एक पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा आप। अरे आइए तो सही लखनऊ में, बड़ा दिल होता है हमारे लखनऊ वालों का भी, और संडीला से ज्यादा दूर भी नहीं है। बस एक मेल कर दीजिए कि आप आ रही हैं, पूरा आकाशवाणी परिवार खड़ा हो जाएगा जी, और क्या। मैनुद्दीन साहब का मेल आया है, मैनुद्दीन कोटरी खैराबाद सीतापुर से। अरे वाह, फोटो वोटो सब भेजी है इन्होंने मेल पे, क्या बात है। पेड़ों की छांव में दीदार कर रहे हैं किसी का। और ये सुन रहे, पहले तो प्यार भरा नमस्कार विजय सर, हमारे खैराबाद में धमाकेदार मेला चल रहा है। हाँ ये बात तो है, अभी अंजू जी के प्रोग्राम में भी आपने बात कही थी, और वो मेला, अरे मेले की फोटो वोटो भेजिए जरा, देखें हम भी क्या खास बात है मेले की। एम के राज साहब ने मुनेश कुमार राज जी जिला लखीमपुर खीरी से, देर से ही सही मगर आए तो, क्या रील बनाने गए थे भाई? क्योंकि हमने आपके YouTube पर देखी है सर, क्या बात है। बहुत कम बनाता हूँ मैं वैसे, बहुत ही कम, मैं शौक नहीं मुझे, लेकिन यह है कि बस शुभ दोपहरिया विजय कुमार श्रीवास्तव जी को। थैंक यू सर, थैंक यू, हर कार्यक्रम बेमिसाल है, सुनते सुनते हो गए कई साल। फैमिली फन में हमारा ये कहना है कि हमारे बच्चे छुट्टियों में ननिहाल गए थे, अब लौट आए हैं, आज स्कूल गए हैं, आपका भाई मुनेश कुमार राज, क्या बात है। थैंक यू सर मुनेश जी, बहुत बहुत समय दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। वकील अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, फैमिली फन बहुत अच्छा लगता है। सलीमपुर कौन मामा के यहाँ गए थे? अरे वाह क्या बात है। लखीमपुर खीरी भतीजा बहुत घूम लाया है। अच्छा, मोहम्मद शाबान से अभी कहकर आए हैं, स्कूल का पूरा काम कर ले, छुट्टी खत्म होने वाली है, क्या बात है। बच्चों से कह के आए, और गाने अच्छे बज रहे हैं इस समय, आम के बाग में है, हवा बहुत मस्त चल रही है, घर गर्मी बहुत लगती है, पंखा गर्म हवा देता है, लेकिन बाग में जो है वो ठंडी हवा मिलती है। कुछ आप चिंता मत करो, मुझे उम्मीद है 3-4 दिन में ये हवा जो गर्म है ये ठंडी हो जाएगी अपने आप, क्योंकि अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो 30 और 1 तारीख को सीधे 33 डिग्री 32 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है अभी तो नेट पे, और मुझे लगता है कि झमाझम बारिश होगी तभी इतना जो है ये टेम्परेचर आएगा। ठीक है, टेम्परेचर जब आएगा तब आएगा, अभी गाने से थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं।

0: जी हाँ, तेरा नाम लिया तुझे याद किया। फैमिली ऐसी ही होती है जिसका बार बार नाम भी लिया जाता है और उसे बार बार याद भी किया जाता है, चाहे आकाशवाणी की फैमिली हो, आपकी अपनी खुद की फैमिली हो। बाबू अंसारी जी का मेल आ गया। नमस्ते विजय सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं सर। देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से इन्होंने मेल किया। प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, थैंक यू सर। वैसे तो 12 बजे वाला प्रोग्राम कभी नहीं सुनता, ओ मगर आज आप आए हैं तो जरूर सुना जाएगा। क्या बात है, थैंक यू थैंक यू बाबू भाई, इतना समय देने के लिए, हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत कुमार साहब ने भी एक पिक्चर भी भेजी मेल में, क्या बात है। हैंड पाइप उसके चारों तरफ जो है महिलाएं बैठी हैं और इतना अच्छा गांव का माहौल है, क्या बात है, बहुत सुंदर। अजीत यादव, जिला उन्नाव, तहसील हसनगंज के रसूलपुर बकिया गांव से हूं, बहुत ही गरीब परिवार से। कोई बात नहीं भाई, गरीब अमीर कुछ नहीं होता है, दिल अमीर होना चाहिए, दिल में जगह होनी चाहिए। 25 वर्ष की उम्र है और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जिससे मेरी जिंदगी बदल गई। अच्छा, एक इनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट की शुरुआत 2025 से हुई है। हिंदुस्तान अखबार से पत्रिका करता हूँ। अच्छा, ठीक है। और इन्होंने एक दुकान इनको मिल गई 2025 में लॉटरी से, और उससे मेहनत से इन्होंने अपना घर बनवा लिया है, शादी के बंधन में बंध गए हैं। और 2025 साल जो है, इनके कहने का मतलब है, बहुत खास रहा है, उसने इनकी ज़िंदगी पलट दिया। वाकई ईश्वर सभी के सामने भरी हुई थाली रखता है और जो उस भरी हुई थाली को स्वीकार कर लेता है वो ज़िंदगी बना लेता है, और जो उसे ठुकरा देता है वो संघर्ष में अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बदल देता है। और इसके अलावा आदित्य श्रीवास्तव जी का मेल आया है। इस समय मैं आपको ऋषिकेश से सुन रहा हूं, क्या बात है, मौसम कैसा है भाई वहां का? मुझे उम्मीद है लखनऊ से तो बहुत अच्छा होगा। और ऋषिकेश में बहुत गर्मी है आई, लेकिन गंगा जी में नहाए और सारी गर्मी भाग जाती है, क्या बात है। ये बात तो माँ गंगा की विशाल हृदय है उनका, जो उनके पानी में डुबकी लगाता है उसके पाप भी धुल जाते हैं और हृदय भी द्रवित हो जाता है। लखनऊ का रहने वाला हूँ, डेली FM सुनता हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि मॉर्निंग में पुष्पांजलि प्रोग्राम से लास्ट में आप हर हर महादेव बोलते हैं तो पूरा दिन बहुत अच्छा हो जाता है, क्या बात है। ये आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, यय्यागंज गुरुद्वारा लखनऊ 3, इन्होंने यहाँ से मेल किया है और इस समय ऋषिकेश में है, क्या बात है। बहुत संभाल के डुबकी उबकी लगाइएगा, नहाइए धोइएगा भाई, और गंगा का प्रवाह बहुत तेज होता है, बहुत करंट होता है पानी में, तो संभले रहिए। फिलहाल 12:49 का समय, एक लड़की मुझे अनजानी सी सामने दिख रही है। एक लड़की थी अनजानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी।
1: ये तो किसी और फिल्म का डायलॉग है। हाँ, यहाँ तो गाना कुछ कुछ होता है का लगा है भाई।

12:54 का वक्त हो गया है, अभी तो जाने का समय आया, नहीं जाने का समय नहीं आया, अभी तो वाइंड अप करने का समय आया। चलिए वाइंड अप तो करूंगा, लेकिन अशोक कुमार जी का मेल आ गया है। अशोक राज जी कहते गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं? बहुत अच्छा हूं सर, आप कैसे हैं? पता है रायपुर उदारा मितौली लखीमपुर खीरी सॉन्ग अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया सर, बस आप ही के लिए सॉन्ग है सब, ये सब आपकी ही पसंद है। इसके अलावा ये कहते हैं नमस्कार दोस्तों, गर्मी की दोपहर है, सूरज आग बरसा रहा है और अच्छा एक छोटा सा बच्चा घर के बाहर निकला तो उसने देखा चिड़िया प्यास से इधर उधर भटक रही है। बच्चे ने तुरंत एक कटोरे में पानी भर कर बाहर रख दिया। थोड़ी देर में चिड़िया आई, पानी पिया और चहचहाने लगी। उसे देखकर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या बात है जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और ये कहते हैं कि भाई अच्छा कार्यक्रम को प्रसारण की भी इन्होंने जो है मांग की है। ये कहते हैं कि भाई नागेश कुमार, मैं चाहता हूँ आकाशवाणी लखनऊ पर किसानों आम लोगों के लिए पौधों की देखभाल, खेती की नई तकनीक, मौसम के अनुसार फसल प्रबंधन, खाद उर्वरक के सही उपयोग, फल सब्जियों की खेती पे अधिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, करे जाते हैं। और हमारा तो बागवानी जो है एफएम रेनबो पे गुड मॉर्निंग लखनऊ में एक सेगमेंट ही पूरा होता है, उसमें हम बताते हैं और इसके अलावा लगातार जो है वो कार्यक्रम पेश किए जाते हैं। फिलहाल चलिए अब इस प्रोग्राम को ये वाइंड अप करता हूं। अगले प्रोग्राम होटो पे तेरी बात पर भी आपसे मिलता हूं। कुछ बच्चों से रिलेटेड टॉपिक जो है वो मेरे दिमाग में चल रहा है 2-3 दिनों से, आज वही आपसे शेयर करने वाला हूं मैं। फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाता हूं, फिर लौट कर आता हूं।

नमस्कार। दोपहर के 1 बजे सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज गौतम बुद्ध नगर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में स्थापित होने वाली 2 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास करेंगे। केंद्र सरकार के सहयोग से विकसित हो रहा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 206 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है, जिसके विकास पर लगभग 417 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 144 करोड़ रुपये का योगदान दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी करेंगे। ये नया मुख्यालय लगभग 390 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री, सांसद, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य औषधि सुधार, संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और प्रताप राव जाधव भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का प्राथमिक विद्यालयों के साथ को लोकेशन और वैज्ञानिक मैपिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं का एकीकृत लाभ सुनिश्चित होने से बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता, बच्चों के सीखने के परिणामों को नई मजबूती मिलेगी। इस अभियान का उद्देश्य विद्यालय पूर्व तैयारी की सुदृढ़ बनाना, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी एकीकरण सुनिश्चित करना है।

लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में फायर सेफ्टी की सघन चेकिंग जारी है। इसी क्रम में अलीगढ़ नगर निगम ने पूरे शहर में 100 नए फायर हाइड्रेट्स पॉइंट्स लगाने का फैसला किया है। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रोजेक्ट के तहत सभी हाइड्रेट पॉइंट्स नगर निगम के मुख्य पानी की सप्लाई लाइन से जुड़ जाएंगे। जरूरत पड़ने पर दमकल के वाहन इनसे पाइप जोड़कर सीधे पानी ले सकेंगे और जिससे रिस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो चैनल, जिसमें एंटरटेनमेंट का सिलसिला लगातार जारी है और प्रोग्राम शुरू हो चुका है होठों पे तेरी बात।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की।

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से,
1: या उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे?
0: तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में
1: हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में,
0: जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट।
1: तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर
0: fmrainbowhelpline@gmail.com।
1: याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
3: धड़कन लखनऊ की।
4: सात FM रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं इस समय विजय को, होंठों पे तेरी बात प्रोग्राम यहां पर चल रहा है। और होंठों पे तेरी बात में, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके होंठों पे जो बात रहती है वही मेरे होंठों पे रहती है, तेरे मेरे होंठों पे सजे सारे गीत मिथुआ, गाना भी इस पे बना है, लेकिन यहाँ पर बात थोड़ा सा दूसरी है, मैटर ज़रा दूसरा है, थोड़ा सा जो है टॉपिक यहाँ पर हमारे आपके बच्चों से रिलेटेड है। अक्सर हमने देखा आजकल के बच्चे जो होते हैं, अगर उनसे किसी काम के लिए कह दो या उन्हें किसी काम को करने के लिए ये बता दो कि बेटा इस काम को अगर ऐसे कर लो तो ज़्यादा सही होगा, तो वो तुरंत जवाब देते हैं मुझे मालूम है, है ना, आप परेशान ना होइए, मुझे सब आता है, ठीक है। और अगर उनसे कह दो कि नहीं बेटा तुम ये नहीं कर पाओगे, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करो, तो कहीं आपको मुझसे ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, है ना, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, चाहे कंप्यूटर की बात हो, चाहे किसी काम को करने की बात हो, कोई फॉर्म भी भरना हो, चाहे लखनऊ विश्वविद्यालय किसी का भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं कर लूँगा, बिल्कुल परेशान ना होइए। मैं कहूँगा भाई संभाल के उसको भरो, ऐसा ना हो कि गलत हो जाए तो रिजेक्ट हो जाए, मुझे आपसे ज़्यादा आता है, आप परेशान ना होइए। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है बच्चों का, ये क्या बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है? हमारे आपके सभी के घरों में यही कारण हो रहा है, यही बात हो रही है, मोबाइल देख के दिन भर मोबाइल में हर चीज़ गूगल पे करना, हेलो गूगल, हेलो गूगल, हेलो गूगल, है ना, ये सारी चीज़ें जो है जो बच्चों के अंदर ये जो टेंडेंसी डेवलप हो गई, क्या ये उनके भविष्य के लिए बेहतर है? ये होंठों पे तेरी बात पर मैं आपसे जानना चाहूँगा। मेल आपके लिए सामने है, आपको मेल करना है और मेल से बताइए, ताकि मुझे भी कोई रास्ता जो है वो मिल सके, क्योंकि अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो जो है

0: मुझे लगता है आने वाले समय में ये बहुत एक बड़ा गंभीर विषय बन जाएगा इसके लिए, और बहुत से पेरेंट्स जो है आज जो बेचारे इस समय की प्रताड़ना झेल रहे हैं वो भी मुझे लगता है कि ये दिक्कतें झेलेंगे। फिलहाल इसी विषय पर आज एक घंटे बात होगी। अभी एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं गाने के साथ, फिर बात करते हैं।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव मीडियम वेव 366.3।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में वजीर आला ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आज़ाद भारत में हुकूमतों से अपील की थी कि इक्तसादी तरक्की के लिए सबसे नीचे पायदान पर बैठे शख्स के मफादात को जहन में रखकर पॉलिसियाँ बनाई जानी चाहिए।
2: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नयन का जो आधार है और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रखकर के बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य आदर्श संस्कार समाहित हो सके इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया।
1: अयोध्या में श्रीराम मंदिर अतिया और चढ़ावा के मामले में मुबैना बेजाबतगियों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार तमाम 8 मुलजमीन को कल स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने तमाम मुलजमीन को 29 जून तक जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। गिरफ्तार मुलजमीन में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प

मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर तश्कील दी गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की सिफारिश के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक रुकन कृष्ण मोहन की तरफ से श्री राम मंदिर में अतियात और चढ़ावे के मुबैना गबन के सिलसिले में FIR दर्ज कराई गई थी। मुलजमीन की गिरफ्तारी के बाद प्रोसिक्यूशन अफसर KC वर्मा ने बताया कि सुभाष को छोड़कर कुल 79,85,000 रुपये मुलजमीन से बरामद हुए हैं। मुलजमीन को 29 जून को इंसदाद बदउनवानी की अदालत में पेश किया जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने FIR के इंदराज और श्रीराम मंदिर के अतिया केस में 8 मुलजमीन की गिरफ्तारी के बाद कहा कि अकीदे के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि SIT की रिपोर्ट मौसूल होते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल देवरिया में 465 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत के 106 तरक्याती प्रोजेक्टों के अफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब के दौरान आवाम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने देवरिया में तरक्की पर इजहार ख्याल करते हुए कहा

0: सिलसिले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मुलजमीन की गिरफ्तारी के बाद प्रोसिक्यूशन अफसर केसी वर्मा ने बताया कि सुभाष को छोड़कर कुल 79,85,000 रुपए मुलजमीन से बरामद हुए हैं। मुलजमीन को 29 जून को इंसदादे बदउनवानी की अदालत में पेश किया जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एफआईआर के इंदराज और श्रीराम मंदिर के अतिया केस में 8 मुलजमीन की गिरफ्तारी के बाद कहा कि अकीदे के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट मौसूल होते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल देवरिया में 465 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत के 106 तरक्याती प्रोजेक्टों के अफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब के दौरान आवाम से खिताब करते हुए वजीर आला ने देवरिया में तरक्की पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रियासत के नौजवान जो पहले मुलाजमतों के लिए हिजरत करते थे अब अपनी सलाहियतों और तवानाई को अपने इलाके में दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में महफूज माहौल की वजह से सरमायाकारी आ रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में एक प्राइवेट एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर सर्विस आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को मुल्क में नाफिज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में 120 मिलियन से ज़्यादा लोग मुफ्त सेहत की खिदमत हासिल कर रहे हैं।
1: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
0: तिब्बी और सेहत के शोबों में मौजूदा हुकूमत की तरक्की का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज बना रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासत में पंचायत इंतखाबात में ताखीर और प्रधानों का मुद्दतकार बढ़ाने वाले हुक्म पर नाराज़गी जाहिर करते हुए रियासती हुकूमत को तफसीली हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि पंचायतों का मुद्दतकार 5 बरस के लिए होता है और किसी भी हाल में 5 साल ख़त्म होने से पहले आइंदा इंतखाबात हो जाने चाहिए। यह तबसरा जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की रिट पर समाप्त करते हुए किया। रिट में रियासती हुकूमत के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन अहकामात को चैलेंज किया गया है जिसके तहत उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट 1947 की दफ़ा 12(3)(a) का हवाला देकर इंतखाबात टाल दिए गए और प्रधानों को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम जारी रखने की इजाज़त दी गई। रियासत में शदीद गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून कल रात से मशरिक़ी उत्तर प्रदेश के कई अज़ला में दाखिल हो जाएगा। इसके बाद 30 जून से 3 से 4 दिनों तक रियासत भर में गरज चमक के साथ बड़े पैमाने पर बारिश मुतवक्के है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें ख़त्म हुईं।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
3: धड़कन लखनऊ की।

अच्छा आजकल जो है किसी भी बात को मनवाने के लिए जो है पूरा एक माहौल बनाना पड़ जाता है। अब सोचिए कि इन गानों के जरिए मुझको भी माहौल बनाना पड़ रहा है कि कम से कम बादलों को जो है वो थोड़ा रहम आ जाए और बरस जाए हमारे लखनऊ के ऊपर या यूपी के ऊपर। तो इस तरह के गाने बजा बजा के उनको, पहले क्या होता था पेड़ जो है आकर्षण उनका करते थे, लेकिन अभी गानों से करना पड़ रहा है, क्या बताएं। खैर फिलहाल होटो पे तेरी बात पर विजय आज आपके साथ है और मेरे साथ बहुत सारे मेल भी आ गए हैं। सतीश अनीचा जी का मेल आया है। नमस्कार विजय भाई, भाई नमस्कार, खूबसूरत प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, थैंक यू। आजकल के बच्चे अधिकतर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं जिससे अपने परिवार से औपचारिकता ही वो निभा रहे हैं। माता पिता का तजुर्बा उनको रास नहीं आता है, ताज़ा अपडेट जो भी देखते हैं उस पर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। बच्चों को समझना चाहिए कि माता पिता का मशवरा कभी गलत नहीं होता, उनकी ना सलाह मानना आपके लिए कभी गलत सिद्ध भी हो सकता है, अक्सर गलत ही सिद्ध होता है। परमात्मा सभी बच्चों को सद्बुद्धि दे और सही दिशा में कदम रखे, यही प्रार्थना है इनकी। सतीश जी बिल्कुल सही कहा।

और ऐसा मेरा भी कुछ मानना है। शकील अहमद भाई ये कहते हैं गुड आफ्टरनून विजय सर, आज का सब्जेक्ट सुनकर वाकई इस गर्मी में दिमाग और गर्म हो गया, क्या बात है। तो ठंडा कर लीजिए, मैं गाने वैसे ही बजा रहा हूँ ठंडे ठंडे। वैसे आज के इस मोबाइल युग में बच्चों को अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस होना ठीक नहीं है। पेरेंट्स के एक्सपीरियंस को जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर पेरेंट्स कोई बात बच्चों से कह रहे हैं तो उनके फायदे के लिए कहते हैं, मगर बाप की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। माँ कसम, बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं तो कान के नीचे बजा देना चाहिए। विकास जी का मेल आया है होटो पर तेरी बात पर। हेलो सर, नमस्कार, विकास गांव सरी तहसील फुर सफीपुर जिला उन्नाव से आपका कार्यक्रम सुन रहा हूं। अच्छा, आपको मैं कार्यक्रम सुगंध माटी में सुनना चाहता हूं। प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब झकास रहती है, क्या बात कर रहे भैया, बिल्कुल सुगंध माटी में बहुत जल्दी आई हम। हाँ, चौहार पास, बिल्कुल चिंता नहीं करो। इसके अलावा अंजू जी का मेल आया है। हाय सर, वेरी गुड आफ्टरनून, आई एम लाइकिंग योर सॉन्ग सिलेक्शन, वांट्स टू ब्रिंग सॉन्ग्स फ्रॉम 90s एंड 2000s जरा, एंड हैड अ रिक्वेस्ट दैट व्हेनेवर एनी होस्ट यू ऑर्जे टेल फोन नंबर इन देयर प्रोग्राम फॉर द पब्लिक टू कॉल फॉर सॉन्ग रिक्वेस्ट एंड डॉक्टर कंसल्टेशन प्रोग्राम, देन प्लीज स्पीक द फोन नंबर इन इंग्लिश, ओके, ऑल्सो अलॉन्ग साइड हिंदी एंड रिपीट इन मेनी टाइम्स एंड लिटिल स्लो दैट एनी वन कैन डायल ईजली। बिल्कुल अंजू जी, आपका सजेशन मैंने सुन लिया है और ऐसा ही होगा, बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली नंबर बोले जाएंगे और कोशिश होगी कि आपकी बात जो है वो मानी जाए। और गूगल इज गुड एंड बैड फॉर किड्स एंड एडल्ट आल्सो, बट बच्चों का सवाल है तो भाई पहले के पेरेंट्स अपने बच्चों को डंडे की नोक पे रखते थे और वो आज तक आगे भी सीधे रहेंगे, और वो बच्चे आज जो मिलेनियल खेलते हैं आप और हम, वो अपने बच्चों को डंडे की नोक पे नहीं जबकि पलकों की छांव में रखते हैं, जिस कारण बच्चों में डिसिप्लिन और आदर सम्मान सिंपैथी बहुत कुछ मिसिंग है, जो बच्चों को वो भी आज के प्यार के साथ साथ डंडे की कुटाई भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वो सीधे लाइन पर रहेंगे, वरना राजा बेटा पापा की परी और माँ के मगरमच्छ किसी काम के नहीं रह पाएंगे, ना अपने लिए ना अपनी फैमिली के लिए ना पेरेंट्स के लिए। उनको खुद के खुद से सीखने दें, उनके ऊपर नजर भी रखें ताकि उनको फील हो कि वो अंडर सर्विलांस हैं, उनमें थोड़ा डर होगा जिससे वो अपनी हद में और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही से समझेंगे, कैसे कहां किससे क्या और कैसे बिहेव करना है। क्या बात है, इतनी गहराई वाली बात आपने इस मेल में पढ़ी है, मजा आ गया, मतलब लगा मुझे कि एक घंटा इस मेल में सार्थक हो गया मेरा, जो आपने कही बिल्कुल सही बात कही है। और इसके अलावा गीता सेठ जी ने बारिश का इंतजार गानों से फुहार आ जाए, गीता जी ने कहा अरुण आनंद साहब ने क्या लिखा है, कुछ लिखा नहीं, बना के भेजा है फूल, क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू। विजय सिंह कहते हैं, अच्छा इन्होंने जो है जो पिछले उसमें जो है मैंने सुहेल देव वाला जो झील थी जहां ये घूमने गए थे, इसको जो है इन्होंने लिख दिया, अभी पढ़ता हूँ विजय जी, इस आपकी बात को भी पढ़ता हूँ। और अच्छा, भैया मोनू सेठ ने कहा नमस्कार भैया, सुगंध माटी में आपको देखना चाहते हैं, क्या बात है, चलिए जरूर हम आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक गाना सुनेंगे, उसके बाद लौट कर आते हैं, फिर और मेल पढ़ते हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: करियर पर है ध्यान,
5: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
4: पॉजिटिव है फैशन,
5: क्रिएटिव है पैशन,
4: टेक्नोलॉजी में रुचि,
5: बने पर्सनालिटी ऊंची,
4: फॉलो करें ट्रेंड्स,
5: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
4: ओनली ऑन यूथ वेव,
5: यूथ की बात यूथ के साथ,
4: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
5: धड़कन लखनऊ की।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं समय होटो पे तेरी बात, आज विजय के साथ। और बच्चों के बारे में आज मैंने बात पूछी, जो बच्चों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, मैं कर लूंगा ना, मुझे आपसे ज्यादा आता है ना, अरे मैं कर लूंगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं ना, आप तो खामखा टेंशन ले रहे हैं। जो इस तरह की बातें होती ना कि माँ बाप जो है बच्चों को कुछ समझा रहे हैं वो समझते नहीं, उनको लगता है कि गूगल पे या सब पे देख के उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है, ये चीज़, ये ओवर कॉन्फिडेंस बच्चों के लिए फायदेमंद है या गलत, ये आज मैंने आपसे पूछा है। और

और फिलहाल ब्रजेश सिंह भाई ने बड़ी मेहनत की है, इनका मेल पढ़ लेते हैं। महाराजा सुहेलदेव 11वीं सदी के वीरता को दर्शाते हैं और महमूद गजनवी विदेशी लुटेरा था और उसका एक भांजा था सैयद मसूद आलम। 1034 युद्ध में परास्त महाराजा सुहेलदेव ने गोरेला फौज के साथ सैयद मसूद को युद्ध में परास्त किया था। महाराजा सुहेलदेव की स्मारक स्थल यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर ये अभी गए थे घूमने, और चितौरा झील में उसको परास्त किया गया था। अष्ट धातु की मूर्ति महाराजा सुहेलदेव की चितौरा झील के किनारे बनी है, उनकी वीरता को दर्शाती है और इसके लिए घाट का निर्माण भी कराया गया है संगमरमर के पत्थर से। क्या बात है, यह ऐतिहासिक जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई विजय जी, बहुत मेहनत की आपने। और एम के राज जी, मुनेश कुमार राज जी का मेल आया है लखीमपुर खीरी से। शुभ दोपहर विजय सर जी, क्या बात है, और होंठों पे तेरी बात बहुत अच्छा है। I don't like the growing curve confidence in children, but something can be done about it. For example, do not give mobile phones to children at all and ask them such questions that they cannot answer. Then tell them that you could not answer the question. अच्छा सार आपका ये मेल का कि ये जो मोबाइल है यही सबकी गड़बड़ की जड़ है, मोबाइल में इस तरह से उनका दिमाग लगा रहता है, माँ बाप जो है वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं। कई बार तो मोबाइल में वो इतना लग जाते हैं कि दूसरे की बात भी नहीं सुनते, उनको पुकारते रहो ये भी नहीं उनको सुनाई देता। कुल मिलाकर ये मोबाइल ही गड़बड़ की जड़ है जिसकी वजह से ये गड़बड़ी जो है वो पैदा हो रही है। रामेश्वर साहब कहते हैं होटो पे तेरी बात कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विजय भाई को सप्रेम नमस्कार, प्रोग्राम बराबर सुनते हैं, क्या लाजवाब प्रस्तुति कर रहे हैं और बहुत बढ़िया है। ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया उमाकांत कठेरिया जी, नमस्कार आप सभी लोगों को। हिंदुस्तानी क्या है ब्रह्मेश सर जी, सर सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी टिकैत नगर बाराबंकी से हूँ, बहुत सुंदर प्रोग्राम है आपका, थैंक यू सर। और कुछ नाम है कुलदीप नारायण जी और पिंकी जी, अरे नाम तो अभी दूसरे 2 बजे से लेके 3 बजे तक नाम ही बोल रहे हैं भाई। हाँ विजय भैया टॉपिक दोहराने की कृपा करें। अच्छा चलिए, सोनू परवाना जी कहते हैं कि टॉपिक दोहराने की कृपा करें। अरे कृपा क्या करनी भैया, ये काम है मेरा। टॉपिक ये है कि बच्चों की, जो आजकल के बच्चे हैं बड़े हो रहे हैं खासकर, उनसे अगर आप कोई बात कहते हैं चाहे वो चाचा हो भतीजा हो या जो भी हो, मैं पेरेंट्स ही क्यों ना हो, तो वो तुरंत ही कहते हैं अच्छा मैं कर लूँगा ना। कहीं अगर आपको फॉर्म भरना है या कोई चीज़ दिख गई, आपने कहा बेटा आओ सामने बैठ कर जो है ये फॉर्म भर लेते हैं जिससे कोई गलती ना हो सके। अरे क्या बात कर रहे हैं, गलती कैसे हो जाएगी, मैं खुद भर लूँगा ना, परेशान ना होइए, आप अपना बैठ के जाके। जो इस तरह की बातें होती ना जो ओवर कॉन्फिडेंस वाली, वो बच्चों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है और कितनी नुकसानदेह, ये जानना चाह रहा था। बस इतना ही बड़ा टॉपिक था और कुछ नहीं। और अयमन नवाब जी का फिर से मेल आया, हेलो विजय जी गुड आफ्टरनून, आपकी शख्सियत बहुत कमाल की है, बस एक ख्वाहिश है कि आपसे कभी मुलाकात हो जाए। ज़रूर इंशाल्लाह, मेरी भी दुआ रहेगी कि आपसे मुलाकात ज़रूर हो। टॉपिक बच्चों का ये कहना है कि मुझे सब पता है मैं कर लूँगा, अक्सर इंटरनेट से मिले आधे अधूरे ज्ञान का कारण होता है। इसे संभालने के लिए बहस करने के बजाय उन्हें खुद कोशिश करने दें। जब वे किसी काम को खुद करेंगे उनसे छोटी मोटी गलतियाँ होंगी, असफलताएँ होंगी, उन्हें समझ में आ जाएगा कि सिर्फ जानने और असल में करने में बहुत फ़र्क होता है। उनके सामने खुद भी अपनी गलतियों को स्वीकारें ताकि वे सीखें, हर बात का पता होना उन्हें ज़रूरी है। मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत अच्छी बच्ची हूं और बड़ों का कहना मानती हूं। क्या बात है, रानी बिटिया हैं आप, वेरी गुड वेरी गुड। अहमद नवाब बहुत अच्छी बात है। रामराज जी का भी मेल आ गया है, रामराज जी नमस्कार, श्री गणेशा नमो, होटो पे तेरी बात, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से हूं। और अरे बाप रे, नाम भेज दिया है सबका भैया, शुभ आशीर्वाद पहुंचे, आपका टॉपिक नहीं सुना इसलिए कुछ नहीं लिखा, धन्यवाद। कोई बात नहीं, आपने मेल ही कर दिया है, बहुत बड़ी बात है। और लगातार इस तरह के मेल जो है वो आते रहेंगे। आज कहते हैं ना वो नितिन मुकेश साहब का जो है जन्मदिन है, हमारी अंजू दीदी बता गई थी तो हमने कहा चलिए नितिन मुकेश साहब की जन्मदिन के मौके पे उनकी आवाज़ में गाना ही सुन लेते हैं। बहुत बढ़िया गाना है, सुनिए मज़ा आ जाएगा।

107.7 FM रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं इसमें होटो पे तेरी बात, आज विजय के साथ। और अच्छा, एम के राज जी का जो है लखीमपुर खीरी से मेल आ गया है फिर से, और लिखा है बच्चों में बढ़ता हुआ ओवर कॉन्फिडेंस हमें अच्छा नहीं लगता है, मगर कुछ किया जा सकता है, जैसे कि बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दें, उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछें जिनका वो जवाब ना दे पाए, फिर उनसे कहें कि आप सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं, आप इसका मतलब कुछ नहीं जानते, तो उनको लगेगा कि हाँ बात सही है, और उनको बैठा कर समझाएं। इनके पहले मेल में भी इन्होंने यही लिखा था और बिल्कुल सही बात है, उन्हें बैठा कर मतलब समय देने की बहुत ज़रूरत है। बसंत कुमार सिन्हा जी कहते हैं आदरणीय, अच्छा वाह भाई साहब वाह, मुझको विजय से आपने कुसुम लता जी बना दिया, क्या बात है, चलिए ठीक है, बहुत सारे नाम दे दिए हैं बाद में पढ़ेंगे। भैया मोनू सेठ, बच्चों में ओवर कॉन्फिडेंस यानी अति आत्मविश्वास का मुख्य कारण उनकी कम उम्र में चीजों की सीमित समझ, माता पिता द्वारा हद से ज्यादा तारीफ सराहना, खुद को दूसरे से बेहतर दिखाने की असुरक्षा की भावना होती है। वो मोबाइल तो ऐसी चीज है जो हम नहीं जानते, वो मोबाइल बताता है, लेकिन अगर कोई सवाल पूछना है तो गूगल का सहारा लेते हैं। कॉन्फिडेंस हमारे बुजुर्गों के पास है, बाकी आगे कुछ कहना ठीक नहीं है। जो भी कार्य करता हूँ सलाह लेता हूँ, चाहे मेरे बड़े भैया हों, गाँव का बुजुर्ग हो, रियल जीवन में रील नहीं बनाता हूँ, और कोई भी सवाल पूछूँ तो कहते हैं कि पढ़ाया ही नहीं गया। हाँ ये बात तो सही है। और विनीत कुमार जी अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ सीतापुर से, होटो पे तेरी बात में विजय सर जी गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरिया, सादर प्रणाम, नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप जो बोली बोलते हैं धर्मेंद्र की आवाज़ में बहुत अच्छी लगती है, मज़ा आ जाता है।

सुन के आज के विषय पर मेरा कहना है, सभी बच्चों को उनके माता पिता का कोई काम या कोई बात कहे तो उसको प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। यही प्रसाद तो नहीं समझ पाते वो उसको प्रसाद समझते ही नहीं है, वो कहते हैं बेकार है तो। और नरेंद्र सुथार जी का मेल आया है, हालांकि ये मैम अंजू जी आपका जो एक रिक्वेस्ट आई है ये मैं 2 बजे के प्रोग्राम में अगर आप करेंगी दोबारा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपकी जो ख्वाहिश है मैं पूरी करूँगा, लेकिन 2 बजे के बाद। वकील अहमद साहब ने फिर से कहा बच्चों को माता पिता की हर बात माननी चाहिए, जो बात बताएंगे अच्छे के लिए ही बताएंगे, मोबाइल देखने के लिए ना दें, ज़्यादा देर तक थोड़ा थोड़ा दें तो चलेगा। प्रवीण जी का कहना है बच्चों में ओवर कॉन्फिडेंस, बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। अभी लास्ट डेट नहीं है, अभी कुछ टाइम है, फॉर्म भर लेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जब नुकसान पहुंचता है तो लास्ट टाइम पे सर्वर डाउन हो जाता है, फॉर्म भर ही नहीं पाते हैं, ऐसा ही कई बार हो चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बहुत से बच्चे तो फीस भी माँ बाप की गलत कटवा देते हैं, उसका कहते हैं अरे ये तो गलती हो गई पापा, पता ला लो फिर से दो 1800-2000 रुपये दोबारा, क्योंकि गलत भर गया फॉर्म। अब कटी हुई फीस वापस आ जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। और इसमें कमलकांत गुप्ता जी का मेल आया है, मोबाइल से बच्चों को दूर रखें, इनका ये कहना है। कमलकांत गुप्ता जी क्या बात है, चलिए शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने जो मेरा विचार था उसको आपने जो है वो आगे तक पहुंचाया, और बहुत अच्छा है कि ये सब विषय ऐसे हैं ना जिसपे अगर हम साथ मिलकर आत्ममंथन करेंगे तो शायद इसका तरीका निकलेगा, या बच्चे सुनेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ वाकई में जो है माँ बाप जो कहते हैं उनकी बात सुननी चाहिए। अगर आप उससे इत्तफाक नहीं रखते हैं तो आप उसमें सवाल जवाब कर सकते हैं कि पापा मेरे समझ से ऐसा होना चाहिए, या चाचा मेरे समझ से ऐसा होना चाहिए, भैया ऐसा होना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन तुरंत नज़रअंदाज कर देना ये ठीक नहीं है। चलिए 1:44 का वक्त है, एक बहुत ही प्यारा सा गीत।

एक बज के 50 मिनट का समय हो गया, बल्कि 51 हो गए। जिससे डरते थे वही बात हो गई, प्रोग्राम का समय निकल रहा है, डर रहे थे वही बात हो गई, क्या करें। सोनू परवाना मेल जी का जो है वो आया है मेल, कहते मैं अपने बच्चे की बात बताऊं तो उसे हमारे मित्र के घर जाना था। हमने कहा कि जब उस गांव में पहुंच जाना बेटा तो मुझे कॉल करना, जगह हम बता देंगे। उसने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया, बोला गूगल का जमाना है, फिर क्या, गूगल से छाना तो लगभग 12 किलोमीटर उस गांव से दूर ही निकल गया। हमने कहा ले लो गूगल का सहारा, मेरा सहारा क्या करोगे। उस जुन से साहबजादे गूगल पर नहीं अपने बड़ों का सहारा लेते हैं, क्या बात है। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि उनको खुद जो है वो पता चल गया कि नहीं भाई पापा सही कह रहे थे, इसलिए जो है वो मतलब रास्ते पे आ गए। हाँ अच्छा, हॉटमेल के मेल अभी से आ गए, क्या बचा भाई, अच्छा 10 मिनट बचा है, वाह फिलहाल। ओहो अब तो हॉटमेल के मेल आना शुरू हो गए, क्या बात है उस्मान अंसारी साहब। और हाँ उस्मान अंसारी साहब कहते हैं आदाब विजय सर, ओवर कॉन्फिडेंस से नुकसान होता है, फ़ायदा बहुत कम ही होता है। ओवर कॉन्फिडेंस का पहला कारण मोबाइल फ़ोन है, स्कूल का फॉर्म जमा करना था, बच्चे

ने जमा ही नहीं किया। जब बोला जाता था तो बोलता था कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन लास्ट तक उसने जमा ही नहीं किया। तब तो आपने उसकी पिटाई की होगी, खूब कान के नीचे बजाया होगा है। जावेद अख्तर साहब का मेल आया है, ओटो में तेरी बात आपकी आवाज़ को सुनना अच्छा लग रहा है। गुड आफ्टरनून विजय सर जी, गुड आफ्टरनून जी, और तबीयत खुश हो गई। टॉपिक क्या है जान नहीं पाया, बस मेल कर दिया। कोई बात नहीं, मेल कर दिया तो कर दिया, बहुत अच्छा किया। आंचल सेठ ने भी कहा है इससे आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस जो है, इनका कहना है कि एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के बारे में समझ और वास्तविक प्रदर्शन से कहीं अधिक होती है। ये हमारे निर्णय लेने की क्षमता को कमज़ोर करता है, व्यवसायिक व्यक्तिगत वित्तीय स्तर पर भारी नुकसान का कारण बनता है। ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस तो अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आगे सब कुछ नज़रअंदाज हो जाता है, ये गलत है। खुद को ज़्यादा स्मार्ट समझना दूसरों से ये अच्छी बात नहीं है, अपने आप को स्मार्ट समझिए ये अच्छी बात है, अपनों से बड़ों के आगे होशियार बनना ये नादानी की बात होगी। हमारे बुजुर्ग अभी भी आसमान की तरफ देखकर बता देते हैं कि घड़ी में समय क्या और क्या हुआ होगा, और हम गूगल में देख के बताते हैं कहीं गलत ना हो जाए। भाई बुजुर्गों की तो बात ही अलग है। और नरेंद्र सुथार जी ने राजस्थान से मेल किया है, ये बच्चे ज़्यादा मोबाइल का उपयोग करते हैं तो उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत बिगड़ जाती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, आँखों की रोशनी कम हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। ये लत छुड़वानी चाहिए, मोबाइल ही इसका कारण है। जो अंजू जी का मेल आया है, लेट गाना, अच्छा गाने की फरमाइश की, मैं 2 बजे के बाद पूरा करूँगा अंजू जी। मुनेश कुमार जी, अच्छा इन्होंने भी फिल्म की बात कर दी, गाने की फरमाइश। चलिए फिलहाल 54 हो गया है, इस गाने के बाद वाइंड अप करते हैं, फिर लौट कर आते हैं, उसके बाद सुनते हैं। चलिए एंजॉय कीजिए, 2 बजे आपका खास प्रोग्राम जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है वो शुरू होने वाला है।

नमस्कार, दोपहर के 2 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा, इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वो राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान वो सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की परिकल्पना को साकार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से पार्टी सभी कार्यकर्ताओं में उनके मूल्यों और आदर्शों को समाहित करने का प्रयास कर रही है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार भी उन्हीं आदर्शों पर अमल करते हुए ऐसी नीतियों को लागू कर रही है जिनका लाभ अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच सके। उन्नाव में जिला अस्पताल से सदर विधायक पंकज गुप्ता ने राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ करते हुए जागरूकता रैली रवाना की। इस रैली में आशा बहुएं, प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं शामिल हुए। जागरूकता रैली के जरिए लोगों को अभियान के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें अभिभावकों से आग्रह किया गया।

कि वे 0 से 5 वर्ष के किसी भी बच्चे को पोलियो की खुराक से वंचित न रखें। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि जिले भर में बनाए गए पोलियो बूथों पर बच्चों को निःशुल्क दवा पिलाई जाएगी। इसके अतिरिक्त टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को भी पोलियो की खुराक देंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में जगह पक्की कर ली है। ग्रुप जी के अपने अंतिम मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला। ईरान के रामिन रिजियान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मिस्र का अगला मुकाबला राउंड ऑफ 32 में ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। ग्रुप जी के अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराया। इसके साथ ही बेल्जियम भी राउंड ऑफ 32 में अपना स्थान सुरक्षित कर चुका है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुंदरी FM रेनबो चैनल।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
5: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
6: समझे जनाब अली।
5: जहाँ हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
7: सौ सात FM रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं भाई, क्या कहते हैं वो, अरे क्या प्रोग्राम का नाम है यार, भूल गया मैं। चलो लेकिन प्रोग्राम का नाम भूल जानते क्यों गया, अमां इतने मेल की मेल खोलते ही जो है, जो पहले के मेल थे 2 बजे के, वो सब पीछे के पन्ने में चले गए और लगातार मेल आते ही जा रहे हैं। भाई कुछ पढ़ने का मौका भी तो दो, इतने सारे मेल अगर लगातार भेजोगे तो जो पहले मेल आए थे वो सब तो पीछे चले गए। अरे राम। सतीश अनेजा जी, दिनेश वर्मा जी, बोधराज खोरवाल जी, जय सिद्धार्थ गोंडने, सतीश अनेजा और कमलकांत गुप्ता जी, तुलसी मास्किन और क्या कहते हैं, बहुत सारे मेल, अकरम हुसैन प्रिंस साहब, आप सबका मेल आ चुका है और आप सबका मेल मुझे मिल गया है। समान अंसारी जी, आपका मेल मिल चुका है और इसी तरह से लगातार भाई रुक रुक के अगर आप मेल भेजेंगे तो मैं ज़्यादा बेहतर पढ़ूंगा। फिलहाल एक गाना लगाता हूँ, उसके बाद लौट कर आता हूँ, क्योंकि भाई मेल्स की तो यहाँ झड़ी लग गई है।

जी हाँ, यहाँ पर जो है दिलबर का इंतज़ार तो रहेगा ही, साथ ही मेल का भी इंतज़ार रहता है। इतने सारे मेल भर के आ गए, टोकरी भर जाती है। आज तो कुछ और मांगा होता भगवान से वो भी मिल जाता। बिट्टू गंगनेजा जी का मेल आया है, जय श्री कृष्णा कोई भी गीत में शामिल कर लीजिए, जलालाबाद वेस्ट से। और सुरेश, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी, निमित आहूजा, और अरे लो वो भी नीचे चले गए। चलो ठीक है, जावेद अख्तर भाई का मेल आया है। गुड आफ्टरनून विजय जी, कार्यक्रम हॉटमेल में किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। कर लिया भाई जी, कर लिया। बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तूबा आफरीन, ओहो विकास जी का मेल आया और गायब भी हो गया। लो खोलने से पहले ही चला गया नीचे। मुकेश कश्यप जी, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, आओ आओ आओ सभी लोग आ जाओ। और इसके अलावा राधेश्याम जी का मेल आया कासगंज से। मास्टर राधेश्याम शाक के, गुड आफ्टरनून विजय सर, कैसे हैं? बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा हूँ, आगे बढ़ता हूँ। स्वर्ण सिंह जी नमस्कार, गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से। स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीत, गुनूर, गुलाल, अरवराज, कोई भी गीत सुना दिए, नाम शामिल कर लीजिए। कर लिया साहब, कर लिया। महेंद्र प्रसाद मोदी, राजकुमार फिल्म का गाना, अच्छा इन्होंने, महेंद्र मोदी और ठाकुर साहेब, बिहारी बाबू, इन सबको सुनना है। सुदर्शन शाह जी, इन्होंने भी गाने की फरमाइश की, अंदाज फिल्म का, किशोर कुमार का, जिंदगी एक सफर है सुहाना। चलिए ये ज़रूर हम जो है वो पेश करेंगे। एक नाम था मैं भूल गया हूँ जिनका गाना मैंने झिलमिल सितारों का आंगन होगा लगाया है। इतने नाम जो है वो आ रहे हैं वो चले जा रहे हैं। नीलू शर्मा जी, रूपचंद चंदेला।

से विजय जी कैसे हैं? पिछले दिनों प्रोग्राम बहुत अच्छे लगे और पिछले दोनों प्रोग्राम बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे सॉन्ग भी। आज मेरी मौसी की बेटी की शादी है, बहुत बहुत मुबारकबाद, वहाँ जा रही हूँ। बस मैं आपका कार्यक्रम सुनते हुए जा रही हूँ, थैंक यू वेरी मच। और सर मेरी दोस्त सारा मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, हर तरीके से मनाने की कोशिश कर रही हूँ। आज सारा के लिए सॉन्ग सुना दिएगा, तेरे चेहरे पे मुझे प्यार नज़र आता है। क्या बात है सारा जी, बिल्कुल नाराज़ ना होइए, आपकी दोस्त बहुत परेशान है और वो परेशान हो जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। संजय ढींगिया जी का बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, और तुम आ गए हो तो नूर आ गया है, क्या बात है। कोमल तिवारी जी, बाजी करके टाइटल सॉन्ग बजा दीजिए, जरूर जरूर मौका मिलेगा तो बजाऊंगा मैं भैया मोनू सेठ। सच कहूँ आज दोपहर में सोने का इरादा था लेकिन इतना अंधा प्रोग्राम कर रहे हो आप कि सोना भूल गया हूँ। और उम्मीद बानी कि हमार गाना आप जरूर प्ले कर दी है, वैसे पिछले प्रोग्राम में भी जबरदस्त गाने बजाए हैं आपने, दीवाना मस्ताना, बंजारन, कब आएगा आंदोलन से आएगी, अच्छा हर पल मुझे याद। चलिए ठीक है, कोई गाना देखता हूँ इसमें से बजाता हूँ। फिलहाल एक गाना जो है वो मुझे जो इसमें लिख के आया था मैं वो प्ले करता हूँ, आप सब इंजॉय कीजिए उस गाने को।

लेकिन इतना उमदा प्रोग्राम कर रहे हो आप कि सोना भूल गया हूँ। और उम्मीद बानी कि हमार गाना आप ज़रूर प्ले कर दी है, वैसे पिछले प्रोग्राम में भी ज़बरदस्त गाने बजाए हैं आपने, दीवाना मस्ताना बंजारन कब आएगा, आंदोलन से आएगी, अच्छा हर पल मुझे याद। चलिए ठीक है, कोई गाना देखता हूँ इसमें से बजाता हूँ। फिलहाल एक गाना जो है वो मुझे जो इसमें लिख के आया था मैं वो प्ले करता हूँ, आप सब इंजॉय कीजिए उस गाने को।

यादव ज्योति यादव जसवी यादव ये लोग जो है प्रोग्राम सुन रहे हैं। अशोक कुमार साहब गुड आफ्टरनून सर, पता रायपुर उदरा मितौली रखीमपुर खीरी से, अंदाज मूवी का आएगा मजा बरसात का, ठीक है बरसात मूवी का भी गाना बरसात दिन, चलिए ठीक है। आफ्ताब अंसारी और आफ्ताब अंसारी जी आरजे जी को नमस्कार, जब जब फूल खिले यहाँ मैं अजनबी हूँ गाना आपको जरूर सुनने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले एक गाना और है जिसको मैं सुनवाना चाहूँगा, वो गाना सुनते हैं और फिर लौट कर आते हैं। अच्छा ये दोनों ही जो है गाने थे राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म जीवन मृत्यु और दीवाना मस्ताना।

जीवन मृत्यु फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना, आपके साथ है और साथ ही यहाँ पर लगातार मेल्स का सिलसिला जारी है। मूसा शेख जी, प्यार भरा आदाब, खैरियत से हो, दुआ में याद रखना, निकाह फिल्म का गाना सुनने की फरमाइश की। अरे बाप। सीताराम कांगड़ा, एकता कानून रोहतक से, सीताराम कांगड़ा जी, बनीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, इन लोगों ने मेल किया है। धर्मेंद्र कुमार, धर्मेंद्र माँ कसम, धर्मेंद्र कुमार प्रजापति, शुभम कुमार, महक मीना, प्रजापति परिवार और ग्राम मिर्कापुर पोस्ट दरिया जिला बाराबंकी से ये लोग हैं, क्या बात है। और फागू राम यादव जी, सप्रेम नमस्कार, हॉटमेल में जीवा फिल्म से, दिल पुकारे, अच्छा ठीक है। संबलपुर कांकेर से फागू राम

एमयूएमवाईडी वाई सभी लोग सुन रहे हैं सर। ताज मोहम्मद साहब का मेल आ गया है, कमलकांत गुप्ता जी का भी मेल आया है, याद कर लेना जी पेपरिया से। दीपा रिमझिम गुप्ता जी, मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, आदित्य गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, अंकुर राघव गुप्ता, इतने सारे लोग हैं जो सुन रहे हैं। और सैफुद्दीन अंसारी बक्सर बिहार से, सैफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरीत रमेश ताहू डुमराव बिहार से, ये सब लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। नरेश जी का मेल आया है, नमस्कार आपके मान योग आरजी जी, नमस्कार जी, नमस्कार। और गाने के बोल इन्होंने लिखे हैं, सो गया ये जहां, ओके चलिए खैर। बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा निजू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का, शुक्रिया हमें मेल में शामिल करने के लिए। हरजिंदर शिंदे साहब और रिस्पेक्टेड होस्ट जी, प्यार भरा आदाब, हर पल खुशियों भरा हो, और किसी भी सदाबहार गीत में शामिल कर लीजिए, कर लिया साहब। शंभू उदय जी, शंभू उदय जी कहते हैं आदरणीय सर जी आपको प्यार भरा नमस्कार, कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली, कारवा फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं, चलिए मौका मिले जरूर सुनवाऊंगा। और जाखोद राजस्थान से थम्बुलदाल खटक, विमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमार, पूजा खटक, ये है पंकज शर्मा जी, गुड आफ्टरनून जी। और पंकज शर्मा जी ने गाने की फरमाइश कर दी है गुड आफ्टरनून करके, चलिए मौका मिलेगा ज़रूर बजाऊंगा। और गीता सेठ जी का मेल आया है, आदरणीय आरजे विजय सर जी नमस्ते, छुपा रुस्तम दिल से मत देना गीता सेठ, खालिस उन्नाव गाने की फरमाइश की है। और इसके अलावा रमेश यादव जी, मेरा गाना बजा दीजिए सर, मेरे दोस्त की शादी है, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। अरे गाना तो नीचे चला गया, कहाँ गया, दूसरे पन्ने पे ट्रांसफ़र हो गया भाई, गाना तो लिख देते। अब्दुल गफ्फार जी कहते हैं प्रोग्राम प्रसारक जी आदाब जी, किसी भी गीत के लिए शामिल कर लीजिए। और नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हैं अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर छत्तीसगढ़ से, सोहन जोशी जी, चलिए तो इतने सारे नाम हो गए, एक गाना भी सुन लेते हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, टोल कर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow,
4: धड़कन लखनऊ की।
5: जी हाँ, धड़कन लखनऊ की सुन रहे हैं, FM रेनबो चैनल प्रोग्राम चला है हॉटमेल यहाँ पर। और उत्तम कुमार भगत जी का मेल आया है। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसी तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद और बोहगड़ा गाछी से, पश्चिम बंगाल से। और दिग्दर्शन गौर जी का मेरठ कैन से, दिग्दर्शन कविता गौर, हमारे यहाँ बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही भैया, हमारे यहाँ भी पड़ रही है, हीट वेव से हाल बेहाल हो गया, यहाँ भी है, मानसून का इंतजार है, मुझको भी है, गाना सुनवा दीजिए। अच्छा, गाना तो मुझे ही सुनवाना पड़ेगा, चलिए आपको गाना सुनवा दूंगा। और सुनील पाठक साहब का मेल आया है, प्रिय प्रस्तुतकर्ता भाई साहब जी, हार्दिक अभिनंदन, अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से। ओ जी कैसे हो, सत श्री अकाल जी। शाहरुख नूर अंसारी, आप कहते हैं कोई भी गीत सुनवा दीजिए, धन्यवाद। ग्राम पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुख नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद दुरेशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी, डीजे प्रधान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद अमीन, गुड आफ्टरनून, ये सॉन्ग समाप्त परवीन जी, मोहम्मद फैज भाई, रिंकी पिंकी जी को सुनाना चाहते हैं, सुना दिए साहब, मना किसने किया है, गाइए आप, नहीं अच्छा मुझे सुनाना है, सुना दिया। राहत हुसैन जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सर, एक सॉन्ग सुनवा दिए रजिया सुल्तान मूवी का। अरे सॉन्ग ही तो बजा रहा हूँ, जो सॉन्ग सुनने के लिए के आपका जो है हॉटमेल खोलता हूँ, पट से नीचे चला जाता मेल, इतने सारे मेल आ गए भाई कि पूछ ही नहीं, देख ही नहीं पा रहा हूँ। संदीप मक्कड़ जी देखिए, आप ने इतने सारे मेल एक साथ कर दिए भाई मेरे, एक ही मेल करते देखिए पूरी लाइन लग गई आपके मेल से। ठीक चलिए, संजय ढींगली देखिए, संजय ढींगिया का खोलने से पहले ही नीचे चला गया। ओहो कोई बात नहीं, काशी वधावना जी का मेल है। और राजकोट गुजराव से कौशिक अस्मिता, मम्मी पापा महेश, बड़वारा परिवार, नमस्ते विजय सर, केम छो, गुड आफ्टरनून भाई, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। कौशिक वधावना ऐसा ये नाम है, अरे स्पेस दे देते तो पढ़ने में ज़्यादा आसान होता। खैर कोई बात नहीं, अब्दुल गफ्फार साहब आपका तो मेल शामिल कर लिया है, ताज मोहम्मद भाई आपका भी शामिल कर लिया था, कमल पांडे जी नमस्कार, मैं कमल शंकर पांडे माहौलिया कला चौराहा पोस्ट नसीरपुर जिला उत्तर प्रदेश से मेल कर रहा हूँ। अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में मेरा मेल पढ़ना, आर्य कैसे इतने सारे मेल कर दिए कि अमिताभ क्या अपनी आवाज़ भूल गए हम, क्या बात है, प्रसारक महोदय जी को दिल से आदाब है, आपकी पसंद का कोई भी सदाबहार सुरीला गीत सुनवा दीजिए, फरमाइश करते हैं ओम प्रकाश। सोनू परवाना मेल, अर्जित सेठ, मोनू भाई की पसंद हमारी पसंद है, विजय भैया शादी से पहले गाना हम मम्मी पापा को बहुत सुनाते थे, क्या बात है, बिल्कुल सुनाना ही चाहिए।

मर्जी का, अरे भाई मर्जी का, आपका प्रोग्राम भी आपकी मर्जी का ही है, जिसका नाम है हॉट मेल। यहाँ पर संतोष खड़से जी का मेल आ गया है और इन्होंने कहा यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। और इसके अलावा मोहसिन हाशमई, आपका भी मेल मुझे मिल गया है। प्यार भरा आदाब, अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवा दें, नई बस्ती गुंज जुंडवारा से इन्होंने मेल किया है। इसके अलावा इशाक मोहम्मद साहब, ये छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से, मोहम्मद इशाक, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद अल्ताफ, इतने सारे नाम, खतीजा बेगम और जितेंद्र नामदेव जी, ग्राम पोस्ट खनौदी, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश। नमस्कार विजय जी, आप आते हैं तो लगता है दिलीप कुमार, शुद्धगन सिन्हा, जॉनी डिवर आ गए हैं, सभी कलाकार याद आ जाते हैं। क्या बात है, ज़रूर सुनवाऊँगा, बहुत बढ़िया गीत आप लोग भी आज अच्छी फरमाइश कर रहे हैं, तो मन जो है बहुत खुश हो जा रहा है। और इसके अलावा मेरे पास नवी हसन जी का मेल आया है, और अच्छा फांसी फिल्म का इन्होंने फरमाइश की है। नवी हसन, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, अनीस अव्या, यशफ अब्बासी, इतने सारे लोग हैं। और इसके अलावा ये सारे नाम पढ़ चुका हूँ। और रोजी डिकॉस्ट्रा जी, आपका मेल, आपने कहा हमें भी देख लेना, शुक्रिया, देख लिया, देखिए नज़र पड़ गई, जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन डिकॉस्ट्रो, रोजी डिकॉस्ट्रो, पॉल डिकॉस्ट्रो, विलिस डिकॉस्ट्रो। और इन्होंने कहा है कि अच्छा कोई सोने के दिलवाला, कोई चांदी के दिलवाला, देवानंद का ही गाना मुझे याद आता है। और सुरेश नारंग जी का मेल आ गया है, आजे कल तर ढल गया दिन, हुआ तमाम रंगी भरी शाम, फिल्म बेटा बेटी से, सहारनपुर से। अच्छा इन्होंने गाने का नाम लिखा, टुकड़े टुकड़े में लिख दिया गाने का नाम। फिलहाल चलिए, रमेश कुमार जी का भी मेल आया है, पटेल नगर मलोड़ से, डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया, गुड्डू, ये सारे लोग हैं। चलिए गाना सुन लेते हैं जल्दी से, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: फ्रॉम रेनबो चैनल पर हॉटमेल सुन रहे हैं आप, रमाकांत जी का मेल है। विजय साहब नमस्कार, मैं रमाकांत विश्वकर्मा, ग्राम महुलिया कला चौराहा पोस्ट नसीरपुर जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से मेल कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मेल करने के लिए। स्वर्ण सिंह साहब, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, इन सब का मेल आ गया है मेरे पास। लोहगढ़ ठाकुर वालान से और तेज बहादुर यादव जी, विजय जिनाना चौहान सर जी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप? महीनों बाद आए हैं हॉटमेल कार्यक्रम में, बहुत खुशी हुई। हो सके तो गीत सुनवा दीजिएगा। अच्छा चलिए, लावारिस फिल्म की बात की है, सुनवाऊंगा। तेज बहादुर यादव, ममता यादव, रौनित यादव, बेबी वानिका और सत्यनारायण कुरिल जी, प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे, जिस तरह प्रोग्राम पेश कर रहे हैं उससे लगता है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। ज़रूर साहब, स्वस्थ और मस्त ना भी हो तब भी प्रोग्राम ऐसे ही पेश करेंगे भाई, रोजी रोटी का सवाल है दोस्त, ऐसी क्या बात है। और नागिन से इन्होंने जो है गीत सुनने की फरमाइश की है, चलिए ज़रूर आपको सुनाएंगे। नाजिम रेन जी, और इन्होंने भी कहा है कि ताल मूवी का गाना सुनवा दीजिए, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, मौका होगा ज़रूर सुनाएंगे। और इसके अलावा और मेल है मोहम्मद अमीन जी का, गुड आफ्टरनून यासिर भाई, समाम परवीन जी, फैज़ भाई, सबको नमस्कार है। प्रकाश जी का मेल आया है, प्रसारक महोदय जी, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में कोई गीत सुना दीजिए, छत्रपति संभाजी नगर से, सुरेशवाड़ी औरंगाबाद से, प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज, स्वीटी, अंशुमन, बेबी ओवी, ये सब लोग सुन रहे हैं प्रोग्राम। और अब पंकज शर्मा जी कहते हैं, हाँ बोलती बंद हो गई, भैया जी को दीदी जी लिख दिया, कैसे पढ़ूं मैं प्रकाश, पंकज शर्मा जी कैसे पढ़ूं मैं। सुरेश नारंग जी का मेल आया है, बोलती बंद कर दी इन्होंने मेरी, करीब आए नज़र मिले तो ना मिले, फिल्म अनीता से। अच्छा भाई, सहारनपुर से इन्होंने मेल किया है, सुरेश नारंग, आशा नारंग, साथ में सबने मेल किया है। मनोज बंसल साहब, हांसी हरियाणा से, नमस्कार जी, कार्यक्रम मेरी उपस्थिति दर्ज कर दीजिए। हो गई दर्ज, हो गई अटेंडेंस, लग गई आपकी अटेंडेंस, लग गई जी आपकी। और ये है राधे कुमार विद्यार्थी जी, तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, किशोर कुमार, क्या बात है, आज गाने बड़े बड़े अच्छे जो है आप लोग चुन रहे हैं, एक के बाद एक लगातार बढ़िया गाने हैं। चलिए समय बचेगा तो जरूर सुनाऊंगा, एक घंटे के प्रोग्राम होते हैं, ऐसे गाने दे तो दो घंटे हो जाए पता ही ना चले, है ना। चलिए रामेश्वर साहब, हॉटमेल कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, विजय जी नमस्कार, मेरे मेल पर भी नजर

डालिए, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं मेल शामिल होने का। धन्यवाद आपको, वारिस अली खान साहब का मेल आ गया है, धन्यवाद उन्होंने कहा है, आकाशवाणी के अमिताभ बच्चन को धन्यवाद। रमेश यादव जी प्लीज़ मेरा गाना बजा दीजिए, दोस्त की शादी है, मेरे यार की शादी बजा दें। अच्छा भैया बजा देंगे, अभी दोस्त की शादी है, ज़रूर बजा देंगे भैया, शिकायत नहीं करो, अभी बजाते हैं। ठीक है, पहले वाला गाना सुन लेते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

नहीं नहीं, नजराना जरूर याद रखा जाएगा भाई, आपकी फरमाइश पूरी हो रही तो ये भी याद रखा जाएगा। ओम बगरिया साहब का मेल आ गया है, सर जी नमस्कार, हम भी लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारी हाजिरी भी कबूल करें। कबूल कर ली साहब आपकी भी। राजकुमार डोडी जी गांव फ्रांसी हिसार से, राजकुमार डोडी, पुष्पेंद्र डोडी और साथ ही प्रमोद कुमार डोडी, ये लोग जो है मेल कर रहे हैं। और इसके अलावा शैलेश कुमार जी, नीलू शर्मा जी, ये कंटिन्यू एफएम माध्यम से अपनी बात बोल रही हूँ। नीलू शर्मा, मेरा सॉन्ग सुना दीजिए सारा के लिए, वो कंटिन्यू एफएम सुनती है। हाँ, आपने जो है, अरे नीलू शर्मा जी, आपने गाना लिख के दे दिया होता तो ठीक था, अब ढूंढूं कहाँ। सर जी प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है, शिवम सिंह जी, और बहुत गर्मी है, गर्मी तो वाकई है दोस्त, अभी घनन घनन घिरा है, बदरा बजाया था, सोचा आ जाए लेकिन आए नहीं, है ना, वो अपनी टसन में है भैया, वो जब मन करेगा तभी आएंगे। और हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी जी कहते हैं, मैं नमस्ते जी, पिंकू सोनी टिकैत नगर से, और नंदलाल ब्रिज का उजाला है गाना सुनवा दिया। यार समय तो कुछ ही देर का बचा है। और मेहर अरोड़ा जी, मेहर अरोड़ा श्री गंगानगर राजस्थान से, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, इन लोगों ने गीत की फरमाइश की है। और इसके अलावा अब पूजा पाल जी का मेल आया है, सर मैं मिर्ज़ापुर दक्षिणी पोस्ट मधुवापुर से, थाना सांदा सीतापुर से हूँ, मुझे गाना सुनवा दीजिए। ज़रूर आपको गाना सुनने को मिलेगा, आपका देखिए मेल शामिल कर लिया गया है। और इसके अलावा स्वर्ण सिंह जी, आपका भी मेल जो है शामिल कर लिया गया था, एक ही मेल को कई कई

आर आप लोगों ने भेज दिया है ना, इशाक मोहम्मद सतीश अनेजा ने तो 2 बजे से लगातार मेल ही कर रहे हैं, और मैंने जबकि शुरुआत में ही आपका मेल शामिल कर लिया था चंडीगढ़ से। खैर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। उदय भान पाल जी, आपका भी मेल शामिल हो गया है सभी का तकरीबन। जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, रमाकांत जी, निसार अली और प्रकाश बोरगांवकर, एम के राज जी, रोजी जी, महेंद्र देपन, साई गायकवाड़, आपका भी मेल जो है वो शामिल कर लिया गया है। हॉटमेल बहुत बढ़िया चल रहा है सर जी। फूलों कांटे का, पहली बारिश में और तू, हाँ ये गाना भी आपने कहा, लेकिन यार क्या करें, 1 घंटे का प्रोग्राम, फरमाइश इतनी सारी, बहुत सही। रियायत हुसैन जी का देखिए मेल आया अब जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत सिद्दीकी। मौसम कैसा ये भी साथ में लिख देते तो कुछ ठंडक पहुंच जाती। अब बताइए, एक मेल मैंने आपका पढ़ लिया, पीछे 4 आपके मेल और आ गए, बताइए वही मेल रिपीट हो गए। खैर कोई बात नहीं, 2:54 का वक्त है, एक आखिरी गीत के साथ आपको नमस्कार कहना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने जो है वो क्या कहते हैं उसे मेल हमें किया। और इसके अलावा डियर आरजे नमस्कार, चलचित्र वो कौन थी, एडवोकेट वारिस अली, अरे साहब बहुत देर हो गई वारिस अली खान साहब, चलिए खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबने मेल किया। प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना चाहूँगा इस गीत के साथ, फिर मुलाकात होगी अभी कुछ ही देर में सतरंगी दुनिया में, तो बस सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए आज के इस प्रोग्राम को।

0: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई। जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

नमस्कार, दोपहर के 3 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र पर केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल के एक लेख को साझा किया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा, इस लेख में भारतीय उस सोच को रेखांकित किया गया है जिसके तहत वैश्विक दक्षिण को सुरक्षित, टिकाऊ और समान ऊर्जा भविष्य के केंद्र में रखा गया है। उन्होंने कहा कि मजबूत ऊर्जा व्यवस्था केवल घरेलू नीतियों से ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भी बनती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध नगर में अंबर और एसिस के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ये स्थान इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के हब के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा, जो चीज दुनिया में आयातित होती है वो यहाँ बने और दुनिया से निर्यात हो। योगी ने कहा कि कोरिया के सहयोग से इस इकाई को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि कोरिया का उत्तर प्रदेश के साथ काफी ऐतिहासिक संबंध है। ऐसी मान्यता है कि वहां की रानी क्वीन हॉक अयोध्या की राजकुमारी श्रीरत्ना थी और जलमार्ग से वहां पहुंची थी। उन्होंने कहा, उनकी स्मृति में अयोध्या में एक पार्क का भी निर्माण कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की परिकल्पना को साकार कर रही है। उन्होंने कहा, इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से पार्टी सभी कार्यकर्ताओं में उनके मूल्यों आदर्शों को समाहित करने का प्रयास कर रही है। श्री योगी ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार भी उन्हीं आदर्शों पर अमल करते हुए ऐसी नीतियों को लागू कर रही है जिसका लाभ अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच सके। सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से पहले वहां के विदेश मंत्री बैरी फॉरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा, भारत अपनी बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव, शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फॉरे ने भारत में सेशल्स के संबंधों को मजबूत और ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। इस समाचार में बस इतना ही। अगला बुलेटिन 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो।

0: कौन हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। रजनीगंधा हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: 100.7 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं समय सतरंगी दुनिया। 3:03 का समय हो गया है। एंटरटेनमेंट का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा भाई, मत करो दुहाई, क्योंकि एफएम रेनबो है, फ्रीक्वेंसी 100.7 है।

बिल्कुल, ये जो रेडियो सुन के छम्मा छम्मा आप करते हैं भाई, इसके लिए बड़ा प्रयास और अथक मेहनत और परिश्रम जो है किया जाता है इन गीतों को आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि अगर ये गीत ना होंगे और ये ट्रांसमिशन ना होगा तो आप रेडियो कैसे सुनेंगे। और इस जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इसे कई सालों से लगातार आप तक पहुंचाया जा रहा है बहुत सारे उन लोगों की वजह से जो आकाशवाणी में कार्यरत रहे और आकाशवाणी में अपनी मेहनत से उसे सजाते और संवारते रहे, उन गीतों को आप तक पहुंचाते रहे। इसी पर हमने एक कार्यक्रम शुरू किया है पदचिन्ह आकाशवाणी के। जी हाँ, रविवार को यानी कल 28 जून 2026 को 10 से 11 बजे के बीच में आप यह कार्यक्रम सुनेंगे और इसमें हमारे जो मेहमान होंगे वो होंगे श्री सुशील रॉबर्ट बैनर्जी, जो कि पूर्व उप महानिदेशक आकाशवाणी रहे हैं, और उनसे बातचीत होगी सुमोना पांडे और सुरेंद्र राजेश्वरी जी की। आकाशवाणी की यह प्रस्तुति है जिसे एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज की आप फ्रीक्वेंसी पर सुन सकते हैं, न्यूज ऑन एयर ऐप पर और डीटीएच पर भी आप सुनेंगे। पदचिन्ह आकाशवाणी के ये एक प्रयास है, उन लोगों की सराहना है, उन लोगों को समर्पण है जिन्होंने आकाशवाणी को सजाया और संवारा है।

अच्छा कभी कभी ऐसे प्लेस पर आप पहुंच जाते हैं जहां पर खुद नाचने गाने का आपको मन करने लगता है, ना वहां गर्मी होती है ना बहुत अधिक ठंड होती है, मौसम इतना अच्छा होता है कि आपके पैर खुद ब खुद तिरकने लगते हैं और मन खुद नाचने गाने को तैयार हो जाता है। तो आज के इस गर्मी के भीषण मौसम में जो है सतरंगी दुनिया में एक ऐसे ही प्लेस, एक ऐसे ही स्थान की सैर कराने जा रहा हूं मैं आपको, जो कि अपने आप में बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय हिल स्टेशन जाना जाता है, क्योंकि गर्मी में लोग जो है वो चिलचिलाती गर्मी से भागने के लिए हिल स्टेशन ही जाते हैं जहां पर टेम्परेचर कम होता है और मजा खूब आता है। औली की बात आज मैं करने जा रहा हूं, जो भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। उत्तराखंड पास है इसलिए पास की ही सैर करा रहा हूं। कम खर्चे में ज़्यादा जो है मुनाफे वाली बात है यहाँ पर, मतलब ज़्यादा इंटरटेनमेंट होगा आपको, इसीलिए पास ले जा रहा हूँ। समुद्र तल से लगभग 2500 मीटर से 8200 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित ये स्थान अपने लिए विशाल स्कीइंग ढलानों, बर्फ से ढके पहाड़ों और प्राकृतिक घास के मैदानों के लिए दुनिया भर में इतना प्रसिद्ध है कि अगर आँख बंद करके सोचो तो औली का नाम सबसे पहले स्थान पर आता है। इसीलिए इसे अक्सर भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर करने वाली, बहुत सारे इंजॉयमेंट हैं यहाँ पर जो आपको मैं बताऊँगा, लेकिन उससे पहले दिलबरा से बात कर लेते हैं।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

107.7 FM रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं इस समय प्रोग्राम जहां पर मैं बात कर रहा हूं सतरंगी दुनिया की। और सतरंगी दुनिया में आज ओली की सैर मैं आपको करा रहा हूं। स्कीइंग की बात की जाए तो ओली की ढलानें एशिया की सर्वश्रेष्ठ स्कीइंग ढलानों में गिनी जाती हैं। यहीं सर्दियों में देश और विदेश से यहां पर्यटक स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग करने आते हैं, उसका मजा लेने आते हैं। जो हिमालय के दृश्य हैं आहा, उनका तो क्या कहना है। इतना खूबसूरत बादलों का जाना नीचे से होकर, और वो एक अपने आप में अलग है। यहां से नंदा देवी की अगर बात करें तो कॉमेट और दूनागिरी सहित भारत की सबसे ऊंची चोटियों के मनमोहक नज़ारे दिखाई देते हैं। सफ़ेद सफ़ेद पहाड़, बादलों का आना जाना, ओ माय गॉड क्या बात है। ऐसे नज़ारों के लिए तरसते हैं। हालांकि जो है वो जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो बहुत सारे पर्यटक वहां पर जाते हैं और कुछ दिन रहकर वहां पर, अब तो एयरबीएनबीज इन सब का ज़माना आ गया है तो कई फैमिलीज एक साथ जाती हैं, एक ही घर में रुकती हैं, वहां खाना बराती खाती हैं, आपस में एंजॉय करती हैं और इन दृश्यों का मज़ा लेती हैं और फिर लौट कर चली आती हैं। यही तो खास बात है। खैर चलिए, तो इसी बात पर एक और बहुत ही प्यारा सा गीत हो जाता है, फिर लौट कर आते हैं।

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
0: ओनली ऑन यूथ वेव,
1: यूथ की बात यूथ के साथ,
0: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
3: शाम होने को है,
2: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

107.7 एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं इस समय, और जो सुन रहे हैं वो तो सुन ही रहे हैं, सुनने के साथ साथ महसूस भी कर रहे हैं आप। अब महसूस क्या कर रहे हैं, एक ठंडे ऐसे प्रदेश की, एक ठंडी जगह की, ठंडी ठंडी बर्फ और उसकी ठंडी हवाएं आप महसूस कर रहे हैं इस सतरंगी दुनिया में। क्योंकि भाई मैंने कहा ना कि भाई फील कराना होगा, जैसे वो आता नहीं है कि टेम्परेचर 32 है लेकिन फील होगा 44, टेम्परेचर 38 है लेकिन फील होगा 48, वैसे ही गर्मी बहुत है लेकिन ठंडा फील कराना है मेरे को, जिम्मेदारी है अपनी, क्या समझे। इसीलिए आपको ओली की सैर करा रहा हूँ। एशिया का सबसे लंबा रोपवे जो है वो यही है, जोशीमठ से ओली तक जाने के लिए आप रोपवे की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लगभग 4 किलोमीटर लंबा है। इस यात्रा के दौरान बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, घने जंगलों का जो विहंगम दृश्य है ना, जो मतलब उसकी बात ही अलग है। अभी हाल ही में मैं देहरादून गया तो कुल्हान एक जगह है, वहाँ पर एक मेरे रिलेटिव रहते हैं, उन्हीं के घर गया। तो वहाँ से फिर जब देहरादून गया था तो जाहिर सी बात है कि हरिद्वार भी आना है, गंगा जी में नहाना है, डुबकी लगाना, ये तो सौभाग्य की बात है। तो हम लोग जो है वो जिस रास्ते से आ रहे थे गाड़ी से, इतने घने जंगल, और वहाँ पे बीच बीच में लिखा था कि हाथियों का झुंड जो है वो रास्ता पार करता है, संभाल के गाड़ी चलाएं। और ऐसा ही हुआ, आगे आने वाले उसमें जो है 3-4 हाथी सड़क पार करते हुए दिखाई दिए, हम लोग दूर पे रुक गए। लेकिन जो खूबसूरती हरे हरे जंगलों के बीच में, इतने साफ सुथरे पेड़, उनकी पत्तियां थी, उनकी जो चमक थी, वाकई में वो आँख जो है अगर इस तरह के दृश्य को देख लेती है तो बहुत लंबे समय का सुकून हो जाता है। और उन रास्तों में छोटे छोटे चीकू के और बादाम के और पता नहीं छोटे छोटे जो गाँव वाले लोग हैं वो अपना स्टॉल लगाए हुए थे, और बेर भी वहाँ पर था, आम भी थे, हर तरह की चीज़ वहाँ मिल रही थी किनारे किनारे। तो वो जो दृश्य था वो यहाँ के भीड़भाड़ वाले इलाकों से जो है बहुत दूर है, जहाँ धूल

गाड़ी की चे चे पों पों, और मतलब जो भी है वो मतलब एक अलग ही दृश्य होता था। मैं तो मतलब अब पिछले महीने ही गया था, लेकिन बड़ा अच्छा लगा मुझे, आज भी उसको महसूस करता हूँ। तो कुछ ऐसा ही आपको भी मैं महसूस करा रहा हूँ। तो फिलहाल चलिए एक गाना महसूस कर लेते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं। और वहाँ कहीं जाइएगा नहीं, सोने वोने की नहीं होती है, मैं सोने वोने नहीं दूंगा आपको। हाँ, चुपचाप मेरे साथ रहिए, जब मैं जाऊं तब भी ना जाइएगा यार, रहिएगा। हाँ।

0: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
1: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा? शत्रुपा से माँ जी।
2: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
1: शत्रुपा से।
3: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
1: शत्रुपा से।
4: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: स्टे ट्यून्ड टू 100.7 एफएम रेनबो,
6: धड़कन लखनऊ की।
7: जी हाँ, धड़कन लखनऊ की सुन रहे हैं आप, एफएम रेनबो चैनल 100.7 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। सतरंगी दुनिया कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें, कल है संडे, हमारा कार्यक्रम होता है हेल्थ एंड फिटनेस 12 बजे से लेकर 1 बजे तक 28 जून 2026 यानी कल आने वाले संडे को। आपको जो है जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं, लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिज्म, क्षय अपक्षय और से जुड़ी मुख्य स्वास्थ्य जो समस्याएं हैं उसके निदान के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल, MBBS MD मेडिसिन KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में होंगे। और प्रायोजित कार्यक्रम हमारा जो FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी पर आप सुन सकते हैं, इसे न्यूज़ ऑन एयर ऐप DTH पर भी आप इसे सुन पाएंगे। यानी हेल्थ एंड फिटनेस में लाइफस्टाइल और मेटाबॉलिज्म पर जो भी मुख्य आपकी स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनका निदान हमारे डॉक्टर अभिषेक कुमार गोयल करेंगे, तो आप उनको सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल 3:41 के समय सतरंगी दुनिया सुन रहे हैं आप आज विजय के साथ, और ओली की सैर मैं आपको करा रहा हूं। और ओली में अब आपको ये भी बता दूं मैं कि किस तरह से आप जो है यहाँ पर एक इसकी आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है ओली में, जो दुनिया की सबसे ऊंची आर्टिफिशियल झीलों में से एक है, और इसकी स्कीइंग ढलानों पर बर्फ की आपूर्ति के लिए इसको बनाया गया है। और साथ ही गौरसन बुग्याल जो है ओली से कुछ किलोमीटर की ट्रैकिंग करके यहाँ पहुँचा जा सकता है। यहाँ हरे भरे घास के मैदानों का एक विशाल जो है वो मैदान है, बहुत ही विस्तार में इसका है, इसको जब आप देखेंगे तो ये बहुत खूबसूरत सा आपको नज़र आएगा। लेकिन ये बात तो इसकी हो गई ओली की, लेकिन यहाँ पर जाना कब बेहतर है, कब आप जा सकते हैं, क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपकी कॉलर ट्यून आपको सुना देता हूँ, बजा भी देता हूँ।

0: दिल ये दीवाना धड़कने लगा। 3:50 का समय हो गया है, दिल तो धड़क ही रहा है क्योंकि आपको छोड़ के जाने का समय आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से मुलाकात होगी। अभी तो आपको ये बता दूं कि ओली अगर आप जाना चाहते हैं तो कब कब आपको जाना है। सर्दियों में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बर्फबारी और स्कीइंग का मजा लेना है तो ये समय आपका सबसे बढ़िया है, दिसंबर से फरवरी का। लेकिन फरवरी तो बाद की बात है। अभी अगर आपको गर्मियों में जाने की बात मैं करूंगा तो मार्च से जून का समय बेहद अच्छा रहता है, लेकिन अब तो जून भी निकलने वाला है, तो ऐसा करिए दिसंबर से फरवरी का प्लान बनाइए। और सुखद मौसम और प्राकृतिक हरियाली के लिए इस समय यानी मार्च से जून का जो मजा है वो अलग ही है। ये समय ट्रैकिंग और इन दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए बेहद बहुत अच्छा होता है। बारिश भी होती है और आप यहाँ सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, रोपवे से भी जा सकते हैं, और साथ ही मतलब टैक्सी से जाना चाहें तो भी जा सकते हैं। पैदल मत जाइएगा वरना पहुँचने में आपको मई जून निकल जाएगा, इसलिए जो है वो ट्रेन वेन से जाइए तभी सही है। फिलहाल चलिए 3:52 का वक्त हो गया है और हमारे लिसनर ने भी जो है नाजिम रेन जी कहते हैं आज आपका सारा प्रोग्राम सुन लिया, अरे बड़ी कृपा आपकी भाई की, पूरा आपने समय दिया। अशोक कुमार कहते हैं प्रोग्राम सुन रहा हूँ विजय भाई मितौली लखीमपुर से, क्या बात है, धन्यवाद धन्यवाद। आप लोग जो है वो प्रोग्राम के साथ हैं, हमारे साथ हैं, ये बहुत अच्छा है। और अब हमारे साथ जो अगली आवाज़ आ रही है उसको जो है वो मैं आपको माइक पर ही सुनवाना चाहूँगा। आ जाओ भैया, कहाँ हो
1: जी? हाँ रोहित, कैसे हैं? बहुत नमस्कार, एकदम बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: बहुत अच्छा हूँ। और अपना नाम तो बताइए।
1: अरे मैं उत्कर्ष हूँ आप सभी के साथ, मुझे लगता है कि आवाज से पहचान गए होंगे।
0: क्या बात है क्या बात है, आवाज से पहचान गए होंगे, सही बात है बिल्कुल। जी, जी, और हमारे लिसनर जो है वो आवाज बहुत अच्छे से पहचानते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे से पहचानते हैं। और मुझे लगता है कि जब हेलो FM में लोग जुड़ते हैं तो बोलते हैं हमारे क्यूट क्यूट और पता नहीं क्या क्या ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं ना हमारे लिए यूज करते हैं, सुनकर के बड़ा अच्छा लगता है और आवाज से ही पहचान जाता है।
0: आवाज से ही पहचान, बड़े मतलब अच्छे, बड़े ही मतलब प्यार भरे दिल से जो है वो बात करते हैं,
1: एकदम इनोसेंट और एकदम प्यारे, और क्या बोले मतलब हमारे लिसनर्स जो है बहुत ही अच्छे हैं।
0: चलिए ठीक है, और उत्कर्ष के साथ आप रहिए। विजय आपसे कहता है गुड बाय, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना खास ध्यान रखिए और इंटरटेनमेंट का ये सिलसिला एज

0: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स।

0: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स
1: ओनली ऑन यूथ वेव।
0: यूथ की बात यूथ के साथ
1: शाम 4 बजे 100.7 एफएम रेनबो पर,
0: धड़कन लखनऊ की।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
3: धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध नगर में अंबर एवं एनसेंट के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इस स्थान इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के हब के रूप में विकसित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति, हर क्षेत्र के लिए अलग अलग सेक्टोरल पॉलिसी और 75,000 एकड़ के व्यापक लैंड बैंक के साथ उत्तर प्रदेश आज देश दुनिया के निवेशकों को आमंत्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। कल से शुरू होने वाले पल्स पोलियो राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रसार प्रचार के लिए अमरोहा में आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से जागरूकता रैली का शुभारंभ किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमाकांत सागर ने जागरूकता रैली झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। प्रदेश सरकार एक जनपद एक उत्पाद ODOP और वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन पहल के तहत हापुड़ के पेठे को आधिकारिक तौर पर शामिल किए जाने से जनपद के पेठे के व्यवसायियों ने खुशी जताते हुए कहा कि इससे हापुड़ के पेठे को आगरा के समान राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। वर्तमान में जनपद में 6 पेठा निर्माण इकाइयां स्थापित हैं। सरकार की इस पहल के तहत लगभग 150 नई निर्माण इकाइयां लगाई जाएंगी। उन्नाव में जिला अस्पताल से सदर विधायक पंकज गुप्ता ने राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ करते हुए जागरूकता रैली को रवाना किया। इस रैली में आशा बहुएं और प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं शामिल हुए। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन सब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 5 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। 4:02 का समय हो चुका है और मैं उत्कर्ष आपके साथ जुड़ चुका हूँ और आप 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की सुनना शुरू कर चुके हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि भैया 4 बजे से हम सभी युवाओं के बारे में बात करते हैं। यूथ वेव के इस खास कार्यक्रम में आज जिस विषय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो विषय है बहुत ही खास, जिसका नाम है स्किल डेवलपमेंट। और इस स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के विषय में एक बहुत ही सुनहरा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ। उस विषय के बारे में हम सभी चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और डीप जाने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भैया आजकल के ज़माने में स्किल्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आप सभी को पता है कि भैया इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात तो करते ही हैं, लेकिन साथ में प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर और खूबसूरत खूबसूरत गाने भी सुनते हैं, ताकि हमारा मूड रिफ्रेश रहे और साथ ही में हम लोग कुछ जानकारियों को भी एकत्रित करें। तो सुनिए मेरे यानी उत्कर्ष के साथ 100.7 FM रेनबो और बने रहिए मेरे यानी उत्कर्ष के साथ।

जी हाँ दोस्तों, मंज़र है ये नया, और मंज़र अगर नया है तो मुझे लगता है कि हम सभी को भी नए ज़माने के साथ में, नए मंज़र के साथ में कदम से कदम मिला करके चलना पड़ेगा। और कदम से कदम मिला करके हम तभी चल पाएंगे जब हमें नए ज़माने के हिसाब से नई स्किल्स भी हमारे पास में होंगी, और जो इस समय की ज़रूरत है, इस समय की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करते हुए हमारे अंदर टैलेंट्स होने चाहिए, हमारे अंदर स्किल्स होने चाहिए। तो उसी के लिए आज भैया मैं उत्कर्ष आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, और आज हम लोग बात करेंगे स्किल डेवलपमेंट की। और स्किल डेवलपमेंट में एक ऐसा विषय है जिस विषय को मैं आप सभी को बता दूँ कि भैया आज हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्किल है। हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी एम्प्लॉयमेंट

किसी भी जॉब में अप्लाई करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स या ये सारी चीज़ें बहुत ज़रा ज़रूरी होती हैं, बात करने का तरीका हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक गाना सुनिए सबसे पहले, उस गाने को इंजॉय करिए, मेरे यानी उत्कर्ष के साथ बने रहिए और मैं आपको बताता रहूँगा कि भैया अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरीके से एकदम बेहतरीन, रापचिक और मज़ेदार बनाएं।

में एक विषय हमने लिया है, उसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स और बात करने का लहजा, जिसको हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि मुझे फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलनी आनी चाहिए। अरे भाई, भाषा सिर्फ एक ज़रिया है, असली चीज़ है आपका कनेक्शन। आप हिंदी में बोलें, उर्दू में बोलें या अवधी में बोलें, अगर आपकी बात सुनने वाले के दिल तक पहुंच रही है तो आप एक बेहतरीन कम्युनिकेटर हैं। और सच कहूं तो हम लखनऊ वालों की जो तहजीब है, पहले आप वाला लहजा जो है ना हमारा, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन कम्युनिकेशन है। तो इस कम्युनिकेशन स्किल को बरकरार रखिए, अपनी जो भी आपकी पर्सनल भाषा है उस भाषा पर पकड़ रखिए, उस भाषा को इस्तेमाल करिए और सामने वाले को अपने जो थॉट्स हैं पूरी तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए अपनी भाषा में। और मैं ये पूरे वादे के साथ आपको कह सकता हूँ कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा शार्प होंगी, और किसी भी जॉब में आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे।

जी हाँ दोस्तों, 4:18 का समय और इस यूथ वेव कार्यक्रम में मैं उत्कर्ष हूँ आपके साथ। और आप आज हम सभी मिलकर के बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट से विषय के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो भैया, इस स्किल डेवलपमेंट

जी हाँ दोस्तों, 4:23 का समय और यूथ वेव कार्यक्रम में मैं उत्कर्ष हूँ आपके साथ। आप सुनना बहुत पहले से शुरू कर चुके हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि 4:25 से आप सभी सुनेंगे रोजगार समाचार दिल्ली से, और उन सभी रोजगार समाचारों में आपको हो सकता है कि ऐसी कुछ जानकारियां मिल जाएं जिनको जो आपके काम आ जाएं बहुत ज़्यादा, और आपकी कहीं ना कहीं जॉब लगे, तो उन रोजगार समाचारों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और मेरे यानी उत्कर्ष के साथ बने रहिएगा। और क्योंकि यूथ वेव कार्यक्रम में आज हम लोग स्किल डेवलपमेंट के इस बड़े से अम्ब्रेला में बात कर

रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी अगर शार्प करनी है तो बहुत सारे नुस्खे मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ इस कार्यक्रम में। तो मेरे यानी उत्कर्ष के साथ भैया बने रहिए, चिपक करके अपनी सीट की पेटी जो है वो बांध करके रखिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की भैया।

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स
0: ओनली ऑन यूथ वेव।
1: यूथ की बात यूथ के साथ,
0: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर।
1: धड़कन लखनऊ की

राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण में चेयर प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। समेकित वेतन रहेगा 2,00,000 रुपए प्रतिमाह। निर्धारित आवेदन प्रारूप, अनिवार्य योग्यता, अनुभव, सामान्य नियम और शर्तें, सेवाएं और अन्य विवरण के लिए देखिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.curaj.ac.in। आवेदन की मूल प्रति जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 6 जुलाई 2026। भारत सरकार का उपक्रम पवन हंस लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक रिक्तियों की संख्या 1, कनिष्ठ तकनीकी सहायक क्वालिटी 2 रिक्तियां, कनिष्ठ अभियंता सिविल 1 रिक्ति, सहायक CAMO 2 रिक्ति, सहायक 1 रिक्ति, स्टेशन इंचार्ज 2 रिक्तियां तथा प्रशिक्षु तकनीशियन ट्रेनी तकनीशियन 13 रिक्तियां। विस्तृत विज्ञापन और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए देखिए पवन हंस लिमिटेड की वेबसाइट www.pavanhans.co.in। इस वेबसाइट पर जाकर करियर टैब पर लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 10 जुलाई 2026। सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू और कश्मीर आवेदन आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए। TGT अंग्रेजी 2 रिक्तियां, TGT विज्ञान 1 रिक्ति, TGT गणित 1 रिक्ति, बढ़ई 1 रिक्ति और इलेक्ट्रीशियन 1 रिक्ति। अधिक जानकारी और आवेदन पत्र के लिए देखिए स्कूल की वेबसाइट www.sainikschoolnagrota.com। प्रशासनिक या नीतिगत कारणों से रिक्तियों को बढ़ाने, घटाने या रद्द करने का अधिकार स्कूल प्रशासन के पास है। आवेदकों को इसके लिए कोई औपचारिक सूचना नहीं दी जाएगी। सैनिक स्कूल नगरोटा सैनिक स्कूल सोसाइटी रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक आवासीय स्कूल है। पशुपालन और डेयरी विभाग आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए रिक्तियां। पशु पोषण विशेषज्ञ 1 रिक्ति, भर्ती की पद्धति रहेगी प्रतिनियुक्ति जिसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है। पात्रता मानदंड, शैक्षिक योग्यता, अनुभव और बायोडाटा प्रोफॉर्मा आदि देखने के लिए आवेदक पशुपालन और डेयरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं जिसका पता है dahd.gov.in। आवेदन इस पते पर भी भेजे जा सकते हैं। सुश्री अनामिका निगम, अवर सचिव पशुपालन और डेयरी विभाग, राइट स्टिल्ट फ्लोर, चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली 1। ईमेल आईडी है anamika.edu.nic.in। बुनकर सेवा केंद्र वीवर्स सर्विस सेंटर खानापारा गुवाहाटी इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। कनिष्ठ बुनकर 10 पद, कनिष्ठ छपाईकर 3 पद, कनिष्ठ सहायक बुनाई 3 पद, कनिष्ठ सहायक प्रसंस्करण 2 पद और परिचारक बुनाई 7 पद तथा बढ़ई 4 पद। इन पदों के विरुद्ध भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या चयन के समय सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या के आधार पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा नियुक्ति अधिकारी को बिना कोई कारण बताए नोटिस को रद्द करने का या सुधार का भी अधिकार है। योग्यता आयु सीमा चयन प्रक्रिया और आवेदन प्रपत्र के बारे में देखिए वेबसाइट पर जानकारी। वेबसाइट का पता है

0: www.handlooms.nic.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani.
2: सपने बड़े हैं,
3: स्टाइल अलग है,
2: तो ये शो है आपके लिए।
3: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
2: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
3: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
2: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
4: जी हाँ दोस्तों, 4:30 का समय और अभी आप सुन रहे थे रोजगार समाचार दिल्ली से। और उन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बहुत बहुत नमस्कार। आशा है कि भैया सभी लिसनर्स ने उन सभी जानकारियों को अच्छे से सुना होगा और उससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत सारी रिक्तियाँ आप सभी को पता चलेंगी, बहुत सारी वैकेंसीज आप सभी को पता चली होंगी कि भैया कहाँ कहाँ पर आप अपना आवेदन कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों भैया जो है आपके लिए इस कार्यक्रम में मैं उत्कर्ष आपके साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ और हम लोग बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के बड़े से अम्ब्रेला के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। इस कम्युनिकेशन स्किल्स की चर्चा बरकरार रखेंगे लगातार मेरे यानी उत्कर्ष के साथ अगले आधे घंटे तक। लेकिन उससे पहले खूबसूरत सा गाना सुनते हैं और वापस लौटते हैं और चर्चा करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पर।

जी हाँ दोस्तों, 4:34 का समय और इस यूथ वेव कार्यक्रम में मैं उत्कर्ष हूँ आपके साथ, और आप हम सभी मिलकर के स्किल डेवलपमेंट के अंडर एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। अपनी बोलने की क्षमता को किस तरीके से हम लोग ठीक करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे शार्प करें, इस सभी विषयों के बारे में आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। तो भैया, मैं आपको बता दूँ कि आप में से कई युवा साथी जो हैं मेरे, वो स्टेज फियर यानी लोगों के सामने बोलने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, हाथ कांपते हैं, गला सूखता है। तो मैं आपको बता दूं भैया कि आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और स्पीकर्स भी स्टेज पर जाने से पहले नर्वस ज़रूर होते हैं। ये डर बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, बहुत ही एक आम सी बात है। इसे ख़त्म करने के लिए एक ही तरीका है, इस डर का सामना करना। शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए, अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके खुद को रिकॉर्ड कीजिए, और बाद में सुनिए कि भैया आप कैसा बोल रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट है, और थर्ड मैन पर्सपेक्टिव से अपने आप को जांचिए और देखिए कि भैया आप किस तरीके से बोलते हैं, और उसको और भी ज़्यादा ठीक करने की कोशिश करिए। आपके सबसे बड़ा क्रिटिक जो है ना, आपके सबसे बड़ा जो आलोचक है आपका, वो आप खुद हो सकते हैं, और आप अपने सबसे बड़े फ़ैन भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अपने साथ रहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करिए, इन सभी तरीकों को फॉलो करिए, और मेरे यानी उत्कर्ष के साथ बने रहिए, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना मैं आपके रेडियो सेट्स पर लेकर के आया हूँ। उसको सुनिए, इन्जॉय करिए, और वापस लौट करके आइए मेरे यानी उत्कर्ष के पास, और स्किल डेवलपमेंट यानी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, 4:44 का समय और इस यूथ वेव कार्यक्रम में मैं उत्कर्ष हूँ आपके साथ और हम चर्चा कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कि भैया किस तरीके से हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करें, इम्प्रूव करें। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जानते हो तो हमारी बातचीत का 70% हिस्सा बिना कुछ बोले ही हो जाता है। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं बॉडी लैंग्वेज की। आप कैसे खड़े होते हैं, आपके हाथों के इशारे और सबसे ज़रूरी आपका आई कॉन्टैक्ट। जब आप किसी की आंखों में देखकर बात कर रहे होते हैं तो वो एक अलग ही प्रकार का कॉन्फिडेंस आपका दिखा रहा होता है। कंधे सीधे रखिए, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखिए और आधी जंग तो आप ऐसे ही जीत जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स की जो जंग है, इसमें जो हम लोगों को बहुत ज़रा सशक्त होना है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी रखनी है, अच्छा बात करने का लहजा हमारा होना चाहिए। समाज बोलता है, दुनिया हमको बोलती है, लेकिन उसमें 70% हिस्सा हम लोग कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं कि बॉडी लैंग्वेज पे भी हमको बहुत ज़्यादा कमांड होनी चाहिए कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से खड़े हैं, हमारे कंधे सीधे हों, हम आंखों में आंखें डाल करके सामने वाले की बात करें। ये कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस को दर्शाता है और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बहुत ज़्यादा शार्प करता है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान रखिए। मेरे यानी उत्कर्ष के साथ बने रहिए, 100.7 FM रेनबो सुनते रहिए। और ये गाना आपके लिए लेकर के आया हूँ, उसको सुनिए, इन्जॉय करिए और वापस लौट करके आइए, क्योंकि और बहुत सारी बातें मुझे आपको बतानी है।

0: जी हाँ दोस्तों, 4:50 का समय और घड़ी की सुइयां बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और मुझे वो इशारा कर रही हैं कि उत्कर्ष भैया जल्दी जल्दी मुझे चीज़ें बताइए, स्किल डेवलपमेंट हमारा करिए और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जो आप बात कर रहे हैं उसको थोड़ी रफ्तार दीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हमको करनी होती हैं लेकिन समय हमारे पास थोड़ा कम होता है। तो दोस्तों, आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात कर रहे थे स्किल डेवलपमेंट के इस अपने यूथ वेव के सेगमेंट में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भैया डेटा और फैक्ट्स इंसान के दिमाग तक पहुंचते तो हैं लेकिन एक कहानी सीधे दिल में उतरती है। स्टोरी टेलिंग आज के दौर की सबसे डिमांडिंग स्किल है। चाहे आप किसी इंटरव्यू में बैठे हों या कॉलेज के प्रेजेंटेशन में, अपनी बात को एक कहानी या किसी छोटे से किस्से के तौर पर पेश कीजिए। लोग आंकड़े भूल जाते हैं लेकिन एक अच्छी कहानी उन्हें हमेशा याद रहती है। अपने लफ्ज़ों में वो जादू पैदा कीजिए ताकि भाई या सामने वाला जो आदमी बैठा है ना, आपकी बात अच्छे से सुने, क्योंकि आजकल लोगों के अंदर थोड़ा सा जो पेशेंस लेवल है ना कम होता चला जा रहा है, तो उनको कम शब्दों में ज़्यादा बात सुनने की आदत हो गई है। अपने शब्दों को कम रखिए, ज़्यादा बात कहिए, स्टोरी टेलिंग जैसा मेथड इस्तेमाल करिए। आप किसी भी इंटरव्यू में बैठे हैं तो एक अपनी पूरी जर्नी, अगर आप वहाँ पर पूछते हैं आपसे कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, तो पूरी कहानी अपने बारे में बताइए कम शब्दों में और इफ़ेक्टिव शब्दों में। तो दोस्तों, 4:51 का समय है, हम सभी बात कर रहे हैं यूथ वेव के इस कार्यक्रम में स्किल डेवलपमेंट के सेगमेंट में कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स शार्प करिए, जो भी मैं आपको नुस्खे बता रहा हूँ उन नुस्खों को फॉलो करिए और मेरे यानी उत्कर्ष के साथ बनाइए। अरे बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुनिए और वापस लौट करके आइए, क्योंकि और भी प्यारे प्यारे कार्यक्रम आगे आ रहे हैं और कुछ समय हमारे यूथ वेव में भी बाकी है।
1: Not ready for this.

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
0: ओनली ऑन यूथ वेव,
1: यूथ की बात यूथ के साथ,
0: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
1: धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, 4:56 का समय और घड़ी की सुइयां बहुत तेज से सारा इशारा कर रही हैं भैया मुझे कि इस कार्यक्रम को यहीं पर थामा जाए। और यूथ वेव कार्यक्रम में आप सभी ने मेरे साथ में डिस्कस किया, स्किल डेवलपमेंट के सेगमेंट में कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हम सभी ने चर्चा की कि किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, शार्प कर सकते हैं, और किस तरीके से अपने बात करने के तरीके से सामने वाले का दिल जीत सकते हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो या किसी भी क्षेत्र में हम जाएं, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो या कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, हम डिबेटिंग करते हों या कंटेंट क्रिएशन करते हों, किसी भी फील्ड में हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये नीड ऑफ द टाइम है। और इस समय अगर आपकी बोलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है तो मुझे लगता है कि आप इस दुनिया को जीत सकते हैं। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम को यहीं पर थामा जाए और अगला कार्यक्रम जो है हमारा विशेष कार्यक्रम है जिसमें हम लोग क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति करेंगे और उसको आप सुनने के बाद में मेरे यानी उत्कर्ष के साथ बने रहेंगे और टॉप 10 गाने हम लोग प्ले करेंगे। टॉप 10 गाने में आपके लिए ऑलरेडी सेलेक्ट करके आ गया हूँ, आपको परेशानी या किसी भी दिक्कत की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखनी है, मेरे यानी उत्कर्ष के साथ बने रहना है, 100.7 FM रेनबो सुनते रहना है। आशा है कि आप सभी को इस कार्यक्रम में कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में और अपनी स्किल्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं उत्कर्ष आप सभी से इजाजत लेता हूं इस यूथ वेव कार्यक्रम से, आप बने रहिए, कहीं नहीं जाना है आपको क्योंकि अगला कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा क्षेत्र में अंबर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड तथा एसेंट के सर्टिकेट्स के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार की औद्योगोन्मुखी नीतियों, बेहतर आधारभूत अवसंरचना और निवेशक अनुकूल वातावरण के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश आज इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बन रहा है। यह निवेश, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति प्रदान करेगा। केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत पहले 40,000 करोड़ रुपए का PCB आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में स्वीकृति बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली से लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलेगी। जेवर से लखनऊ का सफर मात्र 1 घंटे 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर नोएडा पर आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चतुर्थ संस्करण की कर्टेन रेजर सेरेमनी और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की 105वीं जयंती के अवसर पर उनके विकास और विराजत में जुड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की कार्यवाही परिषद की अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में श्री नरसिम्हा राव के महत्वपूर्ण राजनीतिक सफर से जुड़े दुर्लभ चित्र, आधिकारिक दस्तावेज, भाषण, पत्राचार और अन्य सामग्री दिखाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण करेगी। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित होगा। आप सभी सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जी हाँ दोस्तों, 5:03 का समय और ये वक्त चला है विशेष कार्यक्रम क्षेत्रीय समाचार की विशेष प्रस्तुति मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ। इसको सुनिए और इसके बाद में लौट करके आइए मेरे यानी उत्कर्ष के साथ। और इस कार्यक्रम में हम सभी आगे सुनेंगे टॉप 10 गानों के साथ में कुछ प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत सी बातें।
1: क्रम में आज आप सुनेंगे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2026 में पद्मश्री से सम्मानित मंगला कपूर से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी प्रतिनिधि मनीष सिंह।
2: नमस्कार, मैं मनीष सिंह। हमारे सामने हैं मंगला कपूर जी, जिनको पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। आइए जानते हैं इनकी जिंदगी के बारे कुछ अंश हुए पर। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा और कैसा बीता ये बचपन, खासकर एसिड अटैक।
3: बचपन क्या होता है मैं जानती नहीं, क्योंकि 12 वर्ष की अवस्था थी तब मुझ पे एसिड अटैक किया गया। तो उसके बाद का जो जीवन है सारा हॉस्पिटल में ही बीता। तो बचपन नाम की जो चीज होती, जो खेलते कूदते बिताते हैं लोग, वैसा कुछ तो मेरे साथ गुजरा नहीं बहुत दिन तक। फिर लगातार

0: हॉस्पिटल में थी, ऑपरेशन होते गए शरीर के जगह जगह के, यहाँ भी हुए कुछ, पटना में हुए, तो कुल 36-37 ऑपरेशन मेरे हुए हैं शरीर के।
1: किस तरीके से एसिड अटैक के बाद आपकी जिंदगी बदल?
0: ऐसा है, एसिड अटैक के बाद तो ऐसा ही नहीं था कि शायद जी पाऊंगी, लेकिन पहले तो जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जब जी गई थी तो फिर परिवार वालों की मेहनत, माता पिता का पूरा सहयोग, और ठीक होते होते ही मुझे बहुत समय लग गया। उसके बाद बाहर निकलना या समाज में उठना बैठना, सामाजिक शारीरिक आर्थिक मानसिक हर तरह से मैं तो टूट ही गई थी, पूरा परिवार डिस्टर्ब था। तो वो यात्रा बड़ी दुखद रही और बहुत संघर्ष भरी रही, उसको छोटे में बयान करना बड़ा मुश्किल है, ये थोड़े से मैं कुछ बता दूं। जी,
1: कौन सी ऐसी शक्ति थी, कौन सी ऐसी हिम्मत थी कि आपने फिर से सर्वाइव किया, कौन सी वो शक्ति थी?
0: देखिए, पारिवारिक जो परिवेश हमारा रहा है वो आध्यात्मिक रहा है ज्यादा, और शक्ति की बात तक देखिए, छोटी बच्ची में यंग हो रही थी उस समय तक इतनी कोई शक्ति तो अंदर आती नहीं है। पढ़ने लिखने की उम्र में तो मैं बेड पे पड़ गई, और जब बेड पे पड़ गई तो ये जरूर है कि मुझे बचाने का, उठ खड़ा करने का श्रेय मेरे माता पिता को जाता है। तो जब मैं ठीक हुई घर में बैठी तो मेरे पिताजी को हमेशा ही चिंता रहती थी कि बच तो गई है लेकिन जीवन कैसे होगा, जीवन कैसे चलेगा, पढ़ना लिखना भी छूट ही गया था उसकी वजह से। तो वो बराबर प्रेरित करते रहे कि मतलब बेटा तुम्हें कुछ करना है, फिर से पढ़ाई चालू करो। और मेरा संगीत में बचपन से बहुत रुचि रही, तो उनको ये लगा कि ना वो संगीत ही सिखाए ताकि इसका मन भी उसमें उलझा रहे और कुछ कर सके उसमें। तो उन्होंने म्यूजिक स्कूल में मुझे डलवा दिया था, फिर वहां मैंने संगीत सीखना शुरू किया। फिर बीएचयू में मेरा एडमिशन हुआ, तो वहां से भी मुझे म्यूजिक और पीएचडी तक की पढ़ाई मैंने बीएचयू से की, और बराबर स्टेज प्रोग्राम फिर मैं करने लगी जहाँ मुझे काफी मान सम्मान मिला। मुझे मेरी आवाज को लोगों ने हाथों हाथ लिया, मुझे काशी की लता का सम्मान भी मिला है। तो इस तरह करके वो यात्रा वैसे शुरू हुई, और खैर फिर बीएचयू में मुझे नौकरी मिल गई और फिर वहाँ अध्यापन का कार्य मैंने शुरू किया। फिर मैं लेक्चरर के पद पे हुई थी, फिर लीडर प्रोफेसर तक की जर्नी मैंने वहाँ प्रोफेसर बनी, हेड बनी
1: की। तो क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव लगा बीएचयू में शिक्षक के दौरान आपको?
0: बीएचयू ने तो मुझे बहुत प्रेम दिया, मीन्स जब मैं सीख रही थी मेरे गुरुजनों का बहुत आशीर्वाद था, वो मुझे बराबर प्रेरित करते रहते थे आगे बढ़ने। उन लोगों से भी बहुत स्नेह मिला कि नहीं मंगला बहुत अच्छा गाती है तो तुम्हें तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुँच ही जाओगी। तो बाकी आवाज अच्छी थी जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ती चली गई।
1: क्या है ये सीरत, इसमें कौन से आपके जीवन के पहलू आए हैं?
0: जो मैं आपको बता रही हूँ कि बचपन से जो कहानी मेरी शुरू हुई उन संघर्षों को मैंने सीरत के अंतर्गत लिखा है ताकि और लोगों को भी प्रेरणा मिले जो थोड़ी सी नाकामयाबी से संघर्ष करने से चुराते हैं जी, आत्महत्या कर लेते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो उन लोगों को एक प्रेरणा मिले कि मैंने भी इस तरह, आप सोचिए मैं गलियों में रहती थी लेकिन ये लगन थी, माँ बाप की प्रेरणा थी, नहीं तुम्हें कुछ करना है, किसी लक्ष्य पे पहुंचना है। तो वहां से पैदल तक आती थी मैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ आर्थिक शारीरिक मानसिक और सामाजिक हर तरह की यातनाएं सहनी पड़ी उस बीच। तो सीरत मैंने इसीलिए लिखी। तो फिर बॉम्बे तक जब उसकी वो पहुंची तो फिर वहां से डायरेक्टर आए थे, मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी, उसके बाद फिर पूरी फिल्म जो है मराठी में बॉम्बे में बनी और महाराष्ट्र में वो पूरे प्रदर्शित भी की गई, और अब वही फिल्म हिंदी रूपांतर उसका हो रहा है।
1: आपको पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया, क्या खास मायने हैं इस सम्मान के आपकी जिंदगी में?
0: तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत मायने की मतलब सोच नहीं सकती। उसके पहले भी मुझे देखिए स्टेट लेवल के भी अवार्ड मिले हैं, अच्छे अच्छे अवार्ड काफी मिले हैं, योगी जी ने रोल मॉडल को पुरस्कार दिया, मोदी जी भी मिले हैं, राज्यपाल ने भी दिया है, सबने मेरा काम देख करके, मेरी लगन और मेरी निष्ठा। और अभी तक रिटायर हो गई हूँ लेकिन मैंने कर्म नहीं छोड़ा है, मैं अभी भी फील्ड वर्क करती हूँ, दिव्यांगों के साथ जुड़ के काम करती हूँ, और भी संस्थाओं से जुड़ी हूँ, बैठी नहीं हूँ, कुछ न कुछ करती रहती हूँ। और छठी पुस्तक का लेखन अभी आधे से ज्यादा हो चुका है और फिर वो भी जल्दी ही आ जाएगी।
1: शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों के लिए कौन सा संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए, शरीर बहुत मायने नहीं रखता, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को दिखा है, एक उम्र के बाद एक विकृति सभी की चेहरे पर आ जाती है, फिर वो चार्म नहीं रह जाता है। तो जो उम्र के साथ साथ बढ़ना ही है ना, बाद में बहुत खूबसूरती नहीं रह जाती है। तो शरीर ये तो चमड़ा है ना, ये खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, लेकिन आपका कर्म जो है वो हमेशा जीवित रहेगा। लेकिन मेरे साथ विशेष इसलिए था कि मेरे ऊपर एसिड अटैक से मेरी नाक गल के निकल गई, कान खराब हो गया, चेहरा विकृत हो गया, तो ये विशेष रूप से जो विकृति आई जो कि बचपन से ही शुरू हो गई, तो समाज ने भी उसको पहले बताया, तो आपको मुझे संबोधन मिलते थे, नाक कटी जा रही है, देखो इसका मुंह कैसा है, और तो ये भी मुझे

0: संबोधन सहना पड़ा। उस समय मैं नील थी, मेरे पास कुछ था नहीं, लेकिन इतनी उम्र बीतने के बाद ये समझ में आया कि आपके अंदर जो अंदर की जो खूबसूरती है, यानी आपके अंदर कोई विशेष बात है, आपने किसी फील्ड में कुछ विशेष अलग हटके किया है, तो उसको दुनिया सम्मान से देखती है और देखती रहेगी, क्यों नहीं देखेगी। कर्म लेकिन अच्छा करते रहे, तो बस यही कहना चाहूंगी कि देखिए अपनी जो इच्छा शक्ति है, अपना जो विल पावर है, क्षति हो गई कहीं से कोई बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर की जो प्रतिभा है उसको कोई नहीं जला सकता।
1: बिल्कुल,
0: आपके अंदर भी कोई ना कोई, हाँ, कोई ना कोई प्रतिभा तो होगी किसी क्षेत्र में। अगर आप जिंदा हैं तो फिर से लड़िए समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई है भैया। और आज इतने ज्यादा कंपटीशन है, और हमारे समय तो उतना विकल्प नहीं था, आज तो बहुत सारे विकल्प हैं। आप इस क्षेत्र में कंप्यूटर के चले जाइए तो संगीत में, म्यूजिक में भी इतने सारे, और परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, इतने रियलिटी शोज आते हैं, तो जिसमें जो भी प्रतिभा हो वो आगे बढ़ के उसको अपना संवारे और वही एक रास्ता पकड़ के हिम्मत नहीं हारे, उस पे चलता रहे जब तक जीवित है, लोगों के लिए प्रेरणा बने, है ना।
1: क्या बाकी रह गया आप जिंदगी में और कुछ करने के लिए, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में,
0: कोई भी क्षेत्र हो? मुझे ये नहीं लगता कर्म के लिए कोई उम्र नहीं होती है, और आदमी जब तक जीता है तब तक कर्म करते रहना चाहिए। और मेरा तो ये अनुभव भी है, अगर आप शरीर को चलाते रह रहे हैं तो उम्र कोई मायने नहीं रखती है, अंतिम समय तक लड़ना चाहिए, कर्म करते रहना नहीं। और जो भी मुझसे अच्छे से अच्छा हो पाएगा वो करना चाहूंगी, अभी भी कर रही हूँ, आगे भी जब तक है जिंदगी, जब तक मैं सक्षम हूँ चलने फिरने में, मैं बिल्कुल करूंगी। ये तो अचीवमेंट्स, मैंने तो पद्मश्री मांगा नहीं था, ये मांगे नहीं थे, अपने आप आते गए, मिलते गए, तो ये होता क्या है, उससे एक जो करने का उत्साह है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है कि नहीं चलो मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज समाज भी पूछ रहा है, जो समाज मुझे नाकारा समझता था आज वो समाज भी मुझे पूछ रहा है, बुला के वो भी मुझे सम्मान देना चाहता है। तो आपका जो कर्म है वो आपको सब कुछ दिला सकता है, हाँ, इसलिए करते रहना।
1: थोड़ी सी बात लेके आपका बहुत बहुत आभार,
0: धन्यवाद।
2: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2026 में पद्मश्री से सम्मानित मंगला कपूर से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी प्रतिनिधि मनीष सिंह।
3: स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो,
4: धड़कन लखनऊ की।
5: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
6: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
5: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
7: रियासों 5:12 का समय, अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम लखनऊ से, और चलिए अब आगाज करते हैं टॉप 10 गानों के इस सिलसिले का। तो इस टॉप 10 गाने के इस कार्यक्रम में भैया हम लोग 10 गाने सुनते हैं, और उन 10 गानों को सेलेक्टिवली हम जो आरजेस हैं वो लेकर के आते हैं आपके लिए, बहुत ही चुन चुन के, ढूंढ ढूंढ करके। तो उन गानों को इन्जॉय करिए, क्योंकि आज के गाने जो हैं टॉप 10 में वो बहुत ही सूदिंग है, रिलैक्सिंग है। तो अपने आप, अगर आप घर में हैं या कहीं पर जा रहे हैं बाहर, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सो मत जाइएगा, लेकिन अगर आप रिलैक्सिंग मोड में हैं तो और भी ज़्यादा रिलैक्स करने के लिए ये कार्यक्रम आपके लिए आ चुका है। इन गानों को एंजॉय करिए, इन गानों को सुनिए, और मेरे यानी उत्कर्ष के साथ बने रहिए, और 100.7 FM रेनबो की जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसको ट्यून इन करके हमेशा रखे रहिएगा भैया।

जी हाँ दोस्तों, 5:22 का समय और मैं तेरे पास में हूँ और आप मेरे पास में हैं। हम सभी सुन रहे हैं टॉप 10 गानों के इस सिलसिले को। तो दोस्तों, हम इस टॉप 10 गाने के सिलसिले में 7वें गाने तक पहुँच चुके हैं। तो आइए 7वें गाने को प्ले करते हैं, इन्जॉय करते हैं, सूदिंग मूड को बरकरार रखते हैं, कम्फर्टेबल होते हैं और डूब जाते हैं उन यादों में, जिन यादों को हम अक्सर अपने दिमाग में अवॉइड करते रहते हैं।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

जी हाँ दोस्तों, 5:36 का समय और इस टॉप 10 गानों के इस सीक्वेंस में हम सभी पहुंच चुके हैं छठे गाने की तरफ। और हम लोग इसके बाद जो गाना सुनेंगे वो होगा नंबर 5 का गाना। तो नंबर 5 का गाना सुनिए, उसको एंजॉय करिए और इस सूदिंग सूदिंग से मोड में जो आप हैं, क्योंकि क्या होता है कि भैया हमारे मोबाइल फ़ोन को तो हम लोग एयरप्लेन मोड पर रख देते हैं, लेकिन कभी कभी अपने दिमाग को भी एयरप्लेन मोड पर रखना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। इन सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कंफर्टेबल से मखमली गानों को सुनिए और मेरे यानी उत्कर्ष के साथ बने रहिए और 100.7 FM रेनबो ट्यून इन रखिए, क्योंकि भैया गाने यहीं पे बज रहे हैं ना। और टॉप 10 गानों के सिलसिले में 4 गाने अभी और बाकी हैं, सो मत जाइएगा बस।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
2: जी हाँ दोस्तों, 5:46 का समय और आप सुन रहे हैं टॉप 10 गानों के सिलसिले को मेरे यानी उत्कर्ष के साथ और फ्रीक्वेंसी है 90.7 FM रेनबो। तो दोस्तों, धड़कन लखनऊ की तो यही है और मुझे लगता है कि इसमें जितने भी गाने आज आप सभी सुन रहे हैं आपकी धड़कन का हिस्सा बन रहे हैं, आपकी धड़कन को रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि ये गाने सूदिंग हैं। ये गाने इस तरीके से लिख करके मैं लेकर आके आया हूँ कि भैया 10 गाने मैं बजाऊँ तो 10 गाने आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करें, आपको सूदिंग करें और इन गानों को सुनते रहिए। तीसरे नंबर का गाना आपके रेडियो सेट्स पर आ चुका है, तीसरे नंबर के गाने को एंजॉय करिए। मेरे यानी उत्कर्ष के साथ बने रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ दोस्तों, 5:55 का समय और टॉप 10 गानों के इस सिलसिले में हम पहुंच गए हैं नंबर एक के गाने की तरफ। आइए उस नंबर एक के गाने की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे यानी उत्कर्ष को इजाज़त दीजिए और मैं चलता हूँ आपके लिए दूसरा कार्यक्रम लाने की ओर। इसका नाम है शाम अवध। कार्यक्रम में हम लोग मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं, लखनऊ के इवेंट्स के बारे में जानते हैं, ट्रैफिक अपडेट लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर सुनना है आपको तो आपकी कुर्सी की पेटी खुलनी नहीं चाहिए, आप वहीं पर बैठे रहिए, वहीं पर मौजूद रहिए, क्योंकि अगला कार्यक्रम जो है वो शामे अवध है, बहुत ही खास है, बहुत ही खूबसूरत से गाने भी उसमें मैं प्ले करूँगा आपके लिए। तो दोस्तों नंबर एक का गाना सुनिए, इस टॉप 10 गाने के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं, उसके बाद में बढ़ते हैं अपने शामे अवध की ओर और आगाज़ करते हैं इस लखनऊ की खूबसूरत सी शाम का।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज अयोध्या में राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत धाम क्षेत्र के मोहल्ला दुराही कुआं में नवनिर्मित दो आंगनबाड़ी केंद्रों और स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने आंगनबाड़ी केंद्रों की बाल वाटिकाओं का अवलोकन किया और बच्चों से संवाद किया। इसके बाद राज्यपाल ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पहुंचकर विकास कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध नगर में अंबर एवं एसेंट के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यह स्थान इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के हब के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो चीज़ दुनिया से आयातित होती है वह यहाँ बने और दुनिया में निर्यात हो। श्री योगी ने कहा कि कोरिया के सहयोग से इस इकाई को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि कोरिया का उत्तर प्रदेश के साथ काफ़ी ऐतिहासिक संबंध है। ऐसी मान्यता है कि वहां की रानी क्वीन होक अयोध्या की राजकुमारी श्री रत्ना थी और जलमार्ग से वहां पहुंची थीं। उन्होंने कहा कि उनकी स्मृति में अयोध्या एक पार्क का भी निर्माण कराया गया है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कल से होगी। प्रदेश के सभी जनपदों में कल बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इस क्रम में आज उन्नाव में सदन विधायक पंकज गुप्ता ने जिला अस्पताल से जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। अमरोहा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमाकांत सागर ने 4 प्रचार वाहनों को रवाना किया। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में फायर सेफ्टी की सघन चेकिंग जारी है। इसी क्रम में अलीगढ़ नगर निगम ने पूरे शहर में 100 नए फायर हाइड्रेट पॉइंट्स लगाने का फैसला किया है। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रोजेक्ट के तहत सभी हाइड्रेट पॉइंट्स नगर निगम की मुख्य पानी की सप्लाई लाइन से जोड़े जाएंगे। जरूरत पड़ने पर दमकल के वाहन इनसे पाइप जोड़कर सीधे पानी ले सकेंगे, जिससे रिस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सभी सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, 6:03 का समय और मैं उत्कर्ष आपके साथ जुड़ चुका हूँ एक बार और, क्योंकि कार्यक्रम आ चुका है आप सभी के रेडियो सेट्स पर शाम में अवध का, जिस कार्यक्रम को आप सभी बहुत ज़रा प्यार करते हैं और बहुत ज़रा इन्जॉय भी करते हैं। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। इस कार्यक्रम में जैसा कि आप सभी को पता है, ट्रैफिक अपडेट्स पर चलती हैं आपको। लखनऊ में ऐसे क्या हलचल चल रही है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है, और कैसे कैसे इवेंट्स हो रहे हैं, करंट अफेयर्स क्या हैं भाई लखनऊ के, तो लखनऊ के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है और शाम अवध कार्यक्रम भी आपके रेडियो सेट्स पर ऑन हो चुका है। आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा करके रखिए, 100.7 पर रखिए, और मेरे यानी उत्कर्ष के साथ बने रहिए, क्योंकि शाम अवध का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
3: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट

0: Road, Dubaga.
1: जी हाँ दोस्तों, 6:10 का समय और शाम अवध कार्यक्रम में मैं उत्कर्ष हूँ आपके साथ। और आप जिस फ्रीक्वेंसी पे हैं उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं 100.7 FM रेनबो, और वो हम सभी की धड़कन है और लखनऊ की धड़कन है। तो भैया जान लेते हैं आज लखनऊ के ट्रैफिक का हाल क्या है। तो वीकेंड का मौसम है तो जाहिर सी बात है भैया कि लखनऊ इस वक्त सड़कों पर पूरी तरीके से मौजूद होगा। 1090 चौराहा, मरीन ड्राइव और हज़रतगंज की तरफ जाने वाले रास्ते जो हैं वो ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। तो अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो फ्रस्ट्रेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार के शीशे थोड़े से नीचे कीजिए। मैं जानता हूँ कि बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि एल नीनो जैसा एक पता नहीं क्या थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, जो ज्योग्राफी के मुझे कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। लेकिन एल नीनो की वजह से भैया मानसून में देरी हो रही है। इस समय पर अक्सर हम लोग देखते हैं कि जून के अंत में मानसून की झमाझम बारिश होती है, लेकिन अभी लखनऊ में बारिश नहीं पहुंची है। तो आशा है कि भैया बारिश जल्दी से पहुंचे और हम उसका लुत्फ उठाएं, आनंद लें। लेकिन बाहर अभी थोड़ी सी हवा हो सकता है कि अच्छी हो, तो शीशा थोड़ा सा डाउन करिए, फ्रीक्वेंसी ऑन रखिए 100.7 FM रेनबो की, और सुनते रहिए मेरे साथ यानी उत्कर्ष के साथ इस शाम अवध के खूबसूरत से कार्यक्रम को।

शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़

0: की उम्र में हड्डियों की कमजोरी
1: थायराइड इम्बैलेंस दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन एडिसन्स डिजीज पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज पीसीओडी या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा
2: स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो
3: धड़कन लखनऊ की

सुनना बहुत पहले से शुरू कर चुके हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की, और सुनना शुरू कर चुके हैं अगर आप 100.7 FM रेनबो, तो रुकना भी आपको नहीं है क्योंकि शाम अवद कार्यक्रम चल रहा है। और आइए बात कर लेते हैं हमारे लखनऊ के कुछ इवेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे अवध शिल्पग्राम में हमारा बहुप्रतीक्षित मैंगो फेस्टिवल चल रहा है। दशहरी से लेकर मलिहाबादी चौसा तक आम की सैकड़ों वैरायटीज़ वहाँ मौजूद हैं। अगर आप आज शाम या कल संडे को आपका कोई भी प्लान नहीं है और आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं, तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर ज़रूर जाएं, अपने परिवार के साथ जाएं और फलों के राजा स्वागत करें, फलों के राजा का, और पूरे शानो शौकत के साथ में फलों के राजा का स्वागत करें और मीठे मीठे आमों का लुत्फ उठाएं और इस फेस्टिवल का एंजॉय करें। फिलहाल आप एंजॉय करिए शाम अवध कार्यक्रम मेरे यानी उत्कर्ष के साथ, और बने रहिए 100.7 FM रेनबो पर।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
2: जी हाँ, 6:32 का समय और आप सभी सुन रहे हैं शाम अवध के इस खूबसूरत से कार्यक्रम को, मेरे यानी उत्कर्ष के साथ आपके फेवरेट रेडियो चैनल 100.7 FM रेनबो पर। तो दोस्तों, आइए शहर की कुछ एक और हलचल के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप थिएटर से बहुत ज़रा प्यार करते हैं तो एक बहुत दिलचस्प खबर है आप सभी के लिए कि भैया, आज भारतेंदु नाट अकेडमी में एक बहुत ही बेहतरीन नाटक का मंचन हो रहा है जो लखनऊ के इतिहास और यहाँ की बदलती तहजीब पर आधारित है। हमारे शहर का जो थिएटर कल्चर है वो देश भर में मशहूर है। अगर आप मॉल और फिल्मों से हटकर कुछ लाइव और रूहानी देखना चाहते हैं तो शहर के थिएटर्स का रुख ज़रूर कीजिए, बीएनए जाइए और वहाँ पर थिएटर का लुत्फ उठाइए। और जो कलाकार हैं हमारे, जो थिएटर करते हैं, जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, उनका हौसला अफजाई करिए। तो दोस्तों, मैं उत्कर्ष हूँ आपके साथ, आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की शाम में। आपका कार्यक्रम थमा नहीं है, यूं ही चलता रहेगा और प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर एनर्जेटिक से एंथुसियास्टिक से गाने आपके रेडियो सेट्स पर आते रहेंगे।

जी हाँ दोस्तों, 6:43 का समय, मैं उत्कर्ष हूँ आपके साथ और शाम अवध के कार्यक्रम में हम सभी चर्चा कर रहे हैं लखनऊ की गर्मी के बारे में। तो भैया, लखनऊ की गर्मी बहुत ज़्यादा आजकल आसमान तक पहुंच चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है इस समय। अगर आप देखें तो जून के इस समय में मानसून हिट करता है और बारिश होती है झमाझम, लेकिन एल नीनो के कारण हमारे बादल जो हैं भैया, जो प्यारे प्यारे बादल हैं जो बारिश लेकर के आते हैं हमारे देश में, वो बादल अभी तक हमारे देश में आ नहीं पाए हैं। तो उनका थोड़ा और इंतज़ार हमको करना पड़ेगा, इस बारिश का थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि हमको इस गर्मी से थोड़ी सी राहत मिले। और शाम थोड़ी हो चुकी है, थोड़ी सी राहत मिलना शुरू हो चुका है, सभी घर से बाहर निकलने की कतार में लग चुके हैं, गाड़ियाँ अपनी निकाल चुके हैं और कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं। कोई रिवर फ्रंट जा रहा है, कोई हज़रतगंज जा रहा है, कोई 1090 जा रहा है, लेकिन भैया एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ट्रैफिक उतना ही ज़्यादा है इन इलाकों में, तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लेकर के चलिए। 6:44 का समय है, शाम अवध कार्यक्रम चल रहा है, मैं उत्कर्ष हूँ आपके साथ और 100.7 FM रेनबो पर आप मौजूद हैं।

जी हाँ दोस्तों, 6:54 का समय और घड़ी की सुइयां बहुत तेज से मुझे इशारा कर रही हैं कि भैया इस शामे वर के कार्यक्रम को यहीं पर थामा जाए और अगले कार्यक्रम जिसका नाम है हेलो एफएम, इसमें आप सभी लाइन लगा करके अभी खड़े होंगे फ़ोन का अपना डायलर अपने हाथ में ले करके कि भैया फ़ोन हमारा लगे और हम अपने पसंदीदा गाने को रेडियो में शेयर करें और अपना पसंदीदा गाना सुनें। तो दोस्तों बिल्कुल आपका कॉल उठाया जाएगा, आपसे बात करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन एक आखिरी गाना सुनते हुए जाइए और जल्दी से लौट करके आइए मेरे यानी उत्कर्ष के साथ, क्योंकि हेलो एफएम कार्यक्रम में आपकी आवाज़ सुनने के लिए मैं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ।

नमस्कार, आप सुनिए प्रदेश की टॉप 10 न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध नगर में अंबर एवं एसेंट के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यह स्थान इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट

हब के रूप में विकसित हो रहा है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गौतम बुद्ध नगर में शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत पहले 40,000 करोड़ रुपए की PCB आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दिल्ली से लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जेवर से लखनऊ तक सफर मात्र 1 घंटे 40 मिनट में पूरा होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज अयोध्या में राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत 2 आंगनबाड़ी केंद्रों और स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में विकास कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की परिकल्पना को साकार कर रही है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कल से होगी। प्रदेश के सभी जनपदों में कल बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। उन्नाव में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने जिला अस्पताल से जागरूकता रैली को रवाना किया। रैली के माध्यम से पोलियो की खुराक पिलाने की अपील की गई। वहीं अमरोहा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमाकांत सागर ने 4 प्रचार वाहनों को रवाना किया। पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से आज वाराणसी में जनपद स्तरीय जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से CMO डॉक्टर मुकेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जौनपुर के प्रगतिशील किसान सूर्यभान यादव को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। जिला उद्घाटन अधिकारी डॉक्टर सीमा सिंह राणा ने बताया कि सूर्यभान यादव ने 1 हेक्टेयर भूमि में आम की 140 प्रजातियों का मॉडल बाग विकसित किया है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में फायर सेफ्टी की सघन चेकिंग जारी है। इसी क्रम में अलीगढ़ नगर निगम ने पूरे शहर में 100 नए फायर हाइड्रेट पॉइंट्स लगाने का फैसला किया है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 8 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। 7:03 का समय और वक्त आ चला है हेलो एफएम के कार्यक्रम के लिए, और जिस कार्यक्रम का आप सभी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं वो कार्यक्रम आ चुका है। और मुझे पता है कि भैया आप बहुत देर से कॉल लगा रहे थे और एक पहले लिसनर का कॉल मैंने उठा भी लिया है। आइए चलिए उनसे बात करते हैं, उन जानते हैं कि वो कहाँ से हैं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं और हमसे क्या कहना चाहते हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं, अपना नाम बताइए सबसे पहले।
1: जी मोहम्मद आसिफ अंसारी, हैदराबाद तेलंगाना से सर जी बात कर रहे हैं। और बताइए उसका सर जी कैसे हैं।
0: मैं एकदम बढ़िया हूँ आसिफ जी, क्या बात है, सबसे पहला कॉल आपका लगा और बड़ा मजा आएगा आपसे बात करने में।
1: टाइम ही नहीं 2 महीने से मिल रहा कॉल लगाने का, ईमेल से ही काम चला रहे हैं।
0: चलिए कोई बात नहीं, आज आपको समय मिला और आपका कॉल भी लगा, बहुत बहुत बधाई आपको। बताइए सबसे पहले कौन सा आप गाना सुनेंगे।
1: गाना ये दिल आतिकाना का है, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में।
0: क्या बात है।
1: और बताइए साहब, उधर का मौसम बताइए लखनऊ का।
0: भाई साहब मौसम तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है और मॉनसून लेट हो चुका है, जैसा कि आप सभी को पता है।
1: वन वीक से बारिश हो रही है।
0: अच्छा, वहाँ पे बारिश हो रही है।
1: बारिश हो रही है यहाँ तक।
0: चलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि तेलंगाना ही आया जाए अब, है ना।
1: आओ ना, घुमाते आप लोगों को।
0: चलिए मैं बिल्कुल आता हूँ, क्योंकि
1: खिलाते आपको यहाँ का।
0: हाँ बिल्कुल मैं आता हूँ, क्योंकि भाई बारिश वहाँ पे हो रही है तो मौसम थोड़ा सा
1: मौसम रहता है।
0: चलिए बहुत अच्छा है आपका गाना,
1: हवा भी अच्छी चलती है।
0: हाँ बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं आता हूँ तेलंगाना, आपको बताता हूँ और आपका गाना प्ले करते हैं, गाना सुनते
1: कुछ
0: हैं।
1: लोगों के नाम ले लें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, नाम लीजिए आप।
1: हमारे बड़े भाई हैं मोहम्मद तालिब और सादिया अंसारी, साहिबा अंसारी, बबीता राव दीदी और श्री रावत दीदी।
0: क्या बात है,
1: चंडीगढ़ से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है।
1: कौशाम्बी के मेरे दोस्त हैं मोहम्मद राशिद भाई।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, इन सभी को ये गाना सुनाते हैं,
1: जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी लोगों को।
0: चलिए सभी को ये गाना डेडिकेट करते हैं, इस गाने का एंजॉय करते हैं और बने रहते हैं 100.7 FM रेनबो पर।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: जी हाँ दोस्तों, 7:10 का समय और हेलो एफएम कार्यक्रम में मैं उत्कर्ष हूँ आपके साथ, और 100.7 एफएम रेनबो को आप ट्यून इन कर चुके हैं। तो आइए जल्दी से, हमारे लिसनर बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं हमसे।

0: बात करने के लिए, हमको अपना पसंदीदा गाना बताने के लिए, और उन्होंने बहुत दूर से भैया हमको कॉल किया है, तो आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि भैया उनको कौन सा गाना सुनना है और हमसे क्या कहना चाहते हैं। हेलो,
1: दूर है आपसे मगर कोई गम नहीं,
0: वाह,
1: दूर है कर भी आपको बुलाने वाले हम नहीं,
0: क्या बात है।
1: मुलाकात हो चाहे ना हो तो क्या हुआ, आप दोस्तों की मुलाकात से कम नहीं,
0: क्या बात है। बहुत बढ़िया जो आपका इंट्रोडक्शन है, आपने शेर के साथ में अपनी बात शुरू करी, क्या बात है, बहुत ही मजा आ गया। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए भाई साहब आप।
1: सर जी प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: बीपीओ कोटली थान सिंह डिस्ट्रिक्ट जालंधर से मिंटू चंदेल जी।
0: क्या बात है मिंटू जी, आप जालंधर से आपने हमको कॉल किया है और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी शायरी सुन करके। सबसे पहले बताइए भाई साहब आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
1: सबसे पहले तो यही है भी मैं जो ये जो मेरी पसंद और मेरे एक बहुत ही प्यारे मित्र ने वो जिला हुशियारपुर से और टेलरिंग टेलर मास्टर ने, उनका नाम है पाली साहब। कभी कौन मैं उनको भी उनको भी कहा है क्या बताया भी सुना करें एफएम रेनबो लखनऊ पर, और उन्होंने डाउनलोड किया है ऐप पर, ऐप पर बहुत सुनते हैं और मैं भी ऐप पर सुनता हूँ, और बहुत ही अच्छे प्रोग्राम लगते हैं आप लोग, आपको जो भी प्रोग्राम पेश करते हैं ज्यादातर, खास करके मैं यही प्रोग्राम सुनता हूँ और जो रात को चलता है रजनीगंधा
0: जी जी मैं सुनता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सुनते हैं और इस कार्यक्रम को आप पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगा यह बात सुन करके जी। बताइए कौन सा आप गाना सुनेंगे, हमारे श्रोताओं को कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे।
1: हाँ जी आप सुना दीजिए, फिल्म है आसपास और साहब और लता जी की आवाज में शहर में चर्चा है।
0: शहर में चर्चा है, क्या बात है। चलिए आपके इस गाने को प्ले करते हैं और आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। किसी का नाम अगर आप लेना चाहते हैं, डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं
1: जी। बस वही पाली साहब है और जो भी सुनना इस टाइम 100.7 सुन रहे हैं, सभी को खास करके जो एक गुड़िया आती है ना, दो गुड़िया आती जो नाम होते हैं पिंकी रिंकी
0: जी जी जी जी जी,
1: उसका नाम बहुत मैं सुनता हूँ रेडियो पर, बहुत ही अच्छा लगता है और उनको भी ये गाना पसंद आएगा और खुश रहे आबाद रहे आप लोग सभी लोग।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मिंटू जी, जालंधर से आप हमको सुनते रहिए और इसी तरीके से हमको प्यार करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: शुक्रिया आपका, शुक्रिया।

जी हाँ दोस्तों, 7:18 का समय और आप सुन रहे हैं हेलो एफएम कार्यक्रम मरियानी उत्कर्ष के साथ अपने फेवरेट रेडियो सेट 100.7 एफएम रेनबो पर। तो दोस्तों 7:18 का समय है, 7:20 से आप सभी सुनेंगे प्रादेशिक समाचार लखनऊ से और उसके ठीक बाद 2 मिनट तक आप सुनेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 की डेली अपडेट्स, वो भी अंग्रेजी में। तो दोस्तों प्रादेशिक समाचार सुनकर के और फीफा वर्ल्ड कप जो फुटबॉल के प्रेमी हैं वो अपनी इन सभी खबरों को सुनकर के वापस आइए, क्योंकि आपके कॉल का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं और आपसे बात करने के लिए, आपके पसंदीदा गाने सुनने के लिए मैं यहां पर इंतज़ार कर रहा हूं। दोस्तों मेरे यानी उत्कर्ष के साथ बने रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल FM रेनबो।
3: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गौतमबुद्ध नगर में दो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रखी आधारशिला। 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री एमएसएमई दिवस पर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो में सम्मिलित हुए, कहा विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में एमएसएमई उद्यमों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दो दिवसीय दौरे पर पहुंची अयोध्या। नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का किया उद्घाटन। अवध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यों की समीक्षा की।

0: नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गौतमबुद्ध नगर में 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने सेक्टर 96 में बने नोएडा प्राधिकरण के नए मुख्य प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में दो बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला भी रखी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ केन्द्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में आज प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब बन रहा है। ये निवेश रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति प्रदान करेगा।
1: सेमीकंडक्टर यानी यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत का केंद्र बिंदु या क्षेत्र बने और आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नए हब के रूप में इस क्षेत्र को स्थापित करने के लिए जो चीज दुनिया से हम आयात करते हैं वह हमारे यहाँ बने।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीसीबी सर्किट के बारे में विस्तार से समझाते हुए कहा कि पहले इसे भारत आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी, जिन्होंने एक ऐसा विजन दिया कि प्रधानमंत्री जी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को आज उत्तर प्रदेश में जेवर में ले आए, तो अब सेमीकंडक्टर के बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा सेंटर जेवर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि दिल्ली से लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलेगी। लखनऊ से जेवर तक का सफर 1 घंटा 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में अपने संबोधन में भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग की इकाइयां लगने से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे। एमएसएमई दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों और उद्यमियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर आज देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आज नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ग्रेट ट्रेड शो के चौथे संस्करण के कर्टन रेजर सेरेमनी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्य कर रही हैं, जिसमें 3 करोड़ से अधिक लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना तभी साकार होगी जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकाई मजबूत होगी।
3: कोई भी बड़ा उद्योग का आधार बनता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। बड़ा उद्यम तभी सफल हो सकता है जब हमारे पास आधार होगी, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। विकसित भारत की संकल्पना तब पूरी होगी जब खुशहाल किसान भी होगा, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को भी उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें।
0: कार्यक्रम को प्रदेश औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी संबोधित किए कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मूल्यों, आदर्शों की राजनीति अपनाकर शून्य से शिखर तक की यात्रा की है। सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की यात्रा सत्ता प्राप्त की यात्रा नहीं है, बल्कि सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और समन्वय की बेहतरीन यात्रा है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा आज सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास का प्रतीक बनी है।
4: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नयन का जो आधार है और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रखकर के बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य, आदर्श, संस्कार समाहित हो सके, इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज

0: AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज दो दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंची। राज्यपाल ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत अयोध्या धाम क्षेत्र में ब्रह्मकुंड गुरुद्वारे के निकट नवनिर्मित दो आंगनबाड़ी केंद्रों और स्मार्ट क्लास रूम का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने इस दौरान बच्चों के साथ संवाद भी किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बच्चों के समुचित शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रारंभिक अवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संतुलित पोषण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बच्चे की प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है, उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र व्यक्तित्व निर्माण की महत्वपूर्ण आधारशिला बनते हैं। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पहुंचकर विकास कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कल से होगी। प्रदेश के सभी जनपदों में कल बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसी क्रम में आज उन्नाव में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने जिला अस्पताल से जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से अभिभावकों से आग्रह किया गया कि वे अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। अमरोहा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमाकांत सागर ने 4 प्रचार वाहनों को रवाना किया। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में फायर सेफ्टी के सघन चेकिंग जारी हैं। इसी क्रम में अलीगढ़ नगर निगम ने पूरे शहर में 100 नए फायर हाइड्रेट पॉइंट्स लगाने का फैसला लिया है। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रोजेक्ट के तहत सभी हाइड्रेट पॉइंट्स नगर निगम की मुख्य पानी की सप्लाई लाइन से जोड़े जाएंगे। जरूरत पड़ने पर दमकल के वाहन इनसे पाइप जोड़कर सीधे पानी ले सकेंगे, जिससे रिस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कल प्रयागराज में ऊर्जा विभाग, नगर विकास विभाग एवं विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनहित से जुड़े सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने बिजली से संबंधित किसी भी समस्या अथवा शिकायत का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा है कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाकर उन्हें तय समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कर लिया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि वर्षा काल को देखते हुए सभी नालों के समयबद्ध सफाई कर जल भराव की समस्या से नागरिकों को राहत दिलाई जाए। जौनपुर के प्रगतिशील किसान सूर्यभान यादव को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी डॉ सीमा सिंह राणा ने बताया कि सूर्यभान यादव ने 1 हेक्टेयर भूमि में आम की 140 प्रजातियों का मॉडल बाग विकसित किया है। इस बाग से प्रतिवर्ष 200 क्विंटल आम का उत्पादन होता है, जिससे उन्हें करीब 4 लाख रुपए का वार्षिक लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी 3, 4 और 5 जुलाई में आयोजित होने वाले आम महोत्सव में श्री यादव को यह सम्मान दिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गौतम बुद्ध नगर में 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रखी आधारशिला। 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री एमएसएमई दिवस पर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो में हुए सम्मिलित। कहा, विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में एमएसएमई उद्यमों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दो दिवसीय दौरे पर पहुंची अयोध्या। नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों का किया उद्घाटन। अवध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यों की समीक्षा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन अब समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: Through. Egypt's 1-1 draw with Iran also sees them progress. Iran will have to wait to see if they will qualify. They had a late goal ruled out and also hit the post in the final minute of stoppage time. Belgium

0: जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हेलो एफएम कार्यक्रम में। मैं उत्कर्ष हूँ आपके साथ और 7:32 का समय हो चुका है। आप सभी ने 7:20 से 7:30 तक प्रादेशिक समाचार सुने, उन्हें सभी समाचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आपने फीफा वर्ल्ड कप 2026 की लाइव अपडेट्स भी सुनी, वो भी प्योर अंग्रेजी में। तो दोस्तों आइए इस हेलो एफएम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे जो श्रोता हमारे साथ में बहुत देर से जुड़े हुए हैं उनसे बात करते हैं, उनका पसंदीदा गाना बजाते हैं और एंजॉय करते हैं। भाई साहब हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन साहब बात कर रहे हैं भाई?
1: रिंकू बोल रहा हूँ, नारायणपुर से।
0: जी
1: नारायणपुर से रिंकू।
0: थोड़ा सा तेज बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है।
1: नारायणपुर से रिंकू बोल
0: रहे हैं। रिंकू जी क्या बात है, रिंकू जी कैसे हैं आप?
1: बाराबंकी जिले।
0: अरे वाह, बाराबंकी से बात कर रहे हैं आप रिंकू जी?
1: पड़ता है।
0: अच्छा चलिए, मैं आऊँगा किसी दिन। और ये बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: गाना वो सुना दीजिए। नाम नहीं याद लेकिन गाने के बोल है, आपकी दुश्मनी कबूल, मुझे आपकी दोस्ती से डरता हूँ।
0: आपकी दुश्मनी कबूल,
1: दोस्ती से डरता हूँ।
0: क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप मेरी दोस्ती। चलिए लेकिन हम लोगों की दोस्ती होगी कि नहीं रिंकू जी?
1: नहीं, आपकी दोस्ती है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप मुझे अपना दोस्त मानते हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा, मेरी भी तमन्ना थी कि मैं रिंकू जी से बात करूं।
1: इस चैनल पर दूसरी बार आज बात हुई, एक बार सर्विस सर्विस बात हुई।
0: अच्छा चलिए,
1: म्यूजिक आर्टिस्ट हूं।
0: क्या है आप?
1: म्यूजिक बजाते हैं।
0: अरे वाह क्या बात है, तो चलिए किसी दिन समय होगा तो आपके बिल्कुल सुनेंगे, है ना? और चलिए मैं मेले में आता हूँ और आपसे मिलता हूँ, आप वहाँ पे मुझे सुनाइएगा, है ना? और चलिए आपके गाने को उसको प्ले करते हैं। और किसी को डेडिकेट कर रहे हैं, कुछ और बोलना चाहते हैं, किसी का नाम लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, इनको ये गाना।
1: ओमकार हैं सीतापुर से।
0: जी
1: विनीत हैं सीतापुर से।
0: चलिए
1: और रोहिणी मोहिनी हरदई से।
0: वाह,
1: और रिंकी पिंकी रायबरेली से।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, इन सभी को ये
1: समस्त सुनने वालों को और आपकी चैनल टीम को और आपको।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे भी डेडिकेट किया, हमारी पूरी टीम को डेडिकेट किया और जितने भी नाम आपने लिए हैं उनको ये गाना सुनाते हैं। और आप भी सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। चलिए बहुत अच्छा लगा, और इस प्यार को बरकरार रखिएगा और बने रहिए आप 100.7 FM
1: रेनबो। मिलना चाहते हैं लेकिन मिलने के कोई जुगाड़ हो तो
0: बताएं। चलिए बिल्कुल, किसी दिन जब भगवान चाहेंगे तब जरूर मिलेंगे हम लोग, है ना? बिल्कुल आइए, ठीक है, मिलते हैं हम लोग। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपका। नमस्ते नमस्ते।

0: जी हाँ दोस्तों, 7:41 का समय और हेलो एफएम कार्यक्रम में मैं उत्कर्ष आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और आप लगातार हमको कॉल कर रहे हैं, अपने पसंदीदा गाना बता रहे हैं और उन पसंदीदा गानों को हम प्ले करते हैं, आपसे बात करते हैं। तो आइए इसी तरीके से इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक लिसनर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, उनके पसंदीदा गाने को प्ले करते हैं और वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, आइए उन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं। हेलो।
1: हाँ भाई साहब।
0: जी भाई साहब, कैसे हैं आप?
1: हम बहुत बढ़िया है भाई साहब। पानी वाली गिरना चाहिए।
0: हाँ पानी, बिल्कुल पानी बिल्कुल गिरना चाहिए।
1: बहुत गर्म है भाई साहब,
0: बहुत गर्म है और मुझे लगता है कि मॉनसून जल्दी से आए तो मजा आए फिर, है ना?
1: हाँ बिल्कुल भाई साहब, 28-29 तक आना चाहिए उसे।
0: चलिए 28-29 तक देखते हैं, एक दिन एक दो दिन और बाकी है। चलिए सबसे पहले हाँ अपना नाम बता दीजिए भाई साहब।
1: श्री प्रकाश तिवारी उन्नाव से बोल रहे हैं भाई साहब। दोस्ताना पिक्चर का गाना सुनना है।
0: वाह,
1: मेरे दोस्त किस्सा है क्या हो गया?
0: और मेरे दोस्त
1: आपको सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करेंगे आपकी टीम को, और फिर हमारे बाबू अंसारी, प्रवीण अंसारी, रिंकी पिंकी, संतोष, हरकेश और ओंकार भाई और सत्यम माई है भाई साहब, थैंक यू।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है और आपकी बात मुझे लगता है खत्म हो चुकी है, आपके गाने को प्ले करते हैं। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। श्री प्रकाश तिवारी जी, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके।
1: थैंक यू,
0: बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद।
2: आज मैं जरूर कहूंगा।
3: ये हुई ना बात, हमारे बेहतरीन दोस्त विजय में भी है।

0: जी हाँ दोस्तों, 7:48 का समय और हेलो एफएम के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में मैं उत्कर्ष हूँ आपके साथ और आप 100.7 एफएम रेनबो पर ट्यून इन हैं। और जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि भैया हेलो एफएम कार्यक्रम में आप हम सभी को कॉल करते हैं, हमसे बात करते हैं, अपना पसंदीदा गाना बताते हैं और मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें भी साथ में साझा करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि किस नंबर पर आपको कॉल करना होता है, तो वो नंबर है 0522 2238 845 या 2238 852। एक बार और फिर से रिपीट कर देता हूँ, 0522 2238 845 या 2238 852 पर आप हमको कॉल करिए, हमसे बात करिए, हमको अपना गाना लिखवाइए, उस गाने के साथ में हमसे बात भी करिए और बताइए कि भैया गाना आप क्यों सुनना चाहते हैं। तो इसी तरीके से इसे सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं, एक लिसनर जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, उनकी आवाज़ में उनकी बातें सुनते हैं और उनका पसंदीदा गाना भी साथ में हम प्ले करेंगे। हेलो,
1: अभी सुनने वालों को प्यार भरा गुड इवनिंग।
0: जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए।
1: सर हम रजनीश चौरसिया, नवाबों के शहर मौसी एयरपोर्ट लखनऊ से बात कर रहे हैं।
0: क्या बात है रजनीश जी, आप लखनऊ से बात कर रहे हैं, नवाबों के शहर से। तो आप धड़कन लखनऊ की जो हमारा 100.7 एफएम रेनबो है उसको कितना सुनते हैं आप, सबसे पहले ये बताइए।
1: सर एफएम तो हम लगातार सुनते हैं, इसके साथ साथ आपका वो भी भारतीय चैनल है वो भी सुनते हैं, साथ में पैरमी चैनल है।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले बताइए आज कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं और सबको सुनाना चाहते हैं?
1: सर फिल्म है महाराजा, उसका गाना है मैं तेरा दीवाना तू मेरी दीवानी, बहुत ही अच्छा गाना है और जितने लोग सुन रहे हैं सर सभी के।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं तेरा दीवाना तू मेरी दीवानी, किसी स्पेसिफिक इंसान को डेडिकेट तो नहीं कर रहे हैं गाना?
1: नहीं सर, सभी के लिए, बस ऐसे ही अच्छा लगता है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, इस गाने को आपके लिए प्ले करते हैं, आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: जी हाँ दोस्तों, 7:54 का समय और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि भैया ऐसे कार्यक्रम को यहीं पर वाइंड अप किया जाए। लेकिन लेकिन लेकिन हमारे साथ में एक आखिरी लिसनर जो हमसे बात करेंगे वो जुड़े हुए हैं और वो उनका पसंदीदा गाना लेकर के बैठे हैं, उनके पसंदीदा गानों को जानते हैं, उसको प्ले करते हैं और इजाज़त लेते हैं कि भैया ऐसे कार्यक्रम को यहीं पर थामा जाए। मैं उत्कर्ष आप सभी से इजाज़त लेना चाहता हूँ और अगली बार फिर से मिलेंगे इसी ऐसे ही खूबसूरत से कार्यक्रम के साथ। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन सा बात कर रहे हैं? सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए।
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, एमपी।
0: क्या बात है मोहम्मद हारून जी, आप अकबरपुर से बात कर रहे हैं, तो बताइए वहाँ पे मौसम कैसा है भाई अभी इस समय?
1: मौसम अच्छा है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, गर्मी की उमस है।
0: बारिश तो नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है और सभी इंतजार कर रहे हैं कि भैया जल्दी से बारिश हो तो थोड़ी सी राहत मिले।
1: बारिश बादल हो जाते हैं, चले जाते हैं, चली जाती है।
0: चलिए हरुण जी, बताइए कौन सा आप गाना सुनना चाहते हैं और हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं?
1: बारिश का इंतजार कर रहे हैं, बोनी हो जाए लेकिन बारिश नहीं हो रही। और आपके घर?
0: यहाँ पे तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है और लखनऊ का तो आप मिजाज जानते हैं कि भैया बहुत ज्यादा गर्मी है, कंक्रीट की सड़कें हैं और जब आप बाहर निकलते हैं
1: बहुत दिनों में आज बात हो रही है, कम से कम 4-5 महीने में।
0: हाँ चलिए हरुण जी, थोड़ा सा कम वक्त है हमारे पास में तो जल्दी से अपना गाना बताइए, कौन सा आप गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाने तो अपन सुनते रहते हैं, बातचीत तो अपनी पहली बात होती है, वो ही नहीं पाती।
0: चलिए बातचीत होती रहेगी, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूँ, है ना? और बात
1: गाने तो अपन चलते रहते हैं लेकिन बात तो अपन चलना तो

0: बात है।
1: हाँ।
0: फिल्म का नाम है हम बेमिसाल तुझसे क्या चोरी है।
1: तुझसे क्या चोरी है, क्या बात है। चलिए गाना आपका प्ले करते हैं। अरुण जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपसे बात करते रहेंगे, आपकी बात सुनते रहेंगे। थोड़ा सा आज कम समय है, लेकिन सबसे बात जरूर करेंगे अरुण जी, एक दिन है ना, इत्मीनान से बैठ के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज विश्व एक विश्वसनीय लोकतांत्रिक और सक्षम मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर का तलाश में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज उसी विश्वास का केंद्र बनकर उभरा है। गौतम बुद्ध नगर जेवर में दो बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट के शिलान्यास के दौरान श्री यादव ने कहा कि हमारी राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शी नीतियाँ, कुशल युवा शक्ति और तेजी से विकसित हो रहा बुनियादी ढांचा भारत को वैश्विक सप्लाई चेन का स्वाभाविक केंद्र बना रहे हैं। आज की यह परियोजना उसी परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की परिकल्पना को साकार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को उनके मूल्यों और आदर्शों को समाहित करने का प्रयास कर रही है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार भी उन्हीं आदर्शों पर अमल करते हुए ऐसी नीतियों को लागू कर रही है जिनका लाभ अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण करेगी। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में फायर सेफ्टी की सघन चेकिंग जारी है। इसी क्रम में अलीगढ़ नगर निगम ने पूरे शहर में 100 नए फायर हाइड्रेट पॉइंट्स लगाने का फैसला किया। जौनपुर के प्रगतिशील किसान सूर्यभान यादव को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर सीमा सिंह राणा ने बताया कि सूर्यभान यादव ने एक हेक्टेयर भूमि में आम की 140 प्रजातियों का मॉडल बाग विकसित किया है। इस बाग में प्रतिवर्ष 200 क्विंटल आम का उत्पादन होता है, जिससे उन्हें करीब 4 लाख रुपए का वार्षिक लाभ भी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी 3, 4 और 5 जुलाई को आयोजित होने वाले आम महोत्सव में श्री यादव को यह सम्मान दिया जाएगा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM

ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की।

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

0: अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

पर संध्या के साथ मैं सर फिरोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण

0: समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमीनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
3: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, MSME के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है

0: कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
3: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम

0: पालन ना करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम ना बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समय अनुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी हाँ, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। वक्त हुआ है ठीक घड़ी में 9:01 और कुछ सेकंड्स, और इस वक्त के साथ ही बता दें कि ये वक्त है म्यूजिक के सबसे धमाकेदार वक्त का। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे प्रीति, और आप सुन रहे हैं पॉप टाइम ओनली ऑन 100.7 एफएम रेनबो पर, जहाँ हर बीट में है जोश और हर गाना है सुपर हिट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हम कहीं नहीं गए हैं, बस हमें लगा कि गाना क्यों ना प्ले कर दिया जाए। फिर हमें लगा कि पहले हम आपको बता दें कि आपको हमें ईमेल कहाँ पे करना। वैसे हमें पता है हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं वो काफ़ी समझदार हैं, लेकिन आज के इस घंटे में होंगे आपके ईमेल, आपकी फरमाइश तो नहीं कहेंगे, ईमेल जरूर कहेंगे, आपके डेडिकेशन, आपकी फरमाइशें नहीं, लेकिन आपकी बातें जरूर होंगी। इसीलिए मैं बार बार इसी बात पे फोकस कर रही हूँ कि आपकी बातें जरूर होंगी, आपकी ईमेल जरूर शामिल होंगे, और साथ में एक से बढ़कर एक सुपर हिट ट्रैक्स होंगे जो आपके वक्त को बना देगा सुपर फास्ट और भी शानदार। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए और तैयार हो जाए, क्योंकि अगले एक घंटे तक सिर्फ और सिर्फ हिट्स की बरसात होने वाली है। ये है पॉप टाइम फास्ट ट्रैक आपके ईमेल के साथ और सुपर हिट ट्रैक्स के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले धमाकेदार गाने के साथ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आपको ईमेल करना है हमारे वही पुराने ईमेल आईडी पे जो है fmakashwanilakhnow@gmail.com। फिर से रिपीट कर देते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com। फिलहाल जब तक आप ईमेल टाइप कर रहे हैं, तब तक एक खूबसूरत सा ट्रैक है वो कर रहा है आपका इंतजार। इसको सुनिए, इंजॉय करिए और कहीं मत जाइए, बस बने रहिए हमारे साथ।

हाँ जी दोस्तों, तो जैसा कि मैंने कहा था कि आपकी ईमेल का हम कर रहे हैं इंतजार, और हमें बड़ी ही खुशी हुई कि ठीक 9 बजे एकदम से इतने सारे ईमेल फ्लैश होने लगे कि मुझे लग रहा है कि पहले ईमेल पढ़ लेते हैं, अदरवाइज ऐसा लगेगा कि सिर्फ गाने प्ले हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है। तो भाई इसमें सबसे पहला मेल शामिल करते हैं अंसारी जी का, और अंसारी जी ने हमें मेल किया है। लिखते हैं, रेनबो कैफे पेश करने वालों को हमारा आदाब, आपका एक कार्यक्रम है रोज सुनता, हमें यार कार्यक्रम के गीत बहुत अच्छे लगते हैं, और इनका एड्रेस वही पुराना, वो कहते हैं ना राइमिंग वाला रिदमिक है बिल्कुल, और एड्रेस को पढ़ लेते हैं। हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुख नूर अंसारी, फरियाज शकील, मोइन तस्लीम और डीजे प्रधान, इन सबके नाम लिए हैं और हमने भी नाम ले लिया। इसके साथ ही पढ़ते हैं मेल रामराज जी का, और लिखते हैं, रेनबो कैफे को मैं प्रोग्राम को एंजॉय कर रहा हूँ रायबरेली गांव से, पहाड़ीपुर से, और बहुत सारे नाम लिखे हैं इन्होंने, रामराज, राजूभान, रामू, रामचरण, पप्पू, पासी, मनीष, नीरज, मधु, मीनू और ननकई। सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार, आपको भी हमारी तरफ से नमस्कार। इस कार्यक्रम के पहले नाम नहीं बताया चलिए कोई बात नहीं, आपकी शिकायत दूर हो गई, हम बता देते हैं, हमारा नाम है आरजे प्रीति। विजयपाल का भी मेल आ गया है, लिखते हैं, आदरणीय बहन जी सादर नमस्ते जी, भैया जी आपको भी हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। रास्ते मुश्किल नहीं, सोच कमजोर होती है, इरादा मजबूत हो तो मंजिल भी झुकती है, बिल्कुल सही लिखा है आपने। कार्यक्रम आबशार बहुत ही अच्छा लगा, शुक्रिया। पॉप टाइम कार्यक्रम सुन रहा हूँ, गर्मी समय भरपूर है, बिल्कुल भाई हर मौसम का मजा होना चाहिए, और हर मौसम का जो होता है ना पीक टाइम, तो वो चल रहा है समर सीजन का, तो समर सीजन का पीक टाइम है, तो भाई इसको भी एंजॉय करना ही पड़ेगा, इसलिए सभी के साथ मनमानी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये मौसम हम सबके साथ मनमानी कर रहे हैं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज हमारे लखीमपुर का तापमान 43 डिग्री रहा, भाई गर्म तो है ही, यहाँ भी ऐसा ही कुछ हाल चाल है। दिलीप राम जाई जी का भी मेल आया है, हेलो डियर प्रियारी, ओहो क्यूटी प्रीति, ओफो थैंक यू सो मच, इतने प्यारे प्यारे एडजेक्टिव्स यूज करने के लिए। और रिंकी पिंकी गांव जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली से ये मेल किया, क्या बात है यार, रायबरेली को भी बड़ा ही खुशनुमा बना दिया आपने। और कैसी हैं आप, हम लोग चकाचक हैं, बिल्कुल हम भी चकाचक हैं और जुड़ गए हमारे साथ आप, शुक्रिया। और ये साथ हमारा होना चाहिए आपके साथ रात 12 बजे तक, आपको हमारी आवाज़ अच्छी लगती है इसके लिए दिल से शुक्रिया। और हम आपको कहें दिलीप, हमें आपके मेल करने के अंदाज को बहुत पसंद करते हैं। और नाम लिखे हैं कुछ दोस्तों के, पूनम दीदी कानपुर से, गुंजन तिवारी समा, परवीन सुरभी, वकील अहमद भाई, साहिब अंसारी, साजी अंसारी, महक, ममता दीदी, सुषमा दीदी, फैज भाई बाराबंकी से, तिवारी अंकल, संजू भैया। भाई मोनू सेठ का भी मेल आया, मोनू सेठ कहाँ थे आप, अभी हमने कुछ दिन पहले भी प्रोग्राम किया था, उस दिन आपकी मेल मिसिंग थी, आपका नाम उसमें लॉस्ट एंड फाउंड में मैंने लिख दिया था, इसलिए आज आप मिल गए और नमस्ते लिख रहे हैं आप, कैसा हैं आप भाई, उसी अंदाज में बिल्कुल हम नीक हैं।

और अब देखो हम थोड़ा सा सीख के आ गए, नीक होंगी। हाँ जी बिल्कुल, हम नीक हैं, ठीक हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और रेनबो कैफे, आप प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, और आप कह रहे हैं, सुन रहे हैं, आए जल्दी जल्दी आया करें। बिल्कुल हम कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी आने की, बस आप लोग दिल से याद किया करिए, हम यूं ही प्रकट हो जाया करेंगे। सुधांशु का भी मेल आया, राधे राधे सुधांशु, ग्राम भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इटौंजा बख्शी तालाब से मेल किया, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, प्रीति दी आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, भोजपुरी गाना बजाए, बिल्कुल कोशिश करेंगे। देखिए ये पहले तो हम बता दें ये फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं कुछ, लेकिन माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। आप मेल करेंगे, हम आपकी मेल को ज़रूर शामिल करेंगे, इसमें तो आपको कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। इंद्रपाल मिश्रा जी का भी मेल आया, आपकी मीठी बोली के कारण कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है, हम सब एक साथ मिलकर सुनते हैं, समस्त श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमें मेल किया है अमृता मोहली सीतापुर से, इंद्रपाल मिश्रा, आशा, अवनीश, विनीश, अक्षत और गरिमा, कितना प्यारा नाम है अक्षत गरिमा। वेद प्रकाश का भी मेल आया लखीमपुर खीरी से, गुड इवनिंग लिखते हैं, आपको भी गुड इवनिंग, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। अमृत चौरसिया का भी मेल आया, लिखते मैं एफएम रेनबो लखनऊ का नियमित श्रोता हूं, हम दो, अच्छा जिस गाने की आपने फरमाइश की है माफी चाहेंगे, ये गाना हम उसमें रजनीगंधा में सुनाते हैं इस वक्त पे, तो थोड़ा सा अमृत चौरसिया ने ये मेल किया, शाहपुर धनवा करनैलगंज गोंडा से। विनीत कुमार का भी मेल आया, लिखते हैं अमित कुमार, ग्राम अर्थारपुर पोस्ट, अच्छा रामगढ़ चीनी मिल सीतापुर से हमें प्रोग्राम को इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा यहाँ से आपने मेल किया है, प्रीति बहन जी को गुड इवनिंग, आपको भी वेरी गुड इवनिंग, राम राम, सादर प्रणाम, और आपको हमारी बोली पसंद है, हमें भी आपकी मेल बहुत पसंद है जी, शुक्रिया। और गाने आपको पसंद आते हैं इसके लिए भी आपकी शुक्रिया, लेकिन आपने बहुत सारे नाम लिखे हैं, जल्दी जल्दी अच्छा पढ़ देते हैं। ओमकार सीतापुर से, सुरभि सीतापुर से, शमा परवीन अंसारी, सीमा रावत राजाजीपुरम से, संतोष मौर्य हरदोई से, वीरपाल पट्टी अतरौली से, ममता हरदोई से, संजय अतरौली से, रिंकी पिंकी राय बरेली से और मोहिनी हरदोई से। तो भाई इस विनीत के मेल के साथ ही देते हैं मेल के पढ़ने के सिलसिले को थोड़ा सा पॉज, और इस गाने को इंजॉय करिए, कहीं मत जाइए। अगर अभी तक आपने ईमेल नहीं की है तो कहाँ हैं आप, हम आपकी ईमेल का कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार, तो प्लीज ईमेल करिए fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। फिलहाल ये गाना आपके रेडियो सेट पे ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो पर।

तो भाई वक्त हो गया 9:26 और कुछ सेकंड्स, और इस वक्त के साथ ही शामिल करते हैं ईमेल। और ईमेल में सबसे पहला जो मेल अब मैं शामिल करने वाली हूँ वो है सुल्तान रजा जी का, और लिखते हैं कि प्रीति मैम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं प्रीति मैम, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी होंगी। बिल्कुल, आप लोग के मेल पढ़कर जितनी भी तबीयत खराब हो यहाँ पे बिल्कुल चंगी हो जाती है। और आगे लिखते हैं कि क्योंकि जब आप अपना म्यूजिक बजाते हैं, अच्छा ये वाली, इससे पता चल जाता है कि आज हम आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। और आगे लिखते हैं, आज हमारे सुपरस्टार आरजी प्रीति मैम नाम है मे

अपने स्टूडियो में आपकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं जी. आप जितना भी लिखते हैं वो हमारे लिए काफी है. और लिखते हैं आगे कि इंद्रधनुष को आज नहीं सुन पाए किसी रीजन की वजह से, और जैसे ही रात को 9 बजे उन्होंने ट्यून किया FM रेनबो को, तो फिर इस आवाज को सुनकर, बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनकर समझ गए कि आज स्टूडियो में कौन है. और ये मेल हमें किया है सुल्तान रजा ने, कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से. सुल्तान रजा, इकबाल रजा, जिशान रजा, अफजल रजा, मोनिश रजा, सादिक रजा और मम्मी पापा के साथ, और साथ में प्यारी सी जो है प्लेट भेजी है जिसमें नाश्ता है और बिस्किट है, नमकीन है और एक कड़क वाली चाय है. और चाय के लिए भी उन्होंने कुछ लिखा, चाय का नाम सुनते ही मुस्कुराने लगते हो, मेरी तरह तुम भी चाय के दीवाने लगते हो, क्यों ना इसको रजनीगंधा में शामिल कर लिया जाए. सुल्तान रजा, क्या ख्याल है आपका. महेंद्र जी का भी मेल आया है, लिखते हैं महेंद्र दीपेन गांव रूड़ और जिला नागौर राजस्थान से मेल कर रहे हैं, प्रोग्राम को सुन रहे हैं ऐप पर, जोधपुर में है और हमारे प्रोग्राम की बहुत तारीफ की है, शुक्रिया. और अच्छा आगे लिखते हैं कि आवाज़ अच्छी लग रही, अलग है, और मतलब हर आरजेएस की आवाज़ ऐसी होनी चाहिए भाई. हर किसी की अपनी आइडेंटिटी होती है और हर किसी की आवाज़ अलग होती है, वैरायटी तो होनी चाहिए, क्यों महेंद्र जी. और आगे लिखते हैं, नागौर से सूरत का सफ़र और आकाशवाणी का ये साथ है. आरजे प्रीति मैम, आपकी मीठी आवाज़ में कोई अलग ही बात है, जोधपुर की राहों में गूंज रही है आपके रेनबो शो की ये तान है. महेंद्र देपेन की तरफ से आपको दिल से ये छोटा सा पैगाम है. क्या बात है, बहुत खूब लिखा है महेंद्र जी, बहुत अच्छा लिखा है. नजीम जी का भी मेल आया, लिख रहे हैं प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, हम लोग मिलकर सुन रहे हैं. साबुद्दीन खैफ कैफ लिखा आगे, लेकिन ये कौन है ये नहीं बताया आपने. वारिस अली जी का भी मेल आ गया है, लिखते हैं कि प्रीति जी आदाब, बात पते की, भूखे को रोटी देते वक्त, बीमार को खून देते वक्त और इंसाफ करते वक्त मजहब मत पूछना. बिल्कुल सही कहा आपने. प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, अगर आपके सॉन्ग्स प्लेइंग लिस्ट में बाबा सहगल का कोई सॉन्ग हो तो प्ले कर दें. जी बिल्कुल, अभी हम अपनी सॉन्ग लिस्ट को जो पोटली है ना हमारी उसमें से खंगालते हैं, अगर बाबा सहगल जी होंगे तो हम ज़रूर प्ले करेंगे वारिस जी. और ये हमें मेल किया संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से. कमल पांडे जी का मेल आया है, लिखते मैम जी नमस्कार, मैं कमल शंकर पांडे मोहलिया कला चौराहा पोस्ट नसीरपुर जिला सीतापुर से मेल कर रहा हूँ. कार्यक्रम रेनबो कैफे के साथ जुड़ चुका हूँ, कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, सॉन्ग सिलेक्शन पसंद आ रही है और मेल शामिल. अच्छा पहले ही आपने धन्यवाद लिख दिया, मतलब कि आपको पता है कि मेल ज़रूर शामिल होगी. और वकील अहमद जी का भी मेल आया, अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है पॉप टाइम, यानी कि आज है सैटरडे और आज का वक्त है रेनबो कैफ़े के लिए, और प्रोग्राम के गाने अच्छे लग रहे हैं, खेत में है गन्ने की सिंचाई कर रहे हैं, गर्मी बहुत है लेकिन फिर भी रेनबो कैफ़े के साथ जुड़े हुए हैं. और अहमद मंसूरी कटका हथूरी, आय हाय क्या नाम है जगह का आपका, मज़ा आ जाता है पढ़ के. सीतापुर साहिबा अंसारी, साजे अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी, अहमद नवाब और सभी के लिए इन्होंने जो है अस्सलाम वालेकुम भेजा है. हमने अपने आप से ऐड कर लिया है और एक मेल और पढ़ लेते हैं फिर गाना सुना देते हैं. डॉक्टर सुमित कुमार का भाई बहुत ही लंबा चौड़ा मेल आया है, इसको हम पढ़ते हैं आराम से, फिर इसको हम समराइज करके आपको ज़रूर सुनाएंगे क्योंकि इन्होंने बड़ी पते की बात लिखी है. और ये मेल हमें किया है हिमानी चौहान जसपुर उत्तराखंड से. कभी पढ़ी लेते हैं, कभी कभी गर्मी ज़्यादा लगे तो कुदरत के नज़ारे से प्यास तो उसको भी गल लगती है जो दरिया के किनारे होता है. मैं हमेशा प्रोग्राम को सुनता हूँ और प्रोग्राम सुनकर हैप्पी हो जाता हूँ. गिफ्ट मिला है मुझे, ऐसा लगता है कि आपको अच्छा गिफ्ट मिला है. अच्छा मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, हमसे परिवार, हम सब परिवार के साथ प्रोग्राम को सुन रहे हैं और शरीर को ठंडा करने के लिए. अच्छा आगे आपने एक अच्छी सी रेसिपी भी लिखी है किस तरीके से खुद को हाइड्रेट रखें, यानी कि कहना चाह रहे हैं कि फ्रूट्स आप खाएं, दही खाएं, मतलब अपने आप को स्पाइसी फूड से दूर रखें, है ना डॉक्टर सुमित जी, मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ ना. और बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाएं, तली भुनी और बाहर की जो बासी चीज़ें होती हैं ना एक टाइम पुरानी वाली, उनसे भी बचें क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए अपना ख्याल रखें. डॉक्टर सुमित ने सबकी चिंता करते हुए ये खूबसूरत सा मेल हमें भेजा है, तो आप लोग इसे समझिए और इस खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय करिए. आप सुन रहे हैं रेनबो कैफे ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो पर और इस वक्त माइक के इस पार है आरजे प्रीति आपके साथ.

हाँ जी दोस्तों, अभी तो आपने एंजॉय किए बैक टू बैक, भोजपुरी गाना भी मैंने प्ले कर दिया आपके लिए, पंजाबी तड़का भी लगा दिया, उसके साथ हरियाणवी गाने को भी मैंने प्ले कर दिया। यानी कि कहीं भी हम शिकवा शिकायत की कोई भी गुंजाइश नहीं रखते हैं, इसलिए मुझे लगता है कोई भी शिकायतों वाला मेल मुझे नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ खुशियों वाले मेल आते हैं, अच्छे अच्छे मेल आते हैं। जैसे कि मुझे मेल किया है आकाश यादव ने, और ये लिखते हैं, हेलो मैम, माय नेम इज़ आकाश यादव एंड आई रियली लाइक द शो, और रायबरेली से प्रोग्राम को एंजॉय, आई हैव कम टू रायबरेली आफ्टर माई एंड सेम एग्जाम्स। ओके, यानी कि सेमेस्टर एग्जाम्स आपके ख़त्म हो चुके हैं तो आप अपने होम टाउन आए हुए हैं, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और आकाश के साथ ही राजवीर का भी मेल आया है। राजवीर जी लिखते हैं कि गाँव खौरी अव्वल से चौधरी, अच्छा राजवीर सिंह और चौधरी अव्याना का कंचन फिल्म, अच्छा आपने जिस गाने की रिक्वेस्ट की है साजन फिल्म की, वो तो आई एम सो सॉरी, इस सेगमेंट में वो गाना नहीं जा सकता। रॉयल अमित यादव का भी मेल आया, आई एम श्रेया यदुवंशी और गंगागंज रोड भानमऊ विलेज नकटौआ बाराबंकी से मेल किया है, और ये एक गुजारिश की है इन्होंने कि आप जल्दी जल्दी आया करो। जी बिल्कुल, आपकी जो गुजारिश है ना वो सर आँखों पर, कल फिर से आएंगे। अब आपने कहा है तो बिल्कुल अमित यादव जी, कल हम फिर से आने वाले हैं आपसे रूबरू होने के लिए मेल के थ्रू, और गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे ही सॉन्ग प्ले किया करिए। जी ये सारे के सारे गाने आप ही लोगों के लिए तो होते हैं। और नजीम का भी मेल आया है, लिख रहे हैं, डेली इंद्रलोक से प्रोग्राम को सुन रहा हूँ, प्रोग्राम इंजॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में इनके हैं सैबुद्दीन कैसे कैफ कैफ, अपने मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि आप थोड़ा सा और डिटेल में लिखिए तब हमें समझ में आए। लीजिए भाई, हमारी प्यारी प्यारी अहमद नवाब का भी मेल आ गया है, वही खूबसूरत अंदाज में, और लिखती हैं।

हेलो डियर प्रीति दी, गुड इवनिंग। ये बताओ ये चश्मा कब तक लगा रहेगा? इस चश्मे को उतारो और इनको चश्मा की जगह अब इनको टोपी पहना दो। ये जो गुड इवनिंग में डबल ओ में ये जो चश्मे लगा के दोनों लोग आ जाते हैं ना रात के 9 बजे के बाद के वक्त में, तो अब इनका चश्मा उतारो, अब इन्हें टोपी पहनाओ और एक हाथ में इनके हाथ भी लगा दो, इन्हें फूल भी दे दो ना हाथ में। अहमद नवाब तुम तो कुछ भी कर सकती हो, अब ये भी करके एक गुड इवनिंग भेजना ज़रूर। और आगे लिखती हमारी बात माननी आपने और जल्दी आएँ, उसका दिल से शुक्रिया। आपका दिल से शुक्रिया इतने सारे इमोजीज भेजने के लिए। आपकी आवाज जैसे फिजा में घुलती कोई सरगम है, आपको रेनबो कैफे पर सुनना हर उदास दिल का मरहम है। क्या बात है, आपको भी बुला लेंगे, इधर ही रजनीगंधा में बैठाएंगे और आधे घंटे का प्रोग्राम तो जरूर करवा लेंगे अमन नवाब हम आपसे। और ये मेल हमें किया है संडीला से। इसके साथ ही मेल पढ़ते हैं, अगला सौरभ प्रजापति का मेल आया है अमेठी से। लिखते हैं कि कैसी हैं आप, आशा है आप अच्छी होंगी। बिल्कुल हम अच्छे हैं, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, कुछ अधूरे लाइनें हैं पढ़ दो। बिल्कुल अधूरी क्यों है भाई, आपने पूरी करी है। नई हवाओं को रहबत बिगाड़ देती है, अक्सर कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। बचा के रखना मोहब्बत के फेरों से खुद को, ये अच्छे अच्छों की हालत बिगाड़ देती है। बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है सौरभ प्रजापति जी आपकी भी हालत कुछ बिगड़ी हुई है, क्योंकि इतने सारे इमोजीज हैं और कहीं ना कहीं आपके दिल में बेइंतहा मोहब्बत ज़रूर है। दिलीप रामजाई का भी मेल आया, भोजपुरी सॉन्ग बजाइए, 1 घंटा हो चुका है, कान तरस गई बानी। भाई हम तो आपके दिल की आवाज़ को यहाँ पे बैठे बैठे सुन गए थे, इसलिए बैक टू बैक 2 गाने लगा दिए थे और एक गाना ज़रूर हम प्ले करेंगे जाने से पहले, कहीं जाने से पहले नहीं यानी कि 10 बजे से पहले, और बजाएंगे तो हम तार तार हो जाएंगे। अब बताइए 2 गाने प्ले कर दिए, अब आप तार तार हो गए हैं कि हर तार हो गए हैं, बताइएगा जरूर। रेनबो कैफे सुन रहे हैं, भोजपुरी सॉन्ग, भोजपुरी सॉन्ग, धन्यवाद शुक्रिया। अगर कोई बात अच्छी, ऐसा कैसे हो सकता है दिलीप राम जाही जी, आप लोगों की बात अच्छी ना लगे, बिल्कुल भी नहीं। और फैजल का भी मेल आया है, लिखते हैं सादर नमस्कार, मेरा आज का विचार समय रहते की गई तैयारी ही भविष्य की समस्याओं का सबसे प्रभावी समाधान है। आगामी मानसून को देखते हुए जिला जल निकासी व्यवस्था की समय पर साफ सफाई एवं रखरखाव जनहित में अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, ये तो बड़ी ही अच्छी बात लिखी है आपने भाई, सुन लीजिए ये हम सबके लिए है। और मॉनसून को ध्यान में रखते हुए लखनऊ के कई सारे शहर जगह पर निकासी अभी तक मतलब समुचित साफ सफाई नहीं हुई है, ये मुद्दा हम ज़रूर आगे बढ़ाएंगे आपका, और इतने ज़रूरी बात लिखने के लिए जी शुक्रिया। और मेरी बात संबंधित जिम्मेदारों तक पहुंच रही है, बिल्कुल हम ये मेल आपका आगे फॉरवर्ड अपने अधिकारियों को जरूर करेंगे, जिससे आपकी बात आगे तक जाए और कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाए। वेद प्रकाश का मेल आया, आई एम रिया सिंह, अच्छा नाम है वेद प्रकाश, और फिर आगे लिख दिए हैं हेलो आई एम रिया सिंह फ्रॉम निगाशान लखीमपुर खीरी से, पॉप टाइम प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है माई डियर, दिस इज रेनबो कैफे, और बारिश वाला कोई गीत बजवा दीजिए। भाई बाहर बारिश होने तो फिर हम इधर झमाझम बारिश वाले गीत प्ले करेंगे, अब हम इधर बारिश वाले गीत प्ले कर दें और उधर तुम्हारे उधर भयंकर गर्मी हो रही है, तो बताओ कैसे अच्छा नहीं लगेगा, है ना। चलिए मेल के पढ़ने के सिलसिले को देते हैं थोड़ा सा विश्राम, क्योंकि एक गाना कर रहा है आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार, बरेली में बैठा हुआ है और लखनऊ में प्ले होने वाला है। इस गाने को सुनिए, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेनबो कैफे। वक्त हुआ 9:50 और ये लीजिए 50 सेकंड्स, और आरजी प्रीति है आज आपके साथ, सुनते रहिए।

तो भाई वक्त हो गया 9:54 और कुछ सेकंड्स, और ये वक्त कहता है कि प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले जो बहुत सारी मेल हमारे सामने फ्लैश हो रही हैं उनको क्यों ना पढ़ लिया जाए, क्योंकि हम किसी भी शिकायत के साथ प्रोग्राम को वाइंड अप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। अरविंद कुमार दुबे का भी मेल आया है, लिखते हैं, नमस्कार, FM रेनबो धड़कन लखनऊ की है, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, मंगलवार और शनिवार को रेनबो कैफे में क्षेत्रीय वाली अच्छा प्राथमिकता दी जाए तो बेहतर होगा। देखिए दी गई बिल्कुल, और हमने गाने भी प्ले कर दिए हैं, अरविंद दुबे, गोविंद दुबे, प्रतिमा प्रतिष्ठा, तन्वी दीपा, श्याम कुमारी, धर्मदेवा, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हमें ये मेल किया है। आंचल सेठ का मेल आया है, प्रोग्राम एकदम जला हुआ चलता बस, और बस गर्मी से बड़ी किचकिच चल रही है। भाई ये किचकिच क्यों चल रही है? ये किचकिच तो बारिश के टाइम में होती है जब किचिर पिचिर होती है इधर उधर। आनंद तिवारी का भी मेल आया है, बातें चुप जाती हैं, बातें कभी लहजे मार जाते हैं, यह जिंदगी है जनाब, यहाँ हम सपनों से हार जाते हैं। हरदोई से हमें ये मेल किया है। सोनू परवाना का मेल आया है और शुभी वर्मा का भी मेल आया है, हमारे हालचाल पूछें, जी हम बिल्कुल ठीक हैं। और ये आदर्श वर्मा, बिग डील ब्रदर, सभी की तरफ से आपको हाउ आर यू मैम, काफ़ी अच्छी लगती है आवाज़, जी शुक्रिया, और गाने की रिक्वेस्ट की है, ज़रूर कभी प्ले करेंगे। विजय सिंह का भी मेल आया है बहराइच से, शुभ रात्रि आपने भेजी है, शुभ रात्रि अभी हम नहीं बिल्कुल भी स्वीकार करेंगे, रात 12 बजे आपका स्वीकार होगा। शुभी वर्मा का मेल आया है और देखिए आपने रिपीट कर दिया है, और एम के राज का भी मेल आया है, गुड इवनिंग भेजा लखीमपुर खीरी से, प्रोग्राम को अच्छा प्रोग्राम आपको बेमिसाल लग रहा है, आवाज़ में जादू खुला, सुनते ही हो गए कई साल, पर सुनने का मन आज भी उतना ही होता है, भोजपुरी सॉन्ग बजते ही मन थिरक उठता है, तो लीजिए इसीलिए तो प्ले कर रहे हैं। आकाश यादव ने भी एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है, माफ़ी चाहेंगे हम, रायबरेली से हमें ये मेल किया है। जावेद अख्तर ने भी मेल किया है, लिख रहे हैं, कार्यक्रम पॉप टाइम नहीं रेनबो कैफे है माई डियर, और कार्यक्रम के गाने को बहुत ही पसंद कर रहे हैं, कार्यक्रम की जान हुआ करता है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। रेशमी नगर मुबारकपुर आजमगढ़ से मेल किया है, बेगम रुखसार, शमा परवीन अंसारी, और ज्ञान प्रकाश का भी मेल आया है, मोनू सेठ, अजय कुमार पाटिल, सौरभ, आनंद तिवारी, जय, जितेंद्र, मुकेश कुमार। तो भाई माफी चाहेंगे अगर किसी का मेल मैं पूरा पढ़ नहीं पाई हूँ, तो कल जरूर हम आपके मेल को पूरा शामिल करेंगे, लेकिन कहीं मत जाइए, बस सुनते रहिए, रात 12 बजे तक हमारे साथ जरूर रहिएगा, इस गाने को इंजॉय करिए। इस गाने के बाद न्यूज के उस पार रजनीगंधा कर रहा है आपका बेसब्री से इंतजार, बस सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। आरजे प्रीति है आज आपके साथ।

नमस्कार, रात्रि के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार परक कौशल से जोड़ने की मुहिम तेज हो गई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रोजेक्ट प्रवीण के अंतर्गत अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण STT के लिए लक्ष्य आवंटित कर दिए गए हैं। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि योगी सरकार का मुख्य ध्येय है कि प्रदेश का कोई भी युवा हुनर से वंचित ना रहे। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर परिवहन विभाग 1 जुलाई से 31 जुलाई तक स्कूली बसों के फिटनेस संबंधी जांच के लिए अभियान चलाएगा। अभियान का लक्ष्य न केवल नियम लागू करना है बल्कि स्कूल परिवहन को एक सुरक्षित, जवाबदेह और पारदर्शी सेवा बनाना है। अभियान के तहत बसों की तकनीकी खराबी, फिटनेस सुरक्षा मानकों की जाँच की जाएगी। साथ ही चालकों का भी भौतिक सत्यापन, जाँच इत्यादि की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। सहारनपुर जनपद निवासी 7 वर्षीय अनुषी सिरोही ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए सहारनपुर और देश का नाम रोशन किया है। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में अनुषी ने अंडर 7 वर्ग की 800 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। अंडर 7 वर्ग की 800 मीटर स्पर्धा में अनुषी सिरोही ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया।

बेहतरीन गति और संतुलन के दम पर उन्होंने पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तानें। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
0: कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी, कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की खामोशी।

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ।

एक बार फिर नमस्कार दोस्तों। वक्त हुआ है रात के ठीक 10:05 और 42 सेकंड्स, और इस वक्त के साथ ही रात के इस खामोश पहर में, जब शहर की रफ्तार थम चुकी है और घड़ी की सुइयां 10 से 12 के बीच एक सुकून भरा सफर तय करने के लिए तैयार हो रही है, उस वक्त में आप सुन रहे होते हैं रजनीगंधा। मैं हूं आपके साथ आरजे प्रीति। दोस्तों, ये वही वक्त होता है जब पुराने गीत अपनी असली जगह ढूंढ लेते हैं। ये मैंने हमेशा कहा है, वो गीत जो किसी दौर की आवाज थे, जिनमें लफ्ज कम थे लेकिन एहसास ज्यादा हुआ करते थे, जहां मोहब्बत इशारों में कही जाती थी और दर्द भी बड़ी नफासत से पेश किया जाता था। तो इस रात हम उन्हीं पुराने नगमों को फिर से याद करने जा रहे हैं, जिनकी धुनों में तन्हाई का सुकून आज भी है। इश्क की मासूमियत भी तो देखिए कि हम आज भी इश्क के हर लम्हे को सुरों में तलाशते रहते हैं, है ना, गीतों में ढूंढते हैं। जब बेइंतहा खुश होते हैं तो वैसा गीत बजाते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो दुखी वाला गीत बजाते हैं। मतलब इश्क के जो अलग अलग मोड़ होते हैं किसी भी इंसान के जीवन में, हर उस पल को हम लोग गीतों में ढूंढते हैं, और वो हर पल, इश्क का हर पल, यकीन मानिए,

हमारे पुराने गीतों में आज भी महफूज है, है ना? कभी किशोर कुमार की आवाज सुनते हैं, कभी मोहम्मद रफी की, और जब दिल टूटता है, बेइंतहा उदास होते हैं, तो कभी मुकेश के भी गाने सुनते हैं। ऐसा नहीं कि मुकेश सिर्फ मुकेश जी के गीत दर्द भरे होते हैं, हर किसी की अपनी आवाज होती है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारा दिल दुखी होता है, मेरा, तो वो दर्द मुकेश जी के गीतों को सुनकर मरहम का काम करते हैं, है ना? तो भाई इश्क की मासूमियत भी तो देखिए, जिंदगी के हर अधूरे किस्से को हम लोग गीतों में तलाशते हैं। तो आइए इस रात को थोड़ा पीछे और ले चलते हैं, उस वक्त में जहां एहसास हुआ करते थे और हर गीत दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचा करते थे, कुछ इस गीत की तरह। सुनते रहिए रात 12 बजे तक, बने रहिएगा हमारे साथ।

दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया और उसके आने से आपके हर ख्वाब को जैसे पंख मिल गए हों, हर सुबह खूबसूरत लगने लगी हो और हर शाम का इंतज़ार होने लगा हो, और फिर एक दिन वही शख्स जाने कहाँ खो गया हो, पीछे रह गई हो उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी खुशबू और एक सवाल जो आज भी दिल से निकलता है कि अगर तुम साथ होते तो शायद जिंदगी कुछ और ही होती। दोस्तों, मोहब्बत हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होती। कभी कभी मोहब्बत उस एहसास का नाम होती है जो दूरियों के बाद भी कम नहीं होती। कोई लाख दूर चला जाए लेकिन उसकी यादें कभी पता बदल कर नहीं जाती। वो हर रात चांद की रोशनी में, हर ठंडी हवा में और हर धड़कन के बीच चुपचाप अपना नाम लिख जाती है। शायद इसलिए कुछ लोग कभी लौट कर नहीं आते, लेकिन उनका इंतजार कभी खत्म नहीं होता। दिल आज भी उसी मासूमियत से पूछता है, तुम जहां भी हो, क्या कभी मेरी याद तुम्हें भी छूकर गुजरती है? क्या कभी किसी खामोश रात में तुम्हारा दिल भी मेरा नाम लेता है? तो अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जिसने आपके अरमानों को उड़ना सिखाया हो और फिर उन्हीं अरमानों को अपनी यादों के आसमान में अकेला छोड़ दिया हो, तो दोस्तों, आज की ये रात, ये एहसास और ये पल सिर्फ आपके नाम है। आंखें बंद कीजिए, उस चेहरे को याद कीजिए जो आज भी आपकी मुस्कान की वजह है, और उस एहसास को अपने दिल के सबसे करीब महसूस कीजिए।

दोस्तों कहते हैं कि कुछ रातें सिर्फ रातें नहीं होती, वो दो दिलों के बीच की खामोश बातचीत बन जाती है जब शब्द कम पड़ जाते हैं और एहसास ज्यादा बोलने लगते हैं। ऐसे में लगता है जैसे दुनिया की सारी भागदौड़ कहीं पीछे छूट गई हो और बस ये पल, ये साथ और ये मुस्कुराहट ही सबसे खास हो। जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत शायद यही है कि कोई ऐसा हो जिसके साथ खामोशी भी अधूरी ना लगे, जिसके पास बैठकर वक्त का पता ही ना चले, जहां कोई दिखावा ना हो, कोई जल्दबाजी ना हो, बस अपनापन हो और दिल का सुकून हो। आज की हसीन रात भी कुछ ऐसा ही एहसास लेकर आई है। चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा है, हवाएं धीमे धीमे कोई धुन गुनगुना रही है और दिल कह रहा है कि कुछ लम्हों को बस महसूस किया जाए, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें यादों में नहीं, दिल की धड़कनों में संभाल कर रखा जाता है। तो अगर इस वक्त आपके साथ कोई अपना है तो मुस्कुरा दीजिए। कोई बड़ी वजह नहीं चाहिए इसके लिए, बस कभी कभी साथ होना ही सबसे बड़ी वजह होती है। और जब दिलों की दूरियां मिट जाती हैं तब हर रात सचमुच इस गीत की तरह होती है। सुनते रहिए रजनीगंधा, आरजे प्रीति है आज आपके साथ, रात 12 बजे तक रहिएगा जरूर हमारे साथ।

अभी आपने सुना मुकेश की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना। दोस्तों, वो प्रेम ही क्या जिसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आपको हर पल कोशिश करते रहना पड़े। कहते हैं प्रेम तो एफर्टलेस होना चाहिए, प्रेम में कोशिश नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, कभी साथी रूठ जाए तो उसे मनाने की कोशिश अक्सर हम करते रहते हैं, कभी साथी उदास हो तो उसे हंसाने की कोशिश, कभी अपनी बात या इच्छा मनवाने की कोशिश, कभी आपसे कोई गलती हो जाए तो सॉरी सॉरी कहकर बिगड़ी बात बनाने की कोशिश, और तो और कभी जो वो बेवजह ही चुप्पी ओढ़ ले, बात बात पर चढ़ने लगे तो ये जानने की कोशिश कि इतना सब ध्यान में रखते हुए भी, इतना ध्यान रखते रखते भी आखिर आपसे चूक कहां हो गई, तो ये कैसा प्रेम हुआ? हाँ, ये कैसा प्रेम हुआ जो आपके एफर्ट्स के वेंटिलेटर पर जिंदा है, और जिस दिन ये एफर्ट्स ना रहे प्रेम भी ना रहेगा। ये प्रेम नहीं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट भर है जिसमें आपको केवल इजाजत भर है किसी को प्रेम करते रहने की, वो भी इस शर्त पर कि कोशिशें आपकी तरफ से जारी रहनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जिस दिन आपकी तरफ से कोशिश खत्म, उस दिन प्रेम भी खत्म। तो अगर आपका भी रिश्ता इस तरीके की कोशिशों के साथ गुजर रहा है तो एक बार गौर जरूर करिएगा, एक बार कोशिश करिएगा कि सामने वाला भी आपके लिए कोशिश करे, तभी तो प्रेम जिंदा रहेगा। क्योंकि मैंने कहा ना कि जब तक आप कोशिश करते रहेंगे तब तक प्रेम जिंदा रहेगा, और जिस दिन आप थक जाएंगे उस दिन आपकी कोशिशें भी खत्म हो जाएंगी, और जिस दिन आपकी ये कोशिशें खत्म उस दिन वो प्यार भी खत्म। तो भाई, उस मोड़ पर आने से पहले खुद को टटोलिए, खुद को एक बार फिर से पढ़िए। हम होते क्या है, एक किताब ही तो है। तो भाई, इस किताब के पन्ने को हर पल हर दिन पलटने की कोशिश जरूर किया करिए। और दोस्तों, 10 से 12 का ये जो वक्त होता है ना, ये आपकी जिंदगी के उन्हीं अनपढ़े हुए अनपलटे हुए जिनको आपने कभी पलटा ही नहीं है, उन पन्नों को पढ़ने का वक्त देता है रजनीगंधा। और कई बार हम उन पन्नों को पढ़ भी लेते हैं यहां बैठे बैठे, बस आप उसे नजरअंदाज करते हैं। तो चलिए, वो है जरा खफा खफा, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, शागिर्द फिल्म्स में। अगला गाना ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो पर, सुनते रहिए।

कहते हैं नाराजगी के बाद ही तो एक नई कहानी बनती है, क्योंकि जहां नाराज होने का हक होता है वहीं मनाने की चाहत भी होती है। और जिस रिश्ते में मनाने की जिद बची हो, समझ लीजिए वहां मोहब्बत अभी भी सांसें ले रही है। प्यार कभी हार पर, हर बात पर हाँ कह देने का नाम नहीं होता। प्यार तो वो है जहां दो लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, रूठते भी हैं, लेकिन एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ते और ये ख्याल भी कभी आने नहीं देते। कभी एक चुप हो जाता है तो कभी दूसरा मुस्कुराकर सारी शिकायतें मिटा देता है। कितना खूबसूरत होता है वो पल ना, जब लंबी खामोशी के बाद अचानक एक मुस्कान लौट आती है, जब आंखें बिना कुछ कहे सॉरी बोल देती हैं और आई मिस यू भी बोल जाती हैं। जब दिल ये समझ जाता है कि जीत किसी की नहीं हुई है, बस रिश्ता जीत गया। शायद मोहब्बत की सबसे प्यारी बात भी यही है, इसमें हारने वाला कोई नहीं होता। जो पहले झुक जाता है वही सबसे ज्यादा प्यार करता है, और जो गले लगाकर सारी शिकायतें भूल जाए वही रिश्ता सबसे खूबसूरत बन जाता है। सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

दोस्तों कहते हैं कि कुछ नज़रों की ताकत भी अजीब होती है। वो कुछ कहती नहीं लेकिन सब कुछ बदल जरूर देती है। इंसान वहीं का वहीं होता है लेकिन अंदर कुछ ऐसा टूटता बनता है जिसे समझाने के लिए लफ्ज कम पड़ जाते हैं। अच्छा, कभी आपने महसूस किया है कि एक ही पल में कोई अजनबी आपके अंदर अपनी जगह बना लेता है? ना कोई पहचान होती है ना कोई रिश्ता, फिर भी दिल उसे ऐसे देखने लगता है जैसे वो हमेशा से उसी का हिस्सा रहा हो। और अजीब बात तो ये है कि उस एहसास को रोकना भी मुमकिन नहीं होता। कई बार हम रोक भी सकते होते हैं, हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन ये कमबख्त दिल बार बार उसी को देखना चाहता है नज़रों के जरिए। इस दिल के आगे हर कोई मशहूर हो जाता है, नजरें उससे हमारी नजर फेर लेते हैं, कई बार सोचते हैं उसकी तरफ ना देखें, और फिर चोरी से जब उसकी तरफ देखते हैं और उसकी नजरों से हमारी नजरें जब टकरा जाती हैं तो बड़ी ही शर्म आती है कि हाय उसने मुझे देख लिया उसको देखते हुए। लेकिन दिल को एक सुकून भी मिलता है कि चलो उसे पता तो चला कि हम उसको ही देख रहे हैं। और उस एक नजर के बाद हालात बदलते नहीं हैं, लेकिन दिल का रुख जरूर बदल जाता है। हर चीज उसी तरफ खींचने लगती है जहां वो चेहरा हो, भीड़ में भी तलाश उसी की रहती है।

और खामोशी में भी नाम उसी का गूंजता है। ये मोहब्बत की शुरुआत नहीं है तो और क्या है। ये वो मोड़ होता है जहां इंसान को पहली बार एहसास होता है कि दिल अब पूरी तरह उसका नहीं रहा, किसी और का हो चुका है। और यही एहसास धीरे धीरे हर सोच, हर मुस्कान और हर धड़कन पर अपना असर छोड़ देती है। सुनते हैं जितना भी कुछ कहा है, इस सब कुछ इस गाने में समेट कर लता मंगेशकर की आवाज में आपके लिए ये गीत। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। दोस्तों वक्त हो गया है 10:53 और कुछ सेकंड्स, और ये वक्त कह रहा है कि शायद रजनीगंधा में यही वाला भी गाना होगा। गाने के बाद न्यूज के उस पार फिर से रजनीगंधा आपके दिल के कुछ पन्नों को फिर से टटोलेगा और उन शब्दों को जरूर पढ़ेगा जिन शब्दों को आप दिन में पढ़ना ही नहीं चाहते और या फिर कहें सुनना ही नहीं चाहते। तो सुनिएगा जरूर, रात 12 बजे तक रहिएगा। आरजे प्रीति है आज आपके साथ, सुनते रहिए

0: की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने।
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान।
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, रात्रि के 11 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी ने उनका हार्दिक स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा विकास प्राधिकरण के 7 मंजिला नए भवन का लोकार्पण किया। नोएडा विकास प्राधिकरण को करीब 50 वर्ष बाद अपना नया कार्यालय मिला है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की सरकारों द्वारा किए गए पाप के गड्ढे को भरने में भाजपा सरकार को समय लगा, लेकिन हमने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है और अब विकास की गति तेज हो गई है। फ्लैट बायर्स की समस्याओं को प्राथमिकता दी गई तथा उसका हल निकाला और करीब 3 लाख से ज्यादा की रजिस्ट्री अब तक हो चुकी है। निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं गो आश्रय स्थलों की प्रभावी संचालन के संबंध में बस्ती के मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में गौ संरक्षण कार्यों की समीक्षा करते हुए नामित नोडल अधिकारियों को शासन के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सभी नामित नोडल अधिकारी अपने आवंटित आश्रय स्थलों का निरीक्षण करें तथा वहां चारा, स्वच्छ पेयजल, पशुओं का उपचार, साफ सफाई एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की सतत निगरानी करें। लखनऊ सैन्य स्टेशन में आयोजित बास्केटबॉल प्रतियोगिता का समापन उत्साह, रोमांच और उत्कृष्ट खेल भावना के वातावरण में हुआ। प्रतियोगिता में स्टेशन के विभिन्न सैन्य संस्थाओं के अधिकारियों एवं सैनिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा पूरे टूर्नामेंट के दौरान उच्च स्तरीय खेल कौशल, अनुशासन और टीम भावना का शानदार प्रदर्शन किया गया। प्रतियोगिता के दौरान खेले गए मुकाबले अत्यंत रोमांचक एवं प्रतिस्पर्धात्मक रहे। फाइनल मुकाबले में मुख्यालय मध्य उत्तर प्रदेश सब एरिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप अपने नाम की, जबकि कमांड ट्रूप्स यूनिट उप विजेता रही। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी, कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लग

एक बार फिर से दोस्तों आपका स्वागत है अपने प्रोग्राम रजनीगंधा में। वक्त हुआ है 11:10:50 और इस वक्त के साथ ही कुछ बातें हैं जो लगता है आपसे कह दें, क्योंकि रात का ये सन्नाटा दोस्तों सिर्फ खामोशी में नहीं होता। ये वो वक्त होता है जब दिल सबसे ज्यादा बोलने लगता है। इसलिए कहा मैंने कि दिल कह रहा है कि आपसे कह दो। अक्सर दिन भर जो बातें हम हंसी में छुपा लेते हैं वो रात की तन्हाई में सच बनकर सामने आ जाती हैं, और फिर पुराने गीत जैसे किसी ने दिल की डायरी को खोल दिए हो, ऐसे लगते हैं पुराने गीत। और मैं जब भी प्रोग्राम करने आती हूँ हर बार ये बात आपको याद दिलाती हूँ कि कहीं आप भूल ना जाएं कि पुराने गीत किसी मलहम की तरह होते हैं, इसलिए हमेशा इनसे जुड़े रहिए। और रात का वक्त सोने के लिए जरूर होता है, लेकिन ये 10 से 12 का वक्त बेहद ही खास होता है। अच्छा, कभी आपने गौर किया है कि कुछ धुनें हमें हमारे ही बीते हुए लम्हों में ले जाती हैं? कोई चेहरा अचानक आंखों के सामने यूं ही आ जाता है, कोई बात बिना वजह याद आ जाती है, और दिल बस एक अजीब सी खामोश मुस्कान में खो जाता है। ये रातें हमें सिखाती हैं कि हर एहसास कहने के लिए नहीं होता, कुछ बस महसूस करने के लिए होते हैं। और पुराने गीत इसीलिए इतने अपने लगते हैं क्योंकि वो हमारी कहीं ना कहीं अनकही बातों को अपनी आवाज दे देते हैं। कभी किसी याद की हल्की सी दस्तक दिल को बेचैन कर देती है, तो कभी किसी अधूरे लम्हे की मिठास सुकून बन कर जाती है। और इस सब के बीच हम बस चुपचाप सुनते रहते हैं, खुद को भी और अपने दिल को भी। और इसके साथ आप सुन रहे हैं।

कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी अगर एक सफर है तो मोहब्बत उसकी सबसे खूबसूरत मंजिल। और अजीब बात यह है कि ये मंजिल किसी मोड़ पर अचानक मिल जाती है, बिना किसी शोर के, बिना किसी तैयारी के, बस एक एहसास बनकर दिल में उतर जाती है। कभी कोई शख्स जिंदगी में आता है तो सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता, ना दिन पहले जैसा रहते हैं और ना रातें। हर चीज में उसकी मौजूदगी महसूस होने लगती है, जैसे हवाओं में भी उसका नाम लिखा हो और खामोशी में भी उसकी आवाज छुपी हो। मोहब्बत वो नहीं जो सिर्फ पास रहने से पूरी हो जाए, क्योंकि मोहब्बत दोस्तों तो वो है जो दूर रहकर भी हर धड़कन में जिंदा रहे, जहां एक नाम सोचते ही चेहरे पर बिना वजह मुस्कान आ जाए और आंखें खुद ब खुद किसी को ढूंढने लगे। और फिर धीरे धीरे समझ आता है कि जिंदगी की सारी भाग दौड़ के बीच अगर कोई एक अपना मिल जाए तो बस वही सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि मोहब्बत जिंदगी को सिर्फ जीने लायक नहीं बनाती, उसे खूबसूरत भी बना देती है।

0: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्ताने,
1: वो भूली दास्तान जो फिर याद आ गई।
0: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत अफसाने,
2: ये

कहते हैं कि ख्वाब और मोहब्बत ये दोनों ऐसे मेहमान हैं जो बिना बताए आते हैं और दिल के अंदर सबसे ज्यादा जगह बनाते हैं और सबसे अंदर वाले हिस्से में अपनी जगह भी बना लेते हैं, लेकिन हमें बस पता ही नहीं चलता। पहले ये बस एक हल्की सी मौजूदगी लगते हैं, फिर धीरे धीरे ये एहसास बन जाते हैं और फिर बिना शोर किए पूरी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जो कुछ भी महसूस हो रहा है वो किसी और दुनिया का सच है, जहां ना समय की जल्दी होती है ना हालात की बंदिशें, बस एक ठहराव होता है जिसमें सब कुछ अपने आप सही लगने लगता है। कहते हैं कि जब हम मोहब्बत में होते हैं तो गलत जैसा कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ सही लगता है। गलत वो लगते हैं जो हमें रोकते हैं मोहब्बत करने से। हम सही लगते हैं, हमारे आसपास की हर चीज सही लगती है,

मोहब्बत को अगर समझने की कोशिश करो तो वो हाथ से फिसल जाती है, और अगर बस महसूस करो तो पूरी तरह अपना बना लेती है। यही उसकी सबसे बड़ी सादगी भी है और सबसे बड़ी गहराई भी। ख्वाब भी कुछ ऐसा ही करते हैं, वो हकीकत नहीं होते लेकिन हकीकत से ज्यादा अपने लगते हैं। उनमें वो सब कुछ होता है जो शायद जिंदगी में पूरा कहना मुश्किल हो लेकिन दिल में हमेशा जिंदा रहता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब ख्वाब और मोहब्बत के बीच फर्क करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। एक नाम बस सोच भर से दिन बदल जाता है। एक एहसास बिना वजह सुकून दे देता है। कभी ये दोनों मिलकर मुस्कुराहट बन जाते हैं और कभी चुपचाप दिल के किसी कोने में बैठकर बस याद बनकर रह जाते हैं। लेकिन एक सच है, ये जाते कभी नहीं, ना ख्वाब और ना मोहब्बत।

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? उफ, तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल।

0: मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो तुम्हें रोशनी किए देती हूँ।
1: अंधेरा है तो रहने दो, मुझसिम चांदनी हो तुम। अंधेरा है तो रहने दो, मुझसिम चांदनी हो तुम। लजाए रोशनी तुमसे के ऐसी रोशनी हो तुम।

दोस्तों वक्त हुआ है 11:43:50 और ये वक्त कह रहा है कि धीरे धीरे रजनीगंधा भी अपने समापन की तरफ हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें हैं आपसे करनी। लेकिन ये वक्त कम वक्त इजाजत नहीं देता। कोई नहीं, इस गाने को सुनिए। एक बात और है हमारे दिल में, वो लगता है जरूर आपको सुननी चाहिए, और शायद कहीं ना कहीं वो बात आपके भी दिल की हो, है ना? क्योंकि हम और आप तो जुड़े हुए हैं 100.7 FM रेनबो से। तो बस सुनते रहिए रजनीगंधा।

0: दोस्तों रात का सफ़र हमेशा कुछ खास होता है, जब हवा भी धीमे चलती है और दिल अपनी ही धुन में कुछ अनकही बातें सुनने लगता है। ऐसे में कोई अपना साथ हो तो रास्ता आसान लगने लगता है और हर मोड़ पर एक नई खामोशी मुस्कुराने लगती है। इसी एहसास को जैसे आवाज़ मिलती है उस पुराने नगमे में, जहाँ साथ चलने की बात है और रास्तों के बीच एक अजीब सा अपनापन बिखरा हुआ है। रात का ये सन्नाटा और सफ़र का ये साथ दोनों मिलकर एक ऐसी दुनिया बना देते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ एहसास बोलते हैं। और फिर उसी सफ़र में जब बात होती है हुस्न की, तो वो सिर्फ देखने की चीज़ नहीं रह जाती, वो एक परत की तरह होता है, जैसे कोई नर्म सा पर्दा जो पूरी कहानी को और भी रहस्यमय बना देता है। उस पर्दे के पीछे भी एक सुकून होता है, एक ठहराव होता है जो दिल को और करीब खींच लेता है। रात के हम सफर, इस सफर में मंजिल से ज्यादा अहम वो लम्हे होते हैं जो साथ चलते हुए बनते हैं, और हुस्न की वो नर्म सी मौजूदगी हर एहसास को और भी गहरा और भी रूमहानी बना देता है। अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: मन है

0: Kitni sharmi.
1: दोस्तों, वक्त की सुइयां इशारा कर रहे हैं कि रजनीगंधा की यह महकती महफिल अब रुखसत होने को है। रात के 12 बज रहे हैं और इसके साथ ही आज और कल के बीच की वो लकीर भी धुंधली हो गई है। अब मैं आरजी प्रीति आपसे विदा लेती हूँ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और अपनी रातों को यादों से रोशन करते रहिए। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।

नमस्कार, रात्रि के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मूल्यों और आदर्शों की राजनीति अपनाकर शून्य से शिखर तक की यात्रा की है। 1985 में मात्र 2 लोकसभा सीट हासिल करने वाली इस पार्टी की आज केंद्र सहित देश के 21 राज्यों में स्वयं की सरकार है। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की यात्रा सत्ता प्राप्त की यात्रा नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और समन्वय की बेहतरीन यात्रा है। प्रदेश की राज्यपाल एवं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में नवनिर्मित भव्य सरोवर की लोकार्पण किया। उन्होंने सरोवर का अवलोकन करते हुए कहा कि जल संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों को शिक्षा एवं अनुसंधान के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा पर्यावरण संवर्धन की दिशा में भी अनुकरणीय पहल करनी चाहिए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 भारत के विकास और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों को सुदृढ़ करेगा तथा गांवों की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम्य विकास विभाग द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:15 और सूर्यास्त 7:04 पर होगा। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 7 बजे प्रसारित होगा। 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी की FM प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:01 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।